0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाइयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और

में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले चार दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयना सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉजमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।

जी श्रोतियो, प्रोग्राम अमृत वेला दे तहत असीं अगला शब्द सरवण करन जा रहे हां। आवाज़ है भाई निर्मल सिंह रागी दी।

जी श्रोतियों, प्रोग्राम अमृत वेला दे तहत अगला शब्द असी सरवण करन जा रहे हैं। आवाज़ है भाई दलबीर सिंह रागी दी।

अनाज पीसण दी रसम। पंजाब दे वासी पहला अनाज नू घर लगियां हथ चक्कियां राही पीस के आटा बनाउंदे सन। व्याह शादियां विच आटे ते दालां दी काफी लागत होण करके व्याह तो काफी दिन पहला ही लोकां दियां चक्कियां इकट्ठियां करके महल्ले दियां औरतां नू बुला के ਕਣਕ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਪੀਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ते आओ जानदे आ पिंड कोटली दी मिट्टी, लोका, रंगा ते यादा दी दिलचस्प कहानी, पिंड दे लोका दी जुबानी। प्रोग्राम पिंडा विचो पिंड सुनिंदा, कोटली दी गल कोटली दे लोका दे नाल।

कुछ खत संभाल कर रखे हैं मैंने, कुछ यादें बनकर दिल में बसे हैं। कुछ खत संभाल कर रखे हैं मैंने, कुछ यादें बनकर दिल में बसे हैं। वक्त गुजर गया, लोग बदल गए, मगर वो अल्फाज आज भी वैसे ही हैं।

जी हाँ श्रोतियो, तुहाडे खतां दे विच, तुहाडे भेजे हुए मैसेजेस दे विच और तुहाडे उना अल्फाज़ां दे विच बहुत ही प्यार, बहुत ही एहसास, बहुत ही जज्बात हुंदा है प्रोग्राम पैगाम दे विच और उना एहसासां नूं, जज्बातां नूं और प्यार भरियां मुलाकातां नूं लैके हाजिर हुंदी हां जी मैं विजय लक्ष्मी। प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब ते गुड मॉर्निंग दे नाल प्रोग्राम पैगाम दे विच तुहाडी अपनी दोस्त ते होस्ट विजय लक्ष्मी। मेरे वालों एक बार फिर सारे ही श्रोतियां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। जी हाँ श्रोतियो, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? चढ़दी कला चो? खुश हो? तंदुरुस्त हो? मस्त हो? व्यस्त हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, तुसी व्यस्त होने हो 77173 73 140 ते पैगाम करन दे विच। प्रोग्राम पैगाम दे विच बहुत सारे पैगाम मेरे सारे श्रोतियां दे मेरे कोल पहुंचते ने ते उना पैगामां नूं लेके विजय लक्ष्मी भी पहुंच जांदी है 101.1 मेगाहर्ट्ज़ ते हर रविवार सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दौरान।

जी बहुत ही खूबसूरत जी गीत दे चंद अल्फाजा दे नाल ही प्रोग्राम पैगाम दे विच पैगाम दी शुरुआत करदे आ जी बठिंडा तो लिखन वाले ने जी सुहान गाव्या हरमित ते सुमित बड़ा ही सोहना जिहा पैगाम कीता इन्हां ने नुहार पंजाब दी कहिंदे उसरदे पंजाब दी नुहार वेख लै आजा मेरे देश दी बहार वेख लै तड़के मधाणिया दे शोर मचदे हत्था विच मखणा दे पेड़े नचदे चूड़िया दी होए चूड़िया दी छणकदी छणकार वेख लै आजा मेरे देश दी बहार वेख लै उसरदे पंजाब दी नुहार वेख लै आजा मेरे देश दी बहार वेख लै मोढे उत्ते हल ते पंजाली रख के सारिया दी भुख नू कमाऊ डक दे पत्ता लैके जांदी मुटियार वेख लै आजा मेरे देश दी नुहार वेख लै उसरदे पंजाब दी नुहार वेख लै आजा मेरे देश दी बहार वेख लै मेरी प्यारी बेटी विजयलक्ष्मी नू परमात्मा हमेशा खुश रखे बड़ा ही प्यारा खूबसूरत जिहा पैगाम सानू भेज दिता जी प्रोग्राम पैगाम दे विच बड़ा ही खूबसूरत जिहा पैगाम है जी सुहान गाव्या हरमित ते सुमिता नुहार पंजाब दी बहुत बहुत शुक्रिया जी लगता है जी इन्हां बच्चियां दे कोई दादी मां या नानी मां ही मैनू पैगाम कर रही है क्योंकि बड़ा ही प्यारा जिहा इक सुनेहा भी भेजिया है कि प्यारी धी विजयलक्ष्मी नू परमात्मा हमेशा खुश रखे तो आप जैसिया जेडिया मावा जो साडे सिर ते ना ते बेटिया ते हमेशा ही खुश ते तंदुरुस्त ते चढ़दी कला च होणगीआं परमात्मा आप वर्गी नेक रूह नूं भी हमेशा ही चढ़दी कला च रखे हमेशा ही खुश रखे तंदुरुस्त रखे ते हमेशा ही साडे लई दुआवां मंगदा रहे बहुत बहुत शुक्रिया जी तुहाडे आशीर्वाद दी हमेशा सानूं उम्मीद रहेगी और बहुत बहुत धन्नवाद प्रोग्राम पैगाम दे विच पैगाम करन दे लई और अगली बारी मैं उम्मीद करदी हां तुसीं अपना नाम भी लिख के जरूर भेजोंगे

पंडित, जगराज सिंह कणकवालिया, गंगा राम पुछो मंडी, काका जीत सिंह सराबा, अजायब सिंह जौड़किया। कहिंदे देख तमाशे दुनिया दे, रंग रब दे भुली बैठा हां, जिहड़ी चीज दे नाल नहीं जाना ओदे ते मैं डुली बैठा हां। लो जी, पिंड संदोहा तो जगराज जी, फिर जिहड़ी चीज ते नहीं जाना मैं उसे चीज ते डुली बैठा हां। सो बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पैगाम दे विच पैगाम तुसी कर दिता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अमनदीप कौर कारे ने पैगाम प्रोग्राम पैगाम दे विच नाल लेना ते सरदार बेअंत सिंह, साहिबदेव सिंह पिंड रामपुरा तो बड़े ही खूबसूरत पैगाम, बड़ी खूबसूरत हैंडराइटिंग दे विच लिखे इन्होंने व्हाट्सएप किया। कहिंदे ना ताजा दी, ना तख्तां दी, ना सहां दी गल करिए, जिन्ना उपर चढ़ना औखा है क्यों ना आपां उन्हां राहां दी गल करिए। और कहिंदे इंसान नूं तरक्कियां तो डोबदियां ने उस दियां आदतां। आदत बारे गल कर रहे हैं, कहिंदे आदत एक ऐसी रस्सी की तरह हुंदी है जिसका एक लड़ असीं रोज वटदे हां, अंत विच ए उन्नी मजबूत हो जाती है असी चाह के भी उस आदत नू छड़ नहीं सकते। कहिंदे माड़ियां आदतां अपनाउणियां सौखियां ने पर इन्हां नाल जिंदगी जीउणा औखा हो जाता है। इस दे उल्ट चंगियां आदतां अपनाउण विच भावें टाइम लगता है पर इन्हां नाल जिंदगी जीउणा आसान है। हमेशा ही चंगियां आदतां अपनाओ। बिल्कुल जी बिल्कुल, सवेरे जल्दी उठन दी चंगी आदत, किताबां पढ़न दी चंगी आदत, अपने काम नू टाइम सिर करन दी चंगी आदत, हमेशा सच बोलन दी चंगी आदत, ते कुछ ना कुछ चंगा लिखन दी चंगी आदत। अमनदीप कौर, बिल्कुल जी बिल्कुल, अमन कामकार वो समा खा जांदा ते या फिर मोबाइल टीवी खा जांदा, किते ना किते जिहड़ा समय अपने आप लई जरूर कढ़ना चाहीदा। सो अमन, बहुत ही प्यारा खूबसूरत जिहा सुनेहा तुसी दित्ता चंगियां आदतां बारे गल कीती, बहुत बहुत शुक्रिया अमन, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तीश कुमार बंसल पिंड सावंत खेड़ा नेड़े मंडी डबली तो करने पैगाम, सोच नियत और कर्म अगर ये तीनों साफ हों तो इंसान को किसी के सामने खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। कम्प्लीटली एग्री एंड आई कम्प्लीटली एग्री विद यू तीश कुमार बंसल जी। सोच नियत और कर्म तीनों सही ने तो जिंदगी सही है। शुक्रिया आशीष जी। मठू परिवार कार्य पैगाम प्रोग्राम पैगाम दे विच, परमात्मा दी नजर, परमात्मा दी मेहर दी नजर हो जावे ते गलियां विच रुलदियां नूं वी तख्त ते बिठा दिंदी है, ता सब सुख चोली विच पा दिंदी है ते मट्टू तो पैगाम लिखा दिंदी है। बड़े ही प्यारा खूबसूरत जिहा पैगाम मट्टू परिवार तो आया जी जगजीत मट्टू दा। कहिंदे परमात्मा दी नजर, परमात्मा दी मेहर दी नजर हो जावे ता गलियां विच रुलदियां नूं वी तख्त ते बिठा दिंदी है, ता सब सुख झोली विच पा दिंदी है ते मट्टू तो पैगाम लिखा दिंदी है, भैण विजय लक्ष्मी तो पैगाम पढ़ा दिंदी है। सो जगजीत मट्टू जी, तुहाडा प्यार ही है प्रोग्राम पैगाम दे विच, जेकर तुसी पैगाम लिखते हो ते फिर विजय लक्ष्मी तुहाडा पैगाम क्यों नहीं शामिल करेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पैगाम दे विच पैगाम करन दे लई, शुक्रिया। प्रोग्राम पैगाम पिंड कोटशमीर तो जथेदार प्यारा सिंह हरदास सिंह सिंहपुरा मेजर सिंह पंजू पैगाम कारे ने। कहिंदे पैगाम, कोठियां कारां घोड़ियां दा कोई की करूगा, बुजुर्ग विचारे नेरे विच बैठा पानी बिना मरूगा, औलाद ले जिन्ने पापड़ वेले टी नाल मिट्टी होके खेतों आउंदा सी को वेले, परिवार वालों बेकदरी दसो किवें जरूगा, कोठियां कारां ते घोड़ियां दा कोई की करूगा। प्रोग्राम पैगाम दे विच बड़े सैड जा ते बड़े इमोशनल जा पैगाम कीता जथेदार प्यारा सिंह जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम पैगाम दे विच तुसी कीता पैगाम, शुक्रिया जी। प्रोग्राम पैगाम दे विच पैगाम आया खड़क सिंह मट्टू पिंड बालियां तहसील ਧੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਧੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤਾ ਪੈਗਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਧੋਖੇ ਦੀ ਪਰਤ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਚੋਂ ਜਾਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਜਦ ਧੋਖੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ।

आम लब पर है और जान बाकी है। क्या हुआ अगर देख कर मुंह फेर लेते हैं, तसल्ली है कि शक्ल की पहचान का बाकी है। क्या बात आने बिंदर जी, योर पैगाम इज ऑलवेज टू गुड टू गुड टू गुड एंड वेरी इमोशनल पैगाम। क्या हुआ देख कर मुंह फेर लेते हैं, तसल्ली है कि शक्ल की पहचान बाकी है। हाउ स्वीट, नाउ आई एम स्पीचलेस, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से आफ्टर दिस ब्यूटीफुल पैगाम एक्सेप्ट प्लेइंग दिस सॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया बिंदर जी, थैंक यू सो मच।

0: लो जी श्रोतियो, उस प्यारे जे खूबसूरत जे गीत तो बाद विजयलक्ष्मी आप सब श्रोतियो तो इजाजत रहना चाहती है। इस प्यारे जे पैगाम नू आप तक पहुंचाने के लिए पूरी टेक्निकल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद एंड प्रोग्राम पैगाम ते निर्माता निर्देशक मनदीप रजौरा जी का धन्यवाद एंड 7173 73 146 व्हाट्सएप नंबर का बहुत सारा धन्यवाद जिस दे राही तुसी अपने पैगाम दिल दे अल्फाज दिल दे जज्बात साढ़े ताई सांझे कीते। तुहाडा सारिआं दा ही बहुत बहुत शुक्रिया फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। एंड नाओ आई नो नाओ इट्स टाइम टू टेक अ लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू, बट नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम प्रोग्राम विद योर होस्ट एंड दोस्त ऑन सेम नंबर 7717373146 ऑन सेम नंबर 7173 73 146 ते तुहाडे पैगाम इक वारी फिर तुहाडे नाल साझे कीते जाणगे। टिल देन खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, बट ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद 101.1 मेगाहर्ट्ज़। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।
1: प्रोग्राम संबंधी सूचना 14 सितंबर दिन सोमवार प्रोग्राम कर परिवार के तहत सिलसिला सेहत संभाल विषय रहेगा छाती अते साह दियां बीमारियां। इस महत्वपूर्ण विषय ते जानकारी देन लई साडी स्टूडियो विच हाजिर होंगे डॉक्टर आंचल जैन जिन्हां नाल गलबात करनगे आकांक्षा अरोड़ा। जिन्हां श्रोतियां ने इस विषय संबंधी कोई सवाल पूछना होवे जां जानकारी लेनी होवे ओ साडे स्टूडियो दे फोन नंबर 0164-2240-331 ते कॉल कर सकते ने। इस प्रोग्राम दे स्पॉन्सर हन बड़ियाल अस्पताल बठिंडा। सो सुनना ना भूलना 14 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 12:30 ते सिलसिला सेहत संभाल प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा।
2: श्रोतियो प्रोग्राम चल रहा है जी सजी सवेर ते हुण नजर मरवाउने आ तुहाडी अज दियां खास खास खबरां ते। पहली खबर जड़ी लगी है नवी दिल्ली तो और ये खबर है जी ब्रिक्स पछमी एशिया विवाद ते अतवाद बारे नवी दिल्ली ऐलाननामे ते मोहर। अगली खबर जड़ी लगी है ये है जी चंडीगढ़ तो पंजाब च बिजली कट लोकां दे वट कढ़न लगे। अगली खबर जड़ी है वह है जी अमृतसर तो गुरु ग्रंथ साहिब दे पहले प्रकाश पुरब ते नगर कीर्तन सजाया जलोस सजाए दरबार साहिब विच वड्डी गिनती विच संगत नतमस्तक। छे दिनां विच तीजी वार दिल्ली हलवारा उड़ान रद्द।

नाम घोषित दिबारे और राकेश कुमार गुप्ता ने सात बोर्ड से दर्ज की रोमांचक जीत। शनिवार सुबह सामने आए नतीजे, छह पदों पर नई टीम का हुआ गठन। बप्पा के स्वागत में सजे बाजार, पंडालों में गूंजेंगे मंत्रोच्चार।

ऊंचे पहाड़ भी बने बोने। करणदीप ने 17,618 फीट ऊंचाई पर ले में दौड़कर बढ़ाया मान। अगली खबर जड़ी हैगी है जी, वो है जी 79 वरे यानी कि 79 वर्षीय शिंगारा ने 100 मीटर दौड़ से सभी को पछाड़ा।

ਬਸਪਾ ਚ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਇਆਵਤੀ। विद्यार्थियों को एड्स के कारणों, इसके फैलने के तरीके, बचाव के बारे में दी गई जानकारी। एक खबर लगी सी जी रामपुरा फूल तो।

क्रिकेट की पिच पर खेलेंगे दोस्ती का अध्याय। भारत और अफगानिस्तान टीम के बीच आज नई दिल्ली में खेला जाएगा पहला T20 मुकाबला। कश्मीर में NRI के 10 ठिकानों पर छापे, पाकिस्तानी हैंडलरों से जुड़े नेटवर्क की जांच। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नजरें 8वें खिताब पर।

0: ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
2: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
3: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
3: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
5: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा।

0: उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिश्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair

0: लिए निर्माण दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिंफनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
5: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
6: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजिश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है।

0: इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेटिन बिटुन कोजमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्य के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आर्यना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस।

0: प्रोग्राम सदाबहार गीत दे तहत कमल सिद्धू आप सब श्रोतियां दा स्वागत कर दी है। मेरे वालों सारे श्रोतियां नूं प्यार भरी नमस्कार। सो प्रोग्राम दे तहत सुनदे हां फिल्मी गीत, यानी कि पंजाबी फिल्मी गीत, और इस गीत नूं आवाज़ दिती है हरभजन मान ने।
1: ਪੂਰ ਤਰਿੰਜਣ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ

आपने ट्यून किया है विविध भारती और कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत, सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल, अजय अतुल की धुन।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत जिसे सुरों में ढाला है प्रीतम ने, आवाजें अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की, फिल्म का नाम दिलवाले।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद आइए आपको सुनवाते हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म का गीत, मोहम्मद इरफान, दर्शन रावल और पलक मुछाल की आवाजों में। इरशाद कामिल ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया का संगीत।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमारी अधूरी कहानी इस फिल्म का गीत सुनिए, कुणाल वर्मा ने इसे लिखा है, आवाज और संगीत अमी मिश्रा का।

0: हफ्ते से। गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: शोधा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? शुदन एक लड़का आया है कल।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: दोस्तों, ये गाना फिल्म परदेस का था और परदेस महिमा चौधरी की पहली फिल्म थी। वो शोमैन सुभाष घई की खोज है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुभाष घई जब भी किसी अभिनेत्री को पहली बार हीरोइन बनने का अवसर देते हैं तो उसे एक नया नाम भी देते हैं और ये नाम हमेशा म से शुरू होता है और महिमा के साथ भी यही हुआ। माता पिता का दिया हुआ नाम ऋतु चौधरी घर में ही रह गया और फिल्मों के लिए महिमा मंडित हुआ नया नाम महिमा। लेकिन इस बात की पूरी जानकारी स्वयं महिमा चौधरी के स्वर में।
1: क्रेडिट दे देते हैं कि सुभाष जी ने मुझे नाम दिया, ये मैंने खुद चुना था। उन्होंने जरूर कहा था कि तुम्हारा नाम दे रहा हूँ मैं प्रेस में, तो ऋतु चौधरी ही दूं कि कुछ और रखना है। तब मेरे ध्यान में आया कि अरे नहीं, नाम तो बदला जा सकता है। और मुझे वैसे ही ऋतु के नाम से ये हो गया था कि मेरी क्लास में ही चार चार ऋतु थी, तो एक कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही कॉमन नेम है एंड आई डोंट बी कंफ्यूज्ड विद एनीवन। मम्मी पापा ने सोचे बगैर ही मेरा नाम ऋतु रख दिया, तो कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। मैंने बहुत सारे नाम ढूंढे और अगले दिन जब सुभाष जी को मैंने पढ़ाए तो उन्होंने कहा कि इसमें एम से कोई नाम नहीं है, एम से नाम होना चाहिए क्योंकि एम मेरे लिए बहुत लकी है। मैंने कोई भी नाम, कोई भी फर्म जब शुरू की है, जैसे मुक्ता आर्ट्स फिल्म्स, वो सक्सेसफुल रही है। टेलीविजन पे मैंने दृष्टि शुरू की थी, वो एकदम फ्लॉप हो गई, तो एम से नाम रखो तुम। तो मेरे जो पापा हैं उनके बेस्ट फ्रेंड, उनकी बेटियों का नाम है रिधिमा महिमा। मैंने कहा महिमा कैसा है, ही सेइंग इट्स नाइस, तो फिर हमने महिमा रखा।

0: अपने देश से प्रेम करने वाली महिमा चौधरी का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। हॉस्टल में रहने से उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता शुरू से ही रही। हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ वो नेपाली भाषा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और बोलती भी हैं।
1: दार्जिलिङ को एकदम याद आउँछ। अन्त जे पनि म आज हुँ त्यो त्यही दार्जिलिङमा सिकेको, अन्त हाम्रो नेपाली भाइ बहिन कोबाटै सिकेको, अन्त मेरो सबै म्यानरिजम्स त्यहीँबाट हो। एन्ड टु लभ अल्सो इज आई लर्न फ्रम द नेपालीज पिपल, वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं।
0: महिमा चौधरी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छी थीं, पर उनका करियर फिल्मों में बनेगा ये उन्होंने सोचा भी नहीं था। खैर, शुरुआत मॉडलिंग से हुई और उन्होंने एक शीतल पेय का विज्ञापन किया। बस यहीं से वो लाइमलाइट में आई और फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए अपने आप खुल गए। फिल्म परदेश में गंगा के रोल में उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री भी मिली और फिल्म की कामयाबी से शोहरत भी मिली और बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस का डेब्यू अवार्ड भी उन्हें मिला। फिल्म परदेश के बाद महिमा की बहुत दिनों तक ऐसी कोई फिल्म नहीं आई जो बॉक्स ऑफिस पर वैसी भीड़ जुटा पाती जैसी कि परदेश ने जुटाई थी। लेकिन महिमा के नाम की लगन लोगों को उनकी फिल्में देखने के लिए खींच ही लाती।

महिमा चौधरी की जितनी फिल्म्स अब तक रिलीज हुई हैं, उनमें से ज्यादातर फिल्में मल्टी स्टार कास्ट वाली हैं। फिर भी हर फिल्म में महिमा ने अपने रोल के साथ न्याय तो किया ही है, अपनी अदाकारी के तीरों से देखने वालों को घायल भी किया है।

दिखने में शोक और चंचल महिमा चौधरी स्वभाव से गंभीर हैं। बहुत से लोगों में घिरे रहना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन जब सेट पर आती हैं तो रोल जैसा भी हो उसमें पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिल्म ये तेरा घर ये मेरा घर एक ऐसी फिल्म थी जिसमें सरस्वती की भूमिका में उन्होंने लोगों को रुलाया भी तो बहुत हंसाया भी।

महिमा चौधरी के संवेदनशील अभिनय से सजी एक और बहुत प्रभावशाली फिल्म थी दिल क्या करे। ये एक ऐसी पत्नी की कहानी है जो अपनी गोद ली हुई बेटी से बेहद प्रेम करती है और नहीं जानती कि उसका पति ही उस बच्ची का जन्मदाता है। लेकिन जब ये राज जाहिर होता है तो जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है।

महिमा चौधरी ने अपने करियर में तरह तरह के रोल्स अदा किए हैं। फिल्मी दुनिया में महिमा चौधरी उन चंद अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिन्हें अपने अभिनय को विभिन्न रंगों में रंगने का अवसर मिला। शुरुआत हुई

सन 1997 में फिल्म परदेश से। इस फिल्म में उन्होंने गांव की सीधी साधी संस्कारों में बंधी लड़की गंगा का रोल किया। 1999 में फिल्म आई प्यार कोई खेल नहीं, इसमें एक ऐसे विधवा के रोल में थी वो जिसे अपने पति के भाई से ब्याह रचाना पड़ा। राम हो राम हो राम हो राम हो। फिल्म धड़कन आई सन 2000 में, इसमें महिमा चौधरी शीतल वर्मा के किरदार में थी। शीतल वर्मा एक ऐसी प्रेमिका जिससे वो प्यार करती है वो किसी और लड़की के प्रेम में दीवाना है।

महिमा चौधरी के अभिनय से सजी अगर फिल्म लज्जा की बात करें तो इस फिल्म में उनके साथ स्क्रीन शेयर की माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला ने। इसमें उनका रोल मैथिली का था, सशक्त अभिनय था। मैथिली के रूप में एक ऐसी लड़की जो अपने पिता की इज्जत की खातिर दहेज के लोभियों को बहुत करारा जवाब देती है और शादी के मंडप से उठकर इनकार कर देती है। और फिल्म लज्जा महिमा चौधरी की पर्सनल फेवरेट फिल्म भी है।

बात करें अगर फिल्म बागबान की, तो उसमें उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी। सलमान खान की वो संस्कारी पत्नी बनी थी और इस रूप में उन्होंने सबका दिल जीत लिया।

महिमा चौधरी की कुछ और फिल्में हैं ओम जय जगदीश, एलओसी करगिल, सैंडविच, गुमनाम द मिस्ट्री और मुंबई द गैंगस्टर्स। दोस्तों, फिल्म परदेश में स्क्रीन पर महिमा चौधरी ने गाना गाया था, जहां पिया वहां मैं। ये तमन्ना उनकी पूरी हुई सन 2006 में, जब उन्होंने आर्किटेक्ट बॉबी मुखर्जी को अपना पिया माना और अपनी गृहस्थी में रम गई। एक प्यारी सी उनकी बच्ची है। श्रोताओ, ये था आज का आज के फनकार कार्यक्रम, जो आज केंद्रित था अभिनेत्री महिमा चौधरी पर। प्रस्तुति सहयोग रमेश गोखले का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिप्पर। अब दीजिए रेणु बंसल को भी इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

0: कट गया।
1: कट गया, ओ केड़ी गलो?
0: मेरे घर ने एक छोटा जा ब्रदर आ गया है, इसलिए मैं हुन शरारत का कट कर दे।
1: अच्छा, ओ सदा ख्याल रख दे। आरू हुन तुसी जदो स्कूल जाने हो तो फिर स्कूल टिफिन दे विच तुसी सब तो ज्यादा की चीज लेके जानी पसंद करते हो, की खाना पसंद है तुहानू उत्थे?
0: चपाती और सब्जी।
1: अच्छा, चपाती और सब्जी। तो फिर घरे जाके खाण पीण की किसी गल नू लेके तुहाडी पेरेंट्स नाल फाइट हुंदी है भी तू आ खा लै, तो तुसी कहने हो मैं नहीं खाना?
0: नहीं।
1: तो तुसी सारी चीजा खा लैने हो?
0: हाँ।
1: Very good. ते करे तुसी, तुहाडे करे कौन कौन है? तुसी दस्या कि छोटा ब्रदर भी है, होर कौन कौन है?
0: मामी और पापा और दादी।
1: ठीक है, ते तुसी ज्यादा टाइम किदे नाल बिताउणा पसंद करदे हो, ते कौन तुहानू ज्यादा करे मिलदा है, मुहैया हुंदा?
0: दादी और पापा और मम्मा।
1: अच्छा, ते दादी तुहानू कदे कोई स्टोरी भी सुनाउंदे, कोई कहानी कहंदे होण? दसो सानू भी सुनाओ फिर, केड़ी कहानी कहंदे?
0: सबनू प्यार भरी सत श्री अकाल, मेरा नाम आरव है, मैं थोड़े सबनू एक कहानी सुनान लग्या है। कहानी दा नाम है हाथी ते दर्जी। एक दिन हाथी ते दर्जी एक गांव विच रहंदे सी। हाथी हर रोज दर्जी दी दुकान दी खिड़की तो कुछ मंगदा सी सुंड अंदर पाके।
1: अच्छा जी।
0: ते दर्जी उस दी सुंड दे विच कोई भी खान दी चीज पा दिंदा सी।
1: अच्छा।
0: एक दिन दर्जी गुस्से नाल बैठा सी।
1: अच्छा।
0: ते उस दिन जदो हाथी ने सुंड पाई, ओदो जेड़ा दर्जी सी उसने उस दी सुन ते सुई चबाती।
1: ओके।
0: फिर जेड़ा हाथी सी ओ चुपचाप, उस तो बाद उसने एक गंदी नदी दा पानी दिखया, उसने पानी सुंड विच भर के
1: भर लिया।
0: ते दर्जी दी दुकान दे कोले जाके उसके कपड़े ते उसनु ते उसकी दुकान नु गंदा करता।
1: ठीक है,
0: ते इस तो सिख्या मिली है, जो करोंगे ओ भरोंगे।
1: हां, ते नाले आरू एक होर सिख्या मिलदी है, ओ दसो भी हाथी नु की होया, इस सारे कासे च हाथी नु की महसूस होया?
0: हाथी नु गुस्सा आया।
1: हां, किसी नु गुस्सा भी नहीं दबाना चाहिदा है ना।
0: तुसी कदे गुस्सा ना करियो ते मैं भी कदे गुस्सा नहीं करूंगा।
1: चल, आ लगी अपनी शर्त, फिर आपा गुस्सा जड़ा है वो नहीं करदे। सो आरू दे नाल मेरी ता लगी है साथी वो शर्त। होर प्यारी जी बच्ची साडे नाल है, इस बच्ची दा की नाम?
2: रहत प्रकाश।
1: रहत प्रकाश, रहत तुहाडा नाम बड़ा प्यारा है, ये किने रखया तुहाडा नाम?
2: मेरे पापा जी ने।
1: अच्छा, ते तुहाडे पापा जी दा की नाम है?
2: जसमेल सिंह।
1: जसमेल सिंह जी दा नाम किन्ना ने रखिया?
2: उन्हां दे पापा ने रखिया।
1: उन्हां दे पापा ने रखिया, ते उन्हां दे पापा दा नाम दस सकदे हो तुसी मैनूं? जसमेल सिंह जी दे पापा दा, ओ तुहाडे की लगणगे?
2: दादू।
1: हां, ते फिर उन्हां दा नाम भी दस दिओ।
2: सुखदेव सिंह।
1: सुखदेव सिंह। ते रहत केड़े स्कूल च, केड़ी जमात च पढ़दी है?
2: सेलब्रॉक स्कूल क्लास 4th।
1: अच्छा, रहत तुहानूं डाइट दे विच खाण पीण च केड़ियां केड़ियां चीजां पसंद है? मैनूं फ्रूट भी दसना है तुसी, ते मैनूं तुसी भोजन च भी कुछ दसना है की खाना पसंद करदे हो, ते मैनूं तुसी मिठाई च भी दसना हैगा की पसंद करदे हो। चलो पहलां फ्रूट च दसो।
2: एप्पल।
1: एप्पल। ते भोजन च, खाने च?
2: रोटी सब्जी।
1: वेरी गुड। सब्जी कादी?
2: भिंडी।
1: ओह, भिंडी, वेरी गुड। अच्छा, भिंडी थोनूं कट के बनाए हुई पसंद है कि आए विच कट ला के ते उच मसाला भर के?
2: कट के।
1: वेरी गुड। ते मिठाई केड़ी पसंद है तुहानू?
2: काजू कतली।
1: ओह, वेरी गुड। ते काजू कतली जे तुहानू आए कहा जावे भी तुहाडे फ्रिज च काजू कतली दा एक किलो दा डब्बा असीं रख दिंदे आ, ओह रहत किन्ने दिन चलाऊगी?
2: बहुत दिन चला सकती है मैं।
1: बहुत दिन चला सकदे हो, ए तां मतलब फिर तुहाडे अंदर तां बहुत सबर है ना। तुसीं किन्ने पीस खाओगे एक दिन च? फिर
2: एक दिन च मैं कदे कदे तीन नहीं खा लैनी, कदे कदे दो, कदे कदे एक।
1: अच्छा, मतलब तीन तो अगे नहीं वधोगे, तीन टाइम दे तीन पीस है। ते तुहाडा स्कूल च जां जमात च क्लास च तुहाडा बेस्ट फ्रेंड कौन है, उसदा नाम दसो?
2: मेरे ते टू बेस्ट फ्रेंड्स है, एक जैसलीन ते एक रतन।
1: जैसलीन दा पिंड केड़ा है, ओ कित्थों आंदी है, दस सकदे हो?
2: बठिंडा कैंट।
1: अच्छा, बठिंडा कैंट तो आंदी है। ते तुसी कदे जैसलीन दे मुंहों ए सुनिया वी मैं वड्डी हो के आ बनूंगी जां मैं आए करना हैगा?
2: हां जी।
1: की कहंदी हुंदी ओह?
2: ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਆਰਮੀ ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਚ, ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ।
1: ਏਅਰ ਹੋਸਟਸ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਸਲੀਨ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣੂੰਗੀ?
2: ਮੈਂ IPS ਆਫਿਸਰ ਬਣੂੰਗੀ।
1: ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, IPS ਆਫਿਸਰ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਚ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ IPS ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਊਗਾ?
2: ਨਹੀਂ,
1: ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਉਸੇ ਚ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ।
2: ਓਕੇ,
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
2: ਓਕੇ,
1: ਤੁਸੀਂ

0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री इस समय भागीदार देशों के विशेष सत्र को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का संबोधन।
1: क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है। फ्रेंड्स, भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने। हमने ब्रिक्स कनेक्ट के माध्यम से स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी, विमेन इन वर्कफोर्स, सोशल सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया है।
0: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता दीपेंद्र के पास। दीपेंद्र, आज सम्मेलन के अंतिम दिन एजेंडे में क्या कुछ खास है?
2: देखिए,

0: चर्चा अंतिम दिन आज ब्रिक्स के सदस्य और भागीदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आज सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने साझेदार देशों के नेताओं का भारत मंडपम में गर्मजोशी से स्वागत किया और बाद में ग्रुप फोटो के लिए भी सभी एकत्रित हुए। इस सत्र के बाद दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिश्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और इराक के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। आपको बता दें कि भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों से शुरू हुआ समूह कुल मिलाकर 21 देशों का हो गया है, जिसमें सदस्य और साझेदार देश शामिल है। और भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में जो है दोगुना ज्यादा बढ़ा है। ब्रिक्स जो है भारत के लिए
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। कल सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रेंज स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। ये ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। इन नेताओं में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलेना रायबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: का भविष्य आगे बढ़ता है, बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेडी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
3: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आइए अब हम अपने उन सवालों के जवाब जानते हैं जिनके कुछ जवाब हमारे पास पहले से हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारे विशेषज्ञ हमारे बीच हैं तो ये हमें बताएंगे कि किस तरह से छोटी छोटी मदद लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाती है और जब जिंदगियां बदलती हैं तब देश किस तरह से बदलते हैं। तो शैलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जब हम कहते हैं पीएम स्वनिधि योजना, तो किस प्रकार से आप इस योजना के बारे में बताएंगे, कैसे रेडी पटरी विक्रेताओं के साथ ये जुड़ी है योजना?
4: धन्यवाद नीलम जी, मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए। और मैं इसमें बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं सड़कों पे, फुटपाथ पे, गलियों पे, और उनको हम कैसे और उनका जीवन स्तर हम उठा सकते हैं और उन्हें और समृद्ध बना सकते हैं। सो इस संदर्भ में आपने हमें मौका दिया है कि हम इस योजना को उनके बीच कैसे सरलतम रूप से प्रस्तुत कर पाएं। प्रधानमंत्री महोदय ने इस पे दो उदाहरण दिए हैं अपने मन की बात प्रोग्राम में, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूंगा। यह योजना बहुत ही सरल है। जो भी वेंडिंग का काम करते हैं, हॉकर्स हैं, किसी भी सड़क मोहल्ले गली में काम करते हैं, जैसा आपने कहा कि कुछ रेहड़ी और जो ठेला लगाते हैं या छोटे मोटे खोखे लगाते हैं, वो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, निबंधन कराना पड़ेगा

0: शहरी स्थानीय निकाय होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज हम लोग बोलते हैं, वहां उनको एक प्रमाण पत्र जारी होगा वेंडिंग का, और उसके बाद केवल एक आधार की जरूरत है। और कुछ राज्य हैं जैसे असम और मेघालय, वहां पे मतदाता पहचान पत्र की जरूरत है।
1: जी
0: बस इतने ही कागजात के आधार पे वो आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल भी है और ऐप की भी सुविधा है, उसके थ्रू वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो स्थानीय निकाय के लोग होते हैं, शहरी स्थानीय निकाय के लोग, वो लोग भी उनकी मदद करते हैं अप्लाई करने में, आवेदन करने में। और ये लोन आज के डेट में पूरी तरह डिजिटल हो गया है, उन्हें किसी शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपना जो दिन भर का काम है वो भी कर सकते हैं और साथ में वो लोन भी ले सकते हैं। उसमें केवल आधार में जो मोबाइल नंबर रहता है उस पे कुछ ओटीपी आएगा और वो ओटीपी को डाल करके वो

0: सुविधा है उसके थ्रू वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो स्थानीय निकाय के लोग होते हैं, शहरी स्थानीय निकाय के लोग, वो लोग भी उनकी मदद करते हैं अप्लाई करने में, आवेदन करने में। और ये लोन आज के डेट में पूरी तरह डिजिटल हो गया है, उन्हें किसी शाखा में जाने की भी जरूरत नहीं है, वो अपना जो दिन भर का काम है वो भी कर सकते हैं और साथ में वो लोन भी ले सकते हैं। उसमें केवल आधार में जो मोबाइल नंबर रहता है उस पे कुछ ओटीपी आएगा और वो ओटीपी को डाल करके वो अप्रूवल मिल जाता है और खाते में उनके ये पैसा आ जाता है।
1: जी
0: तीन चरण में ये योजना है। पहले चरण में हम अब 15,000 रुपये तक देते हैं
1: जी
0: और इसमें ब्याज की भी चिंता नहीं करनी है। ब्याज में 7% की सब्सिडी, यानी अगर आपका जो भी ब्याज लग रहा है उसमें 7% जो सब्सिडी है वो सरकार देती है। और 15,000 का जो ऋण मिलता है उसे चुकाने के लिए लगभग 12 महीने का समय मिलता है। और इसको जो है वो चाहें तो इसका अर्ली भुगतान भी कर सकते हैं और वह मिनिमम 6 महीना है। 6 महीने के बाद या 12 महीने के बाद इसका भुगतान करने के बाद दूसरे चरण का लोन मिल सकता है और वो 15,000 के बाद जो अगले चरण का लोन मिलेगा वो 25,000 का होगा।
1: जी
0: और अगर वो उसे भी चुका देंगे उसके लिए 18 महीने का समय मिलता है। फिर जो अगले चरण का जो ऋण मिलेगा अब वो 30,000 से बढ़ के 50,000 हो गया है। और इसमें क्रेडिट कार्ड की भी अब सुविधा है, अब क्रेडिट कार्ड का भी लिमिट मिलता है ताकि वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो होलसेलर हैं, जो थोक व्यापारी हैं, उनसे नॉर्मली ये लोग अपना सामान खरीदते हैं जो बेचते हैं, तो वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी अपने थोक विक्रेता से, जिनके यहाँ से ये अपना सामान लाते हैं, वो क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान कर सकते हैं।
1: जी मैं राजेश जी आपसे जानना चाहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के एक से ज्यादा सदस्य इस तरह का काम कर रहे होते
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो अगर किसी एक व्यक्ति ने बैंक से स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण लिया है तो क्या अन्य सदस्यों को भी मिल सकता है?
0: जैसा कि शैलेश जी ने मुख्यतः जो योजना है उसका पूरा पूरा बताया है,
1: जी
0: इसमें जैसा कि उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, और वो आधार कार्ड मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए, और एक सीओबी जिसको सर्टिफिकेट ऑफ बेंडिंग कहते हैं, जो
1: जी
0: अर्बन लोकल बॉडी शहरी स्थानीय निकाय करती है। अगर घर के सदस्य अलग अलग कार्य में लगे हैं तो निश्चित रूप से वो लाभान्वित हो सकते हैं, उनकी पात्रता है इसमें।
1: जी
0: सबसे बड़ी जो एक महत्वपूर्ण काम हुआ पीएम स्वनिधि लाने का, इसके द्वारा जो हमारा अनऑर्गेनाइज इनफॉर्मल ग्रुप था जिनको कोई बैंक में खाता तो है बट जानकारी नहीं थी,
1: जी
0: उनको जोड़ा गया। तो उनको एक रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडी का बहुत बड़ी भूमिका है, और उसके बाद बैंक की भूमिका है कि उनको हैंड होल्डिंग करे, कि डिजिटल से अवेयरनेस, चाहे वो लोन देते वक्त जब हम देते हैं लोन तो उनको क्यूआर कोड भी देते हैं। तो बैंकों की जो भूमिका रही है ना, वो डिजिटल अवेयरनेस में बहुत ही सक्रिय रूप से उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट किया,
1: जी
0: ताकि आप देखिए कि हर ठेले खोमचे शॉप पे आपको क्यूआर कोड हर बैंक का
1: जी
0: मिलेगा।
1: बिल्कुल
0: और कितनी सुविधा हो गई है, हमारे लोग हो सकता है कम पढ़े लिखे हों लेकिन उनको जब ये हैंड होल्डिंग उनके द्वारा जो काम किया गया तो वो उसमें भी डिजिटल में भी बहुत ही सफल हुआ। तो ये सब पीएम स्वनिधि, जो कहते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि आत्मनिर्भर निधि,
1: जी
0: तो इसका मुख्य काम यही था कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वह जागरूकता कैसे लाया जाए, चाहे वो डिजिटल हो या बैंकिंग से प्राप्त होने वाली सुविधाओं के बारे में हो।
1: जी
0: तो अर्बन लोकल बॉडी और बैंक की बहुत बड़ी भूमिका रही इसको सफल बनाने में, और इसको आगे भी ले जाएंगे। तो मेरा कहना है कि लोग को बताने पर, हैंड होल्डिंग करने पर, वो सब समझदारी
1: समझ
0: उनके अंदर
1: जाते
0: आ
1: हैं
0: जाती है
1: जी।
0: जो कि इसको सफल बनाया है।
1: चाहे शुरुआत में वो जाना चाहें एक बार, लेकिन जब वो समझ जाते हैं पूरी प्रक्रिया तो आसान प्रक्रिया है
0: बहुत ही
1: और
0: आसान
1: बहुत
0: प्रक्रिया
1: कम
0: है।
1: पढ़े लिखे लोग भी
0: जी
1: आसानी से ऋण ले
0: बिल्कुल
1: सकते हैं और
0: बिल्कुल
1: उसकी किस्त भी चुका सकते हैं। जी ये आपने बताया। बबीता जी, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में आपका नाम लिया है, आपका जिक्र किया है और आपके नाम से बहुत सारे लोग प्रभावित भी हुए हैं, प्रेरित हुए हैं। आप बताएं कि लोग किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्या बात आपसे कर रहे हैं आजकल?
2: मेरे पास बहुत कॉल आते हैं,
1: जी
2: जैसे डीएम जी से मिलके आई हूँ तो उन्होंने मेरा सम्मान किया है, और डूडा विभाग से जहाँ से मैं ये योजना का मुझे लाभ मिला तो वहाँ भी मुझको सम्मानित किया गया था। तो मैं तो सभी लोगों से यही कहूंगी कि इस लाभ को लेने के लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। किसी को भी इतनी दिक्कत है कि मतलब छोटे छोटे लोन नहीं ले पाते, पहले नहीं मिलता था, मुझे भी नहीं मिलता था कि गारंटर जरूर चाहिए था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अपना आधार कार्ड ले जाकर, और एक पीला कार्ड बनता है जो लाभार्थी का बनता है, वो बहुत जरूरी है, उसको लेकर अगर जाएंगे तो लोन

0: बहुत जल्दी से अप्लाई होता है, कोई धक्के खाने की जरूरत नहीं है, और मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ। तो मैं तो यही चाहूंगी, अगर आप किसी भी को भी योजना चाहिए तो अपना पीला कार्ड और आधार कार्ड लेकर जरूर जाएं।
1: जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप अपना काम कर रही थीं, तब शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें आईं, कैसी परेशानी आई?
0: मैंने लॉकडाउन से पहले जब कोरोना काल हुआ था उस टाइम पे मेरा काम था,
1: जी
0: लेकिन कोरोना काल आने के दौरान मेरा काम बिल्कुल बंद हो चुका था।
1: जी
0: तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो लेकिन एक मेरे भाई हैं जो डोडा विभाग में ही काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक पीला कार्ड बन रहा है बहन, उसको बनवा ले और उससे तुझे थोड़ी सहायता मिलेगी। तो मैं पीला कार्ड बनवाने के लिए मैं गई थी डोडा विभाग में, तभी मुझे सारी टीम ने मुझे समझाया कि इससे 10,000 रुपए का लोन लेकर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं।
1: जी
0: तो मैंने 10,000 का लोन लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और मेरा काम थोड़ा अच्छे से चला।
1: अच्छे से चला जी, बहुत अच्छी बात है। आपसे और भी मैं सवाल करूंगी। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
0: मेरी पसंद का गाना है मदर इंडिया मूवी का, दुनिया में आए हैं तो जीना ही
1: जीना ही
0: पड़ेगा।
1: पड़ेगा। आपने बहुत ही प्रेरित करने वाला गाना चुना है। लीजिए, आपकी पसंद का यही गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। हमारे विशेषज्ञ इस समय हमारे साथ हैं। हमारे साथ श्री राजेश जी हैं, आप महाप्रबंधक, शैलेश जी महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और श्री राजेश कुमार महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से, और हमारे साथ इस योजना की लाभार्थी हैं श्रीमती बबीता शर्मा। शैलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बबीता जी ने जिक्र किया पीले कार्ड का, क्या ये वही वेंडर्स कार्ड है जिसका आप
1: जी
0: उल्लेख
1: हाँ,
0: कर रहे थे?
1: ये अर्बन लोकल बॉडीज इशू करती है, जो शहरी स्थानीय निकाय है वो इशू करते हैं।
0: जी,
1: लेकिन अब इस योजना का विस्तार जो है शहरों से निकलकर छोटे छोटे कस्बों में भी जा रहा है।
0: जी,
1: सो वहां पे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनको दिया गया है कि वो एक LOR इशू कर सकते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। तो वैसे जगहों के लिए जहां अर्बन लोकल बॉडीज नहीं है, वहां पे जो वीडियोज LOR इशू कर रहे हैं, यानी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा पत्र जो इशू कर रहे हैं,
0: जी
1: उसके आधार पे भी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं

0: या हॉकर्स हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
1: जी, जैसा कि बबीता जी ने भी जिक्र किया, पहले ये धारणा थी कि अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो हमें किसी ना किसी तरह की गारंटी जो है वो देनी पड़ेगी और ये आश्वासन देना पड़ेगा बैंक को कि हम आपका लोन जरूर चुकाएंगे। मैं विशेष तौर से आपसे जानना चाहूंगी, स्वनिधि योजना से जुड़ी क्या इस तरह की कोई नियम और शर्त है?
0: बिल्कुल नहीं, ना ही
1: जी
0: किसी की गारंटी देनी है, ना ही कुछ भी आपको अपना संपत्ति या कुछ भी बंधक में रखना है। और जो लोग ठेला वगैरह चलाते हैं वो ठेला भी, उसमें भी कुछ लागत लगती है उनकी, तो उस पे भी कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है,
1: जी
0: ना ही मॉर्गेज क्रिएट होता है, ना ही हाइपोथिकेशन चार्ज क्रिएट होता है, कुछ भी नहीं होता है। वो पूरी तरह से उनके खाते में ये पैसा मिल जाता है। जैसे बबीता जी ने बताया कि इन्हें 10,000 का लोन पहली बार में मिला था,
1: जी
0: अब ये राशि बढ़कर 10,000 से 15,000 हो गई है। और जैसे कि राजेश जी ने बताया कि हर वेंडर्स के पास हम लोग क्यूआर कोड लगा रहे हैं ताकि जो भी वो खुदरा बिक्री करते हैं उसका लेन देन जो है डिजिटली हो जाए,
1: जी
0: तो उसपे भी उन्हें कैशबैक मिलता है। और जिस थोक विक्रेता से वो अपना माल खरीदते हैं
1: जी
0: उसको भी अगर वो डिजिटल लेन देन करते हैं तो वहां पर भी कैशबैक है, वहां पे भी 2,000 रुपये के ऊपर के ट्रांजेक्शन पे उनको कैशबैक मिलता है।
1: जी यहाँ मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि किन्हीं परिस्थितियों में अगर जिसने ऋण लिया है वो ऋण ना चुकता कर पाए बैंक का, तो ऐसे में क्या होता है? क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या कोई दंड का प्रावधान है?
0: इसमें जैसा आपने कहा कि कोई गारंटी लगती है कि नहीं लगती है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की एक संस्था है सीजीटीएमएससी,
1: जी
0: जो सिडबी के द्वारा प्रमोटेड है, प्रायोजित है, तो यहाँ पे सरकार इसका गारंटी फी देती है इस संस्था को, तो ये ऋण जो है उस संस्था के द्वारा गारंटीड रहती है। जब इसमें डिफॉल्ट होता है या लोग नहीं चुका पाते हैं उसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं कि ये अकाउंट एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया,
1: जी
0: तो वैसे केस में बैंक को कुछ पैसा, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पैसा, उस गारंटी फी के बदले में वो जो कंपनी जो सीजीटीएमएससी जो गारंटी प्रदान कर रही है
1: जी
0: उससे कुछ पैसा बैंकों को मिल जाता है।
1: लेकिन उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं
0: इसमें
1: होती?
0: मैं एक
1: जी
0: ऐड करना चाहूंगा कि बैंक का लोन खराब होगा, लेकिन सबसे बड़ी जागरूकता की बात है, इस आकाशवाणी के माध्यम से सारे श्रोताओं को बताऊंगा कि किसी भी लोन में भी हम स्वर्णनिधि में उस तरह से कि आपका जो सीआईसी है उसमें डिफॉल्ट अगर आता है तो भविष्य में आपको कोई भी ऋण लेने से आपको शायद बाधा पहुंचे।
1: जी
0: तो इसलिए है कि जागरूकता की 10,000 नहीं, 15,000, 25,000, 50,000 नहीं, उसके आगे भी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध है। तो
1: जी
0: जो लोग सफलतापूर्वक इसको पुनर्भुगतान करते हैं उनका एक क्रेडिट हिस्ट्री तैयार होता है जिससे उनको आगे लोन लेने में सहायता मिलती है। अगर उन्होंने पहला लोन खराब कर लिया या इसमें किसी भी स्तर पे खराब किया तो उनका जो सिविल स्कोर या सीआईसी बोलते हैं
1: जी
0: जो हिस्ट्री है क्रेडिट की उसमें डिफॉल्ट दिखेगा, तो आगे लोन लेने में उनको असुविधा होगी।
1: यानी अगर नियमों का पालन करते हुए सही समय पर लोन चुकाते हैं तो आगे एक बहुत बड़ी राशि भी मिल सकती है और वो बड़ा काम कर सकते हैं। और
0: बिल्कुल
1: अगर परिस्थितिवश कभी ऐसा हो जाता है कि आप नहीं चुका पाए तो उसका आगे फिर नुकसान हो सकता है।
0: जी
1: जी
0: नीलम जी, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो सरकार के द्वारा इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी मिलना है जो 7% है,
1: जी
0: वो सब्सिडी का फायदा भी तभी मिलेगा जब आप समय से ऋण को चुकाते हैं। और इसमें जो सीआईसी में जो उनका डिफॉल्ट नजर आता है उसको कह सकते हैं कि मार्केट में आपकी साख चली गई,
1: जी बिल्कुल
0: तो आप विश्वास खो जाते हैं मार्केट का। और ये सब डेटा जो है डिजिटली अवेलेबल होगा, सो जितने भी फॉर्मल सेक्टर के लेंडर हैं वो हमेशा कोई भी आवेदन अगर आपके पास आता है ऋण का तो उसको स्वीकृति करने के पहले उस डेटाबेस को देखते हैं,
1: जी
0: तो वहां पे अड़चन आएगी, वहां पे बाधा आएगी कि उनका रिकॉर्ड में नजर आएगा कि ये इस लोन में इन्होंने डिफॉल्ट किया था, तो यहाँ पे साख जो है आपकी गिर जाएगी।
1: जी यानी बहुत सरल तो इस विधि को रखा गया है, लेकिन इसमें विश्वसनीयता बनी रहे इसका भी ध्यान रखा गया है। और यदि अपने काम को लेकर कोई गंभीर हो, सच में उसे जरूरत है, तभी वो लोन के लिए अप्लाई करे। यहाँ मैं शैलेश जी आपसे आपकी पसंद का कोई गाना जानना चाहूंगी। हमारे श्रोताओं को कौन सा गाना आप सुनवा रहे हैं?
0: लाल पत्थर फिल्म का है, गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं मैं, ये शायद
1: जी
0: विनोद मेहरा पे फिल्माया गया
1: जी
0: था।
1: वो पियानो बजा रहे हैं इस
0: जी
1: गाने
0: जी
1: में।
0: जी
1: ठीक है, तो हम यही गाना सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए आपने बताया कि क्यूआर कोड आप देते हैं जो भी वेंडर्स हैं उनको, ऐसे में ये बताएं कि बैंक में आवेदन प्राप्त होने के बाद लोन स्वीकृति जो होती है और जो वितरण होता है उसमें लगभग कितना समय लगता है, और कई बार हमारे जो वेंडर्स होते हैं वो ऐसी स्थिति में भी होते हैं कि बहुत ज्यादा लिखना पढ़ना वो नहीं जानते हैं, तो क्या बैंक की ओर से उन्हें कोई इस तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है कि उनकी ओर से ये काम बैंक स्वयं कर दे?
1: जहां तक बात है कि लोन का डिजिटल होने में, तो अगर जिस बैंक ने स्वनिधि योजना जो है उसको अगर डिजिटल में कर लिया,
0: जी
1: जो तीनों चरण हैं इसके, प्रथम द्वितीय और जिसमें अलग अलग राशि का लोन दिया जाता है, तो इसमें 1 से 2 दिन लगता है।
0: जी
1: और अगर उससे हटकर ऑफलाइन मोड में, जैसे अर्बन लोकल बडी के पोर्टल पे एप्लीकेशन आया, बैंक के पास गया, तो इसमें 3 से 5 दिन में सैंक्शन हो जाता है।
0: जी
1: और इसके लिए मुख्यतः उनको जागरूकता या उनको इसकी समझदारी बढ़ाने के लिए कि वो किस प्रकार से डिजिटल में या पोर्टल में, उसके लिए हम लोग अपने बैंक कर्मियों, जैसे बैंक में जो स्टाफ है, ऑफिसर है और या बीसी कॉरेस्पॉन्डेंट है,
0: जी
1: उन सब की सहायता लेकर के और हैंड होल्डिंग करके अर्बन लोकल बॉडी के साथ मिलकर आउटरीच प्रोग्राम्स करते हैं, कैंप्स करते हैं, और वहां जो लाभार्थी हैं उनको बुला करके 1 बाय 1 पोर्टल से अवगत कराया जाता है। डिजिटल लेंडिंग अगर उपलब्ध है उस बैंक में तो उसको
0: जी
1: डिजिटली कैसे करना है, क्योंकि शैलेश सर ने बताया कि ओटीपी आती है और आने के बाद वेरीफाई होता है और लोन सैंक्शन और डिसबर्स हो जाता है अकाउंट में।
0: जी
1: चूंकि इसकी राशि बहुत बड़ी नहीं है और चूंकि इसमें सीजीटीएमएससी की गारंटी उपलब्ध है, तो मैं निर्भीक होकर जो अपना काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बैंक भी इसमें बढ़ चढ़ करके अपना योगदान दे रही है, तो
0: जी
1: इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। और हैंड होल्डिंग, बीसी कॉरेस्पॉन्डेंट, बैंक कर्मी और यूएलबी के लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं, तभी ये इस मुकाम पे पहुंचा है ये।
0: जी राजेश।

0: आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमने ये तो बात की कि अगर लोन समय से चुकता नहीं हो पाता तो बाजार में साख जो है वो खराब होती है, लेकिन अगर समय से लोन जो है वो चुकाया जा रहा है और अच्छा हमेशा व्यवहार रहा है, तो क्या इसका लाभ मिलता है और किस बड़ी राशि की हम अभी बात कर रहे थे?
1: निश्चित रूप से पीएम स्वनिधि एक मैं कहूंगा कि प्रथम चरण है
0: जी
1: जिसमें हमने और भारत सरकार ने, बैंकों ने, अर्बन लोकल बड़ी ने मिल करके जो हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको जोड़ा है, उनका फाइनेंशियल वित्तीय समावेशन क्रेडिट लिंकेज करके किया। तो ये
0: जी
1: शुरुआत हुई और इसको जिन लोगों ने सफलतापूर्वक भुगतान कर दिया वो हमारा, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना,
0: जी
1: जिसमें कि 20 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है और शुरुआत में ये 50 हजार, 5 लाख और 10 लाख, और 10 लाख का सफल होने पे वो फिर 20 लाख का लोन भी ले सकते हैं। और
0: जी
1: उसके लिए भी इतनी ही सरलता है कि आपका रजिस्ट्रेशन है, आधार कार्ड हो गया, और जैसे अगर बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी हैंड होल्डिंग बैंक की चाहिए होती है उसमें, कि उनका जो बिजनेस कर रहे हैं उसका प्रारूप लेकर के और
0: जी
1: उसको पोर्टल पर ही, उसके लिए भी पोर्टल बना हुआ है, वहां से करके सैंक्शन हो जाता है। और वो 50 हजार का सैंक्शन सफलता करते हैं, नेक्स्ट में वो जैसे शिशु, किशोर एंड तरुण,
0: जी
1: तीन चरण है
0: जी
1: जिसमें 50 हजार और 5 लाख और 10 लाख। तरुण यदि आपने सफलतापूर्वक कर लिया भुगतान तो तरुण प्लस जो कि 20 लाख का लोन होता है मुद्रा योजना के अंतर्गत भी, इसमें भी कोई गारंटी नहीं, कोई बंधक नहीं, और आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है तो आप उसके लाभान्वित हो सकते हैं। यह
0: जी
1: है और उसके आगे तो अंत नहीं है। बैंक जिस तरह से आज सुदृढ़ स्थिति में है, अपने वित्तीय जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसका रीढ़ बना हुआ है, तो निश्चित रूप से जब एक अलग तरीके का एक कैटेगरी तैयार हो रहा है पीएम
0: जी
1: स्वनिधि के माध्यम से, जो निश्चित रूप में एक बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने में सहायता प्रदान करेगा।
0: जी ऐसे में ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि किसी ने लोन लिया और समय पर चुका भी दिया, लेकिन या तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है या वो ज्यादा जानकारी नहीं है उन्हें अन्य कामों की, लेकिन जैसा आपने कहा कि उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा है, साख उनकी अच्छी है, बैंक उन्हें ज्यादा लोन दे सकता है, तो क्या ऐसी भी कोई योजना है कि एक व्यक्ति अगर कोई बड़ा काम न कर पाए तो छोटे छोटे समूहों में मिलकर वो लोन ले और कोई बड़ा काम शुरुआत कर सके उसकी?
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत पहले से जो ये कह लें कि अर्बन और रूरल दोनों जगह में लाइवलीहुड मिशन के तहत जो है
0: जी
1: सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी बहुत जोर शोर से काम चल रहा है भारत में, और इसमें मुख्यतः भारत की नॉर्थ ईस्ट, बिहार, यूपी, राजस्थान, और अपना जो मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का
0: जी
1: निर्माण करके जो लोग समूह बना करके लोन ले सकते हैं। और ये शुरुआत में 6 महीने के ये डेवलपमेंट उनकी ग्रूमिंग होती है कि उनको बैंकिंग प्रणाली की और बैंकिंग लेन देन की समझदारी दी जाती है उनको। उसके लिए लाइवलीहुड मिशन है जो काम करता है बैंकों के हेल्प से, और इसमें आप देखेंगे कि बहुत बड़ा समूह उभर के आ चुका है ऊपर, जो लगभग करोड़ करोड़ के लोन उन लोग को मिल रहा है जब वो लेवल वाइज उठते जाते हैं उससे। तो निश्चित रूप से SHG ग्रुप है और JLG भी है, ज्वाइंट लाइबिलिटी
0: जी
1: ग्रुप, जिसमें नाबार्ड के हेल्प से हम लोग काम करते हैं। तो निश्चित रूप से ये जब समूह बनाएंगे तो बैंक में और सरकार ने योजना दी हुई है जिनकी मदद से वो एंटरप्रेन्योरशिप को और ऊपर ले जा सकते हैं, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं।
0: जी व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं और उसके लिए सुविधाएं हैं। जी ये बताएं कि आप कौन सा गाना सुनवाना चाह रहे हैं हमारे श्रोताओं को?
1: मैं चूंकि पीएम स्वनिधि के कार्यक्रम में आया हूं
0: जी
1: और तो मैं चाहूंगा कि न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो।
0: वाह, बहुत अच्छा गाना आपने ये चुना है, सुनील दत्त साहब का, आपकी पसंद का यही गाना हम सुनवा रहे हैं।

0: तो श्रोताओ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में। योजना की लाभार्थी हमारे साथ हैं बबीता शर्मा जी, और साथ ही हमारे विशेषज्ञ हैं बैंकिंग सेक्टर से, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार की योजनाएं और सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं, और छोटी छोटी सी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन करते हुए, कुछ नियमों का पालन करते हुए लोग अपना काम करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, लेकिन जिस पैसे से पैसा कमाया जाता है वो शुरुआती धनराशि जो है वो जुटाना बहुत मुश्किल होता है, और कभी बहुत मिन्नतें करनी पड़ती थी, किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता था, और कभी अपनी कोई पसंदीदा चीज छोड़नी पड़ती थी, गिरवी रखनी पड़ती थी, तब धनराशि मिलती थी, तब जाकर लोग अपना काम शुरू करते थे। लेकिन ये सारी जो दुविधाएं हैं इन्हें दूर कर चुकी है पीएम स्वनिधि योजना, क्योंकि अब शुरुआती धनराशि जो है भले ही वो थोड़ी छोटी है, लेकिन अपने काम की शुरुआत करने के लिए बहुत जरूरी धनराशि बैंक से मिल जाती है, और धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाते हुए अपनी मेहनत के बल पर बैंकों से और धनराशि प्राप्त की जा सकती है, अपने समूह को बड़ा किया जा सकता है, और इस तरह से अपने सपने को भी छोटे से बड़ा किया जा सकता है, और फिर उसी सपने से जुड़ता है पूरा परिवार, जैसे बबीता जी का परिवार जुड़ा हुआ है। बबीता जी, ये बताएं कि अभी परिवार में कौन कौन सदस्य हैं और आपके काम से सीधे कौन जुड़े हैं?
1: मैं सबसे अपने श्वेता से हाथ जोड़कर सबसे कहना चाहती हूँ, मेरे परिवार में 3 बेटे हैं मेरे जी।

0: और एक मैं, चार हम प्राणी हैं।
1: जी
0: मेरा परिवार जिस तरीके से चलता है, शायद मैंने कभी उम्मीद नहीं की होगी पीएम स्वनिधि योजना से जुड़कर। पीएम माने साक्षात पीएम जी मेरे साथ चलते हैं, और सुनहदी का मतलब है हो गया मेरा सुनहरा पल,
1: जी
0: सुनहरा सफर मेरा चालू हुआ जब मुझे इस योजना से जुड़ने का अवसर मिला। तो आज मैं इस मकाम पर हूँ कि इस अपने बच्चों की फीस भी भर पाई हूँ, और अच्छे कुछ लोग हैं जो मैं गरीब बेटियों की शादी में भी कन्यादान मुक्त दे देती हूँ। और एक एनजीओ है मेरी, ये बात सुनो, तो उसमें कभी कभी 31 बेटियों की शादी भी होती है, तो उसमें मैं अपने पूजा का सामान सारा ऐसी भेजती हूँ उनके कन्यादान के लिए।
1: जी
0: मुझे इतनी खुशी है आज, शायद उसका फल मुझे आज मिला जब मैं यहाँ इस मकाम पर पहुंची। यार मोदी जी का मुझे थोड़ा, उन्होंने मेरा जिक्र जैसे किया है, तो मैं चाहती हूँ जैसे आज मेरा जिक्र किया, सभी महिला हैं या पुरुष हैं इसी योजना का लाभ उठाकर वो भी बन सकते हैं आज
1: जी
0: मोदी जी के जिगर के करीब। आज मैं इतनी
1: जी
0: खुश हूँ कि नहीं बता सकती हूँ कि मैं आज कितनी मुझे खुशी हो रही है सब लोगों से मिलकर कि इस मंच पर मैं आज पहुंची। तो कहीं ना कहीं पीएम जी की शुभकामनाएं मेरे साथ या उनका साथ मेरे लिए बना रहा। लाभ भारती का मतलब होता है कि लाभ, किस तरह का लाभ, एक मैं लाभ भारती किसी लिए भी दे, क्यों इस योजना का लाभ मुझे मिला, तो आज मैं लाभ भारती का शुक्रिया
1: जी
0: अदा करती हूँ कि जो मैं आज अपने परिवार को अच्छे से पाल पाई और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर पाई और अपनी इज्जत से मान सम्मान अपने माँ बापों का नाम रोशन कर पाई, तो इसलिए सब लोगों का आभार प्रकट करती हूँ।
1: जी तो आपके बेटे जो हैं वो आपके काम में हाथ बटाते हैं।
0: जी मेरे जब ये कोरोना काल था तो हम तीनों माँ बेटा बड़े दुबक दुबक कर पर्ची लेकर अंदर से सामान दिया करते थे। बेटे मेरे सुबह स्कूल जब जाते थे तो दुकान खोल करके जाते थे, तो मैं
1: जी
0: इतना उनका लंच बना देती थी, तो जब वो स्कूल जाते थे तो मैं दुकान पर बैठ जाती थी, तो शाम जब वो दोपहर को आना 1 घंटे बाद उनको आराम करके, तो शाम के टाइम उनको बैठा कर फिर खाना बनाने जाती थी। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चली, और मेरे
1: और
0: बच्चों ने
1: अभी
0: मुझे
1: बच्चे
0: बहुत,
1: पढ़ाई कर रहे हैं
0: जी
1: आपके।
0: मुझे मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया।
1: जी
0: हर बच्चे ऐसे हों जो एक माँ को सपोर्ट करें एक हस्बैंड के जाने के बाद, तो कहीं ना कहीं मैं सभी बच्चों को ऐसी एक वो देती हूँ। मेरे बच्चों में आज किसी चीज का ऐब या कोई ये नहीं है कि, बहुत से बच्चों को देखती हूँ मैं कि माँ जॉब करने जाती है, तो मैंने इस तरीके को रख के देखा कि अगर आज मैं जॉब करने जाऊंगी तो मेरे बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, तो मैंने ये कार्य अपनाया। क्योंकि मेरे छोटे बच्चे थे तो उनको बड़ा शौक था, तो 2-2 रुपए की कभी टॉफी लेकर आते थे तो दरवाजे पर रखकर एक स्टूल बैठ जाते थे, तो जैसे हमारी गली है तो उसी में ही सब बच्चों को बुलाकर इतने में उस चीज को बेच देते थे।
1: जी
0: तो मुझे
1: यानी छोटी
0: कहीं,
1: उम्र से ही आपने
0: जी
1: स्वावलंबन सिखाया उन्हें।
0: मुझे ये कहीं ना कहीं लगा कि स्वाभिमानी से भी जीना है, और मेरे बच्चे साथ मेरे रहेंगे तो मैं उनको पाल भी पाऊंगी और उनको अच्छे से परवरिश भी दे पाऊंगी, तो इसलिए मैंने जॉब को ना कर कर ये
1: अपना काम
0: रास्ता
1: आपने शुरू
0: अपनाया,
1: किया।
0: तो
1: जी
0: इसमें मुझे अच्छा एक रिस्पॉन्स मिला अपने बच्चों से भी। तो सभी बच्चों को मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आज मेरे बच्चे आज मेरे साथ में सपोर्ट कर बन के खड़े हैं और आज मैं यहाँ हूँ, कुछ ना कुछ उसमें आज मेरे बच्चों का भी सपोर्ट है, तो सबके बच्चे ऐसे बने और अपनी माँ का नाम रोशन करें, और मेरी
1: जी
0: तरह एक महिला बन के अपने आप में सम्मान को बचा सकती है और पैरों पर खड़ा हो सकती है।
1: जी बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से बबीता जी मैं आपको देती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे ये सुनना, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि एक महिला अपने स्वाभिमान के साथ ये काम कर सकती है, और
0: जी
1: दूसरा आपने अपनी जो कहानी हमें बताई है उससे हमारे ऐसे बहुत सारे श्रोता प्रेरित जरूर हुए होंगे जो जीवन में इस समय कहीं किसी कठिन दौर का सामना कर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो अपने आसपास के लोगों से मदद मांगिए, उनसे जिक्र कीजिए, क्योंकि हमारे लिए ऐसी बहुत सारी सुविधाएं होती हैं सरकार की ओर से दी गई होती हैं, जिनकी कई बार हमें जानकारी नहीं होती, और जानकारी के अभाव में जो हमारा संघर्ष का समय है वो थोड़ा सा और जटिल लगने लगता है। लेकिन जब मदद का हाथ मिलता है तब हमारी परेशानियां दूर होने लगती हैं, और बबीता जी इसका साक्षात उदाहरण हमारे सामने इस समय हमारे स्टूडियो में बैठी हैं। बबीता जी आपसे मैं और बातें करूंगी और आपसे बहुत कुछ जानना है।
0: जी
1: शैलेश जी
0: मैम,
1: मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसने जो अनौपचारिक क्षेत्र है हमारा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जैसे रेडी पटरी वाले और अन्य खोमचे वाले हैं, खोखे वाले हैं, इनको मुख्य धारा की बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने का किस तरह का स्वाभिमान दिया है, किस तरह का आत्मविश्वास इस योजना ने दिया है?
2: यह योजना एक तरीके से कहें तो

0: बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया है,
1: जी
0: क्योंकि ऐसे जो वो मनी लेंडर या जो बाजार में जो लोग उधार देते हैं, और वह काफी महंगा होता है और उनके वसूली की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है,
1: जी
0: और ऐसे में ये बिल्कुल ही सरल है, और इससे ना ही उसमें उनमें केवल आत्मनिर्भरता आई है, स्वावलंबन आया है, इसको हम लोग स्वनिधि से समृद्धि की ओर का भी एक हम लोग देख सकते हैं कि रास्ता तैयार हो रहा है। और जैसा कि राजेश जी ने कहा कि आगे अगर वो मुद्रा योजना का भी लाभ लेते हैं,
1: जी
0: तो हम केवल यहाँ पे स्वरोजगार की बात नहीं है, यहाँ पे आप रोजगार का सृजन भी करते हैं और समाज के दूसरे लोगों को भी रोजगार मुहैया करा सकते हैं।
1: जी
0: तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि इस छोटे से स्वनिधि से आप प्राप्त कर सकते हैं, और यह बैंकरों को भी काफी संतोष और खुशी प्रदान करता है कि मात्र 15,000 रुपये के ऋण से शुरुआत करके वो हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो यह सबके लिए, जिसको कहते हैं विन विन सिचुएशन फॉर ऑल, ये सभी के लिए काफी अच्छा है, देश के लिए, समाज के लिए, बैंक्स के लिए,
1: जी
0: सबके लिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुख्य धारा में जुड़ें और देश की आर्थिक विकास में सहयोग करें।
1: जी राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा कहा जाता है कि कई बार जो आर्थिक परेशानियां होती हैं वो व्यक्ति को किसी ना किसी अपराध की तरफ भी धकेल देती हैं, तो आपका क्या विचार है इस बारे में कि जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ते हैं, एक डेटा तैयार होता है, तो क्या इससे अपराधों में भी कमी आई है?
2: निश्चित रूप से जब रोजगार के अवसर नहीं होते हैं तो भटकाव, एक बहुत सारे ऐसे तत्व हैं हमारे समाज
1: जी
2: में जहां पर कि लोगों को ध्यान आकर्षित करते हैं और कुछ बह जाते हैं उसमें। निश्चित रूप से पीएम स्वनिधि योजना, इसमें 18 वर्ष से ऊपर जो ऋण के
1: जी
2: लिए पात्रता होती है उन सबको एक अवसर दे रही है कि वो किस तरह से अपना रोजगार, स्वरोजगार आरंभ कर सकते हैं, और
1: जी
2: उसके लिए कि स्वनिधि से समृद्धि की तरफ। तो बहुत ही अच्छा एक अवसर है कि वो सारे युवा, चाहे वो महिलाएं हो, पुरुष हो, या जो भी इसमें योग्यता पात्रता के हिसाब से हैं, इसका लाभ उठा करके निश्चित रूप से इस अपराध के जो अवसर थे
1: जी
2: उसमें कमी आई है और लोग रोजगार की तरफ बढ़े हैं, अपने जीवन के स्वावलंबन की तरफ बढ़े हैं।
1: जी बबीता जी, आपसे जानना
2: जी
1: चाहूंगी, जब सबसे पहले आपको लोन की पहली किस्त मिली तो क्या बदलाव आया, उसका आपने क्या किया?
3: मैंने उसका, उस टाइम पे मेरा काम बंद था तो उसमें अपना सामान उठाकर अपनी दुकान में लगाया और व्यापार मैंने अपना चालू किया।
1: जी
3: तो ये अभी सर ने बोला कि 5,000, 15,000 का मतलब नहीं है, अगर मुझे लगन और मेहनत, एक मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, मेहनत
1: जी
3: करना मेरे पापा ने सिखाया और हिम्मत और साथ मेरे पीएम जी ने मुझे दिया, तो मुझे दोनों को मिलकर मेरी हिम्मत बनी। तो मतलब 5,000 से नहीं होता, मतलब होता कोशिश करने से। 10,000 से मैंने कोशिश की तो मैं यहाँ तक पहुंची।
1: जी
3: तो 10,000 का अगर किसी इंसान को अगर लगन हिम्मत होगी तो 10,000 पे से अपना व्यापार चला सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें लाख 2 लाख रुपए चाहिए, 5,000 से भी बिजनेस चालू कर सकते हैं, लेकिन ये जुनून होना चाहिए।
1: जी और आपको जो ऋण आपने चुकाया बैंक को, वापस दिए पैसे, उसमें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हुई?
3: नहीं, मेरा पेटीएम से लेन देन होता है तो जब मेरा कारोबार बढ़ा तो उसमें मेरी किस्त अपने आप ही उससे ही कट जाती है।
1: जी और अब आप क्या सोच रही हैं आगे?
3: अगर पीएम सुनिधि जी का मुझे साथ मिला और ऐसे सर मेरे सामने बैठे, इनका हाथ जोड़कर वो करती हूँ धन्यवाद, जो ऐसे लोग हम लोगों के लिए सेवा में लगे हैं,
1: जी
3: मौका मिला तो कुछ अच्छा कर पाऊँ और आप लोगों के बीच दोबारा आ पाऊँ,
1: जी
3: यही निवेदन करती हूँ।
1: तो बबीता जी, आपका ये हौसला बना रहे, हम यही चाहेंगे। ये बताइए कि आप अपनी पसंद का एक और गाना हमारे श्रोताओं को कौन सा सुनवाना चाहेंगी?
3: जिंदगी प्यार का गीत है,
1: जी
3: इसको सुनना पसंद करूंगी
1: जी
3: और
1: बिल्कुल,
3: सबको।
1: यही गाना हम आपको सुनवा रहे हैं सौतन फिल्म से।

तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और हमें बबीता जी ने, जो कि पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं, आपने अपने गाने के माध्यम से हमें संदेश दिया, जिंदगी प्यार का गीत है। तो गीत जो है वो तब बनता है जब हमें लोगों का साथ मिलता है, और पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से हमारी जो बैंकिंग प्रणाली है वो लोगों का साथ दे रही है हर मुश्किल के घड़ी में, ताकि हमारे जो रेड़ी पटरी पर काम करने वाले भाई बहन हैं, और जो इस समय संघर्ष की स्थिति का सामना कर रहे हैं, या फिर खोमचे वाले हैं, खोखे वाले हैं, वो बैंक से लोन ले सके और अपने काम को आगे बढ़ा सके, और फिर बबीता जी की तरह समय से वो लोन चुकाकर बड़े लोन का सपना देख सके, बड़े काम का सपना देख सके। तो मैं शैलेश जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, हम अक्सर ये मानते हैं कि जो बैंकों का मुख्य कार्य है वो ये है कि

0: हम जो कमाई करते हैं उसमें से जो हिस्सा बैंक को हम देते हैं, यानी हमारी सेविंग्स, उसकी सुरक्षा करना। लेकिन हम आजकल ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंकों के माध्यम से समाज के अलग अलग वर्गों को मिल रही हैं। मैं आपसे कुछ ऐसी मुख्य सुविधाओं के बारे में जानना चाहूंगी जिनसे लोगों को लाभ जरूर उठाना चाहिए। क्या इस तरह की मेन स्कीम्स हैं जिनके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे?
1: नीलम जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बैंकों का मुख्य काम है कि आपने जो अपने जीवन में बहुत मेहनत करके जो गाढ़ी कमाई की है
0: जी
1: उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो उसमें बैंकों का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इसमें एक लॉकर की भी सुविधा आती है
0: जी
1: कि जैसे आप बहुमूल्य जो आपके गहने हैं या जेवरात हैं या जो बहुत महत्वपूर्ण कागजात हैं, जैसे
0: जी
1: आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, तो उसके कागजात हैं, और अब तो बहुत लोग अपनी वसीयत भी तैयार करते हैं, सो जो है ये सबको भी अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, केवल
0: जी
1: अपने गाढ़ी कमाई को नहीं बल्कि जो जेवरात या जो बहुमूल्य सामान है आपके जीवन के, उनको भी सुरक्षित करने के लिए लॉकर की सुविधा है।
0: जी
1: और फिर बहुत सारे निवेश करने में आपको सहायता या परामर्श देने का भी काम बैंक करती है। और जैसे आप अपने बच्चों के जीवन में आगे कब एजुकेशन में क्या खर्च आएगा, उनके मैरिज के समय, उनके विवाह के समय क्या खर्च आएगा, फिर उनके बाद आपको कोई घर खरीदना हो या आपको गाड़ी खरीदनी हो, तो किस समय क्या जरूरत आएगी उसके हिसाब से आप अपनी योजना बना सकते हैं।
0: जी
1: इसमें भी बैंक जो है आपको मदद करती है, एक परामर्शी सेवा भी प्रदान करती है जिसको हम लोग वेल्थ सर्विसेज भी कहते हैं,
0: जी
1: और वह भी बैंक कर रही है अपने चुने हुए ग्राहकों के लिए। और जो व्यवसायी वर्ग हैं, जिस तरीके का वो व्यवसाय करना चाहते हैं, उन
0: जी
1: सब के लिए ऋण की सुविधा है। और जो स्टार्टअप्स लाना चाहते हैं, तो बेसिक स्टार्टअप तो स्वनिधि भी एक तरीके का स्टार्टअप ही है,
0: जी
1: और उससे थोड़ा ऊपर का मुद्रा से शुरू होता है, लेकिन हमने आईटी सेक्टर में बहुत प्रगति की है हाल के दिनों में, और बहुत सारी कंपनियां ऐसी आई हैं जो केवल आईटी सर्विसेज शुरुआत दे रही हैं, सेवा प्रदान कर रही हैं, खासकर आईआईटी आईएम से पढ़े हुए युवा। सो वो अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो उसके इकोसिस्टम को भी बैंक मदद कर रही है।
0: जी
1: जितने आप ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, रियल एस्टेट बिल्डर्स देखते हैं, सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं कि उनकी जो भी जरूरतें हैं, वित्तीय जरूरतें,
0: जी
1: सब कुछ ये बैंकिंग सेक्टर में क्षमता है आज के दिन में कि सबकी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं।
0: जी
1: नीलम जी, इस चूंकि पीएम स्वनिधि की बात हो रही है
0: जी
1: तो शैलेश जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि ये तो वित्तीय सेवाएं बैंक देती ही है या निवेश के लिए परामर्शी सेवाएं, इसके अलावे जो सीएसआर के तहत
0: जी
1: आप देखेंगे कि गांव में, आप शैलेश जी इस बात से सहमत होंगे कि आरसेटी, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है,
0: जी
1: वो हर एक जिला एक बैंक के साथ जुड़ा है एज ए लीड डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम से,
0: जी
1: तो वो उसको चलाना है आरसीटी का इंस्टीट्यूट, जिसमें कि वहां के युवाओं को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके स्किल डेवलपमेंट में सहयोग प्रदान करती है। तो
0: जी
1: आरसीटी की भूमिका है। उसी प्रकार से जो एक फार्मर्स ट्रेनिंग क्लब है जिसमें किसानों को आधुनिक कृषि सेवाएं या कृषि कैसे किया जाए उसके बारे में जानकारी,
0: जी
1: बीज, मिट्टी का जो उपयोगिता कैसे बढ़ाई जाए उसके विषय में उनको जानकारी दी जाती है, पेड़ पौधे किस तरह से किस मौसम में लगाई जाए, इन
0: जी
1: सब की भी सुविधाएं बैंक देती है।
0: जी यानी समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, जो अलग अलग कामों से जुड़े हैं, सभी के लिए बैंकिंग सेक्टर में कुछ ना कुछ है।
1: जी
0: बस
1: जी
0: जाकर सही बात अपने लिए क्या सुविधा है उसका चयन करने की और प्रक्रिया को समझने की जरूरत है।
1: बहुत सही।
0: चलते चलते आपसे एक और सवाल। कई बार लोगों को शिकायत होती है बैंकों से भी, सुविधाएं तो बहुत मिल रही हैं। अगर ऐसा लगता है कि बैंक समय से हमारी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे, या कोई ऐसी प्रक्रिया है जो समझ में नहीं आ रही है, बहुत जटिल है, या बार बार जाना पड़ रहा है, काम नहीं हो रहा है, तो बैंकों के बारे में शिकायत कहाँ की जाए?
1: बहुत ही सही प्रश्न है ये। आज
0: जी
1: के समय में ग्राहक सेवा
0: जी
1: प्रथम स्थान पे है सभी बैंकों के लिए,
0: जी
1: और उसमें अगर किसी को इस तरह की परेशानी होती है,
0: जी
1: हर एक बैंक का वेबसाइट है, या आप पत्र के माध्यम से उसके प्रधान कार्यालय को या स्थानीय कार्यालय, जैसे स्टेट बैंक का एलएचओ होता है, हमारा
0: जी
1: अंचल कार्यालय या मंडल कार्यालय होता है, अन्य बैंकों की इस तरह की सुविधा है, वहां पत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। एक सीआरएम, कस्टमर रिडर्सल पोर्टल भी है।

0: वहां पे वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ओम्बड्समैन की प्रक्रिया है जिसमें आरबीआई के माध्यम से आप अपनी शिकायतों को उठाते हैं
1: जी
0: और उसका क्रमशः नीतिगत रूप से निदान होता है, निपटान होता है। और
1: जी
0: ये सब चीजें आजकल बैंकों के लिए, हम लोग फीडबैक मांगते हैं कि हमारे जो शाखाएं हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं, या जो अन्य वर्टिकल्स हैं वो कहीं भी समस्या है तो उसको ग्राहक से सुनकर एक फीडबैक के रूप में उसको लिया जाता है। और ये सारे माध्यम हैं जिनके माध्यम से ये सारे शिकायतों का निपटान हो सकता है।
1: जी यानी अगर कोई परेशानी है तो उसका समाधान भी हमें बैंक से ही मिल जाएगा। तो राजेश कुमार जी इस कार्यक्रम में हमारे साथ, महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक से हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे। श्री शैलेश कुमार, आप महाप्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज रही श्रीमती बबीता शर्मा, आप प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की ऐसी लाभार्थी जो हमारे हर तीज त्योहार में हमारे साथ होती हैं, बस हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि हम जो पूजा का सामान लाते हैं और अपने पर्व त्योहारों पर अपने घर को जो हम सजाते हैं, अपने अनुष्ठानों में अपनी आस्था को रंग भरते जो सामान हम इस्तेमाल करते हैं, उस सामान को बबीता जी बेचती हैं अपनी दुकान पर। जो दुकान इन्होंने बढ़ाई है, सजाई है, जिसे पहले से बेहतर किया है आपने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से। और इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है ये हमारे दोनों विशेषज्ञों ने हमें बताया है बबीता जी की कहानी से। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोता प्रेरित होंगे और फिर जीवन में आगे बढ़े। आकाशवाणी की पूरी टीम की ओर से मैं अपने सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं देती हूँ और साथ ही अपने विशेषज्ञों का भी यहाँ पर आभार व्यक्त करती हूँ। तो राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमें समय दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी और सभी श्रोताओं को, कि हम लोगों को आकाशवाणी दिल्ली को बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शैलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो आए।
0: धन्यवाद।
2: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਐਫ ਐਮ ਰੇਨਬੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ, ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ 11:59 ਤੇ 43 ਸਕਿੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਤੇ 12:05 ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪਲ ਕਰੋ ਉਡੀਕ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिसरप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में।

0: मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
1: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में 4 देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
0: जी,
1: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today said pandemics, climate disasters and supply chain disruption have demonstrated that in today's interconnected world, no crisis remains confined to a single region. Addressing the open session of BRICS Summit at Bharat Mandapam in New Delhi, Mr. Modi said BRICS nations have therefore placed special emphasis on enhancing resilience among the grouping. In the session on resilience, innovation, cooperation and sustainability, Mr. Modi also emphasized on timely identification of challenges, preparation for them and taking immediate action. He said that a consensus has been reached on a BRICS integrated early warning system for the prevention of and response to infectious diseases. He added that early warning data integration guidelines have been formulated for disaster management.
3: आज के interconnected world में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने BRICS समूह में resilience बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
2: Prime Minister Modi cautioned that weaponization of technology and critical minerals can become a hurdle for progress. He said BRICS nations have stressed on inclusivity in adoption of technology.
3: Technology or critical minerals ka weaponization hamari saajha pragati mein badha ban sakta hai. Isliye humne technology ke adoption mein inclusivity par bal diya hai.
2: Mr. Modi said they have set up a BRICS Digital Center of Excellence

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नु लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
1: छाती अते साह दीआं तकलीफां तों परेशान हो बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज मिलो डॉक्टर आंचल जैन MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नूं दमा COPD खंघ साह चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज बड़ियाल हस्पताल नेड़े DAV कॉलेज BB वाला रोड बठिंडा कॉन्टैक्ट 7527011711 बड़ियाल हस्पताल तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी
2: जिथे पिंड दी मिट्टी बोले उथे हर कहानी खास हुंदी है जी स्रोतियो प्रोग्राम पिंडा विचो पिंड सुनिंदा दे तहत सुखमान सिंह अते अमनदीप कौर पहुंचे ने पिंड कोटली अते तुसी जानोगे इस पिंड दे बारे मिति 13 सितंबर दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे

प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ते आओ जानदे आ पिंड कोटली दी मिट्टी, लोकां, रंगां ते यादां दी दिलचस्प कहानी, पिंड दे लोकां दी जुबानी। प्रोग्राम पिंडां विच्चों पिंड सुनिंदा, कोटली दी गल कोटली दे लोकां दे नाल।

0: वी नो।
1: मैंने 22 ईयर हो गए थे।
0: 22 ईयर्स, 22 साल।
1: हाँ जी,
0: ओए होए होए होए, 22 साल के
1: हाँ
0: पत्थर नाल भी
1: जी।
0: मत्था
1: हाँ,
0: मारिया।
1: जल्दी
0: मैनू आए लगता है भी जिन्ने भी साडियां भैणां ने हुण तक गुण दसे है,
1: सुधरने
0: मतलब चंगे गुण नहीं माड़े गुण दसे आपदे घर वाले ने, मिला था मैनू सारे कट्ठे ही मिल गए।
1: नहीं
0: मैनू वो सारे कट्ठे ही
1: है।
0: मिले हुए है, चलो तुहानू एक एक करके मिलिया होया, बट
1: हाँ
0: मैनू वो
1: जी। हाँ
0: सारे रब ने कट्ठे ही देते भी। लै पुत, तू किसे गलो वो ना हो, थोड़ी
1: हाँ,
0: ना
1: तुसी
0: ना,
1: ना पिछे रह जाओ कितने।
0: हाँ
1: हाँ
0: तुसी
1: जी,
0: थोड़े हो ना किसे गल तो, ते हुण दसो ना दी इक चंगी आदत।
1: चंगिया ते कि वो बहुत ज्यादा मेरे ना, खैर कोऑपरेटिव आ, बट इस मैटर च नहीं कि बस ट्रैवल दे मैटर च नहीं, बाकी मैनू अंडरस्टैंड करदे आ, मैनू
0: जी
1: हर गल ते सपोर्ट करदे आ,
0: जी
1: जिथे मैं भी उन्हां नू, ते तो बहुत नाइस आ, बहुत वधिया नेचर आ,
0: अच्छा,
1: बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अंडरस्टैंडिंग है,
0: बस कल टॉवल दी गल नहीं मानते है ना,
1: बस टावर वाली गल नहीं मानते, बाकी बहुत वधिया है।
0: सारा बाई साडा ना बाई सारा कीते कराए ते मिट्टी पाई जांदा
1: हाँ
0: सिर्फ ते सिर्फ तौलिए करके, है
1: जी, हाँ जी,
0: ना।
1: बिल्कुल जी, बस ये इस गल से नहीं मानते, बाकी अदरवाइज मैं वाहिगुरु का शुक्र करती हूँ कि मैनू, मतलब मेरी लाइफ से हो या पर्सनल, मतलब है बहुत, मैं वाहिगुरु का बहुत बहुत शुक्र करती हूँ।
0: बाई जी साडे सुनी जांदे है,
1: हाँ जी, सुनी जाते।
0: फिर तो शॉपिंग पक्की है मैडम थोड़ी। आज तो थोड़ी शॉपिंग
1: नहीं,
0: पक्की है।
1: शॉपिंग भी नहीं है, आई मीन मैं वैसे कभी तो टाइम ही अज नहीं हैगा,
0: हाँ,
1: बट जे नहीं मतलब करवानी, जब मैं कहूंगी शॉपिंग जाना नहीं अज नहीं, फिर किसी दिन ले जाऊंगा, अज टाइम ही हैगा, बट मना नहीं करता, चलो ठीक है ले जाते, बाद ले जाते, फिर मैं भी उन्होंने मजबूरी समझनी कि हाँ वाकई अज टाइम नहीं हैगा, अज ऐसे काम है गया, चलो कि हाँ बाद पर प्रॉमिस पूरा करते हैं कि मैनू ले जाते हैं बाद।
0: एनी अंडरस्टैंडिंग दा अपनी 22 सालां दे विच की एक 2 सालां दे विच ही हो जांदे वी, चल हाँ जे टाइम है नहीं तां आपां चलो किसे, जदों
1: हाँ
0: इन्ना
1: जी, हाँ
0: कोले टाइम
1: जी,
0: होया आपां उदों चले जावांगे, है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: चलो बहुत वधिया लग्गिया तुहाडे नाल गल करके रविंदर कौर जी, ते गीत
1: हाँ
0: फिर
1: जी,
0: तुहानू सुणाइए गुरदास मान दी आवाज दे विच रोटी
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी मैम,
0: जी।
1: हाँ
0: रविंदर
1: जी,
0: फोन करन ली
1: धन्यवाद
0: भैण, बहुत बहुत धन्यवाद, आ रहा थोड़े पसंद दा गीत।
1: जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके जी, ओके।
1: ओके।
0: रब वर्गा

अनाज पीसण दी रसम। पंजाब दे वासी पहला अनाज नूं घर लगियां हथ चक्कियां राही पीस के आटा बनाउंदे सन। व्याह शादियां विच आटे ते दालां दी काफी लागत होण करके व्याह तो काफी दिन पहला ही लोकां दियां चक्कियां इकट्ठियां करके महल्ले दियां औरतां नूं बुला के कणक अते दालां पीसियां जांदियां ते इस मौके औरतां वल्लों गीत भी गाए जांदे सन।

विज्ञान दी दुनिया खोजां दियां कहानियां अते भारत दे महान विज्ञानियां दियां उपलब्धियां जी स्रोतियो मिति 14 सितंबर दिन सोमवार सवेरे 7 बजे सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे तहत तुसी सुनोगे विषा भारत दे महान विज्ञानी खोज तो उपलब्धि तक। वाचक ममता अरोड़ा, प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा।

जिथे पिंड दी मिट्टी बोले उथे हर कहानी खास हुंदी है। जी स्रोतियो, प्रोग्राम पिंडा विचो पिंड सुनिंदा दे तहत सुखमान सिंह अते अमनदीप कौर पहुंचे ने पिंड कोटली अते तुसी जानोगे इस पिंड दे बारे। मिति 13 सितंबर दिन एतवार दोपहर 2:30 बजे।

प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा। ते आओ जानदे आ पिंड कोटली दी मिट्टी, लोकां, रंगां ते यादां दी दिलचस्प कहानी पिंड दे लोकां दी जुबानी। प्रोग्राम पिंडां विचो पिंड सुनिंदा, कोटली दी गल कोटली दे लोकां दे नाल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र

0: की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
0: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
0: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत

0: विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
1: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
2: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
3: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास

था, प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। दो दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मन चाहे गीत। आपके फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा उपाध्याय सुनवाने वाली हूं आपके पसंदीदा गीत। और लीजिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ और उसके बाद हम नाम लेंगे उन श्रोताओं का जिन्होंने उसकी फरमाइश लिख भेजी है।

अमित कुमार की आवाज में ये गीत तेरी कसम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था समलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव ने। नेपाली पारा नाजिरगंज, हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दृशा, रितेश लिंबू और उनका परिवार। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन और यूसुफुद्दीन ने। अब्दुल बाबा अंजाना ने भी इसे सुनना चाहा था। वाड़ी वडोदरा गुजरात से गिरीश बाम, वैशाली बाम, अजिंक्य और अक्षय ने इसे सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनना चाहा था बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे इस गीत में। अनुरोध फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने इसे लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी कोल सिटी बरका गाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग ने, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीला और तुषारिणी, साथ ही साथ खुमेंद्र मसीहा ने इसे सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। फ्रेंड्स कॉलोनी बेंगलोर से आरिफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, साथ ही पटवा हिम्मतलाल हरकचंद ने, वर्धमान नगर जैन सोसाइटी भचाऊ कच्छ भुज से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार। गांव चलाना काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल खलील और महबूब दल ने। पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और बिटिया सोनम ने। इंदिरा विहार

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म से, इंदिवर ने इसे लिखा, उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था लावरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और उनका समस्त परिवार, कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक, वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत ने, डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू ने, और अकोला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा था गजानन कुम्हार, पद्मावती कुम्हार, विशाल, ज्योति, मधुर और उनके परिवार ने।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

चलते चलते ये गीत पाकीज़ा फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनना चाहा था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल नेशा ने, पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार झाझोरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू ने, रामनाहली बेंगलुरु से महमद आरिफ, अरफा फातिमा, MH शरीफ और आरिफ हुसैन ने, तालुका उमरखेंड ढांकी से राम गाड़ेकर, सुनीता गाड़ेकर और अभिजीत, साथ ही कोमल अभिषेक, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक और शोभा नायक, साथ ही उनका समस्त डागला परिवार इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, श्रोताओ, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया।

0: रोटी, मेरी तो समझ में नहीं आता हम इस पार्क में क्यों चले आए।
1: क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप?
0: अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ?
1: फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
0: अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉट्सबाय, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया।
1: देखो फिलिप, इस शहर में सभी लोग सुखी और सफल नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जीवन के संघर्ष में अभी तक असफल रहे हों और निराशा का मुंह देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी निराशा और असफलता को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे लोग शाम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना सके।
0: लेकिन गोटी, इसमें पार्क की खूबी कहाँ से आ गई?
1: देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। जिंदगी में थके हारे ये लोग अपने दुखी मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद देने के लिए यहाँ आ जाते। इस शांत वातावरण में, चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर बैठकर उन्हें बहुत सुकून मिलता। वो अपना दर्द, अपनी परेशानी सब भूल जाते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो चेहरे पर उदासी की जगह ताजगी और निराशा की जगह आशा झलकने लगती है। आप बताओ फिलिप, क्या ये कम बड़ी बात?
0: वाकई वाकई बहुत बड़ी बात है। और गौड़ भाई साहब, अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं।
1: मैं?
0: हाँ, तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है।
1: कैसे?
0: तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया और उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में, जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहाँ आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं दोस्त, ये बात नहीं। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत। दो दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चली आएगी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ,
0: तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए?
1: फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ।
0: अच्छा?
1: यहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे हैं ना, उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ चिपे बैठे।
0: अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है, उसका चेहरा क्या बता रहा है?
1: साहब बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इनके चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किराएदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना

0: भूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ देखना।
1: तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी यार। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था।
2: पता नहीं यार तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए।
0: नहीं दोस्त नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है। ये सब तो खाली वक्त के शगल है।
2: अरे घोटी भाई, तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चलें यहाँ से।
0: हाँ चलो।
2: देखो भाई, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना।
0: नहीं नहीं नहीं आज नहीं, कल या किसी और दिन।
2: क्यों भाई आज क्यों नहीं?
0: भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूंगा।
2: मान गया यार, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, चले।
0: हाँ चलो।
2: अरे हाँ यार, याद आया यार, मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगड़ के पास जाना है, वहां थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या?
0: नहीं नहीं नहीं फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं।
2: ठीक है, मैं जल्दी ही वापिस आता हूँ।
0: हाँ।
2: लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना। हाँ।
0: नहीं, नहीं।

0: मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
1: जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए, आइए आइए।
0: आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा।
1: पर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते हैं, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? ऐसा मत कहिए। अच्छा आप यहाँ रोज आते हैं?
0: और कहाँ जा सकता हूँ, किस तरह वक्त तो काट नहीं है।
1: लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेले रहते हैं क्या?
0: हाँ ऐसा ही समझो, मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी। घर में दो शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं।
1: अब कहाँ कहाँ चले जाते हैं?
0: अपनी अपनी नौकरी पर।
1: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता, और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है।
0: लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ, रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं? सच मानो ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या, सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो?
1: अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बनाकर रख दिया, जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? है?
0: ये जरा सी बात है, है? इस उम्र में इतना अकेलापन?
1: श्रीमान इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए।
0: मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो?
1: श्रीमान आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते, बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, फिर देखिए ना आपको वक्त का पता चलेगा ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्यों, क्या सोचने लगे श्रीमान?
0: नौजवान तुम्हारी बात में वजन है, इस पर अमल करके देखता हूँ कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा अब चलूंगा।
1: अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी अभी तो आप आए हैं। आज

0: कुछ जल्दी है, ये चाला देख रहे हो ना?
1: हाँ,
0: यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी।
1: अच्छा अच्छा,
0: इन्हें घर पहुँचाना है। अच्छा,
1: हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। फिलिप अभी तक नहीं आया, कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौटूंगा। इतनी देर हो गई लेकिन उसका इंतजार तो कर नहीं पाया। एक जगह बैठे बैठे पांव सोने लगे। पार्क का एक चक्कर लगाकर आता हूँ।

0: मेरी बेंच पर अब ये कौन जनाब आकर विराजमान हो गए? लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार गुन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अरे ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है।
1: साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे, आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती, आप भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो
0: माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं?
1: और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ।
0: साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं।
1: जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते।
0: अच्छा,
1: समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
0: ओ, किसी ने आपको धोखा दिया है क्या?
1: अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ।
0: आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे?
1: अरे क्या बताऊँ, दरअसल बात यह हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था।
0: अच्छा।
1: और चूंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था।
0: हाँ, वो कौन सा होटल?
1: अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर।
0: पेंटागोनियन होटल, लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा।
1: हाँ वही तो, स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर मैं यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, कहां ठहरूं।
0: वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते।
1: अब ये सब तो आप जानते हैं ना, मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया।
0: आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए।
1: हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था।
0: अच्छा अच्छा।
1: खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया, और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा।
0: साबुन खरीदने?
1: जी
0: साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
1: वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर, वो सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूं?
0: हाँ, गोट्स भाई, नॉर्मन गोट्स भाई।
1: ओके,
0: वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं।
1: ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूं अब साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूँ, होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है।
0: अजीब आदत है।
1: हाँ है तो अजीब ही, वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ, इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया।
0: ओ।

0: खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया। सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं।
1: लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है, आपका क्या ख्याल है?
0: अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहां रहने का सारा मजा किरकिरा कर दिया।
1: वो कैसे?
0: अब वही वही बता रहा हूं। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए। बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूं। अब
1: अरे
0: होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहां वो होटल था।
1: तो फिर आपने क्या किया?
0: क्या करता, कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया।
1: ओह
0: और तब से मैं यूं ही भटक रहा हूं। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया, जिसका यहां ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं।
1: हाँ, वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब।
0: हाँ,
1: मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है?
0: समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन वो इसमें भी एक मुश्किल है।
1: वो कैसी मुश्किल?
0: अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी। तब तक मैं कहां रहूंगा, कहां जाऊंगा? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
1: देखिए, इस तरह परेशान होने से क्या होगा, शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ, साइमन साहब, एक रास्ता तो है।
0: क्या?
1: आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक, जब तक उनका जवाब आता है, आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा
0: मिस्टर
1: होटल।
0: गोटी, वही तो समस्या है। इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है।
1: ओह
0: दरअसल मैं 1 शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये 2 पेंस पड़े हुए हैं। ये देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता।
1: कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया।
0: मिस्टर गोटी,
1: हाँ,
0: आप क्या सोचने लगे?
1: जी वो
0: समझ गया, समझ गया, समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुनाया है। नहीं, इसमें आपका दोष नहीं। ये वाकया है ही इतना अजीब कि कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा।
1: नहीं, साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है, उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ,
0: अच्छा।
1: हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था।
0: हो,
1: और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
0: अच्छा।
1: हाँ, हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे, बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए।
0: चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी, के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं।
1: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, अब पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है।
0: नहीं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था,
1: हाँ,
0: लेकिन यहां तो मैं अपने ही देश में हूं। घोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ।
1: साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल

0: ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नहीं नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामा खा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर कोटी।
1: हाँ हाँ, कहिए कहिए।
0: हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो
1: हाँ हाँ, बताइए बताइए, संकोच मत कीजिए, बताइए ना।
0: अब क्या आप मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सिर्फ एक दो दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता। बहुत ज्यादा नहीं, बस बस इतने के दो दिन अच्छी तरह बिता सकूं, बस।
1: सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा।
0: मिस्टर गोटी, हाँ, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं।
1: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब, मुझे पूरा विश्वास है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
0: हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, हाँ, शुक्रिया। इस भल मनसाहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे?
1: हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब
0: जी,
1: आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है,
0: कहानी,
1: लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। वो खासी कमजोर कड़ी है।
0: मैं कुछ समझा नहीं।
1: साइमन साहब, आप वो साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था। मैं वो साबुन देख सकता हूँ?
0: वो साबुन की टिकटिकिया हाँ, मेरी जेब में होनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ। यहाँ इस जेब में नहीं है। इसमें भी नहीं है।
1: कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ हाँ,
0: वही वही वही देख रहा हूँ। नहीं, यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई है।
1: खो गई। एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना,
0: जी,
1: ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब।
0: लेकिन आप मेरी बात
1: आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कहानी तो पिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐंठना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा, वरना अरे कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। बेचारा, कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी। एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेता, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखा धड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है।
2: अरे ये मेरे पांव से क्या चीज टकराई? क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज?
1: साबुन की खुशबू भी आ रही।
2: अरे ये तो साबुन की टिकिया है।
1: अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी।
2: इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था।
1: ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत जदा की मदद करता हूँ। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, अभी जाता हूँ।
0: साइमन साहब
2: रुकिए।
0: मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे जाने दीजिए।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है, मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
0: ये आप क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है। ये देखिए साबुन की टिकिया आपकी कोट से गिर गई होगी। देखिए, मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली।
0: हाँ, वो

0: पता नहीं कब कब जेब से गिर गई, वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
1: खैर खैर, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए।
0: जी
1: मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको, ये इससे काम चल जाएगा आपका।
0: जैसा आप ठीक समझें।
1: नहीं नहीं नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको 2 गिन्नियां दे देता हूँ, उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भारी मुसीबत से बचा लिया। अब मैं जान, अरे हाँ, आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। अच्छा, ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड।
0: थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब इजाजत दीजिए।
1: अच्छा, अरे अरे साइमन साहब, ये साबुन तो लेते जाइए।
0: लाइए, थैंक यू वेरी मच।
1: और देखिए, अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है। बाय बाय बाय। बेचारा मेरे इस व्यवहार से कितना खुश हो गया, चेहरे पर निराशा की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। शुरू में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी बरत रहा था, ये अच्छी बात नहीं थी। मैंने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए। अरे वहां पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे फौरन वहीं पहुंचना चाहिए। चलता हूं मैं।

0: फिलिप, फिलिप, फिलिप माफ करना, मैं जरा बाजार की तरफ निकल गया था। अब आए, ये तो फिलिप नहीं कोई और ही साहब है। ओह, ये तो वही बुजुर्गवार हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे, लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्गवार, लगता है आपका कुछ खो गया है।
1: हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है।
0: क्या, साबुन की टिकिया?
1: हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था,
0: हाँ,
1: उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी, वो कहीं गिर गई।
0: लेकिन वो
1: मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है, बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता न करो, यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी।
0: इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं, इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी, उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं दो दो गिनियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों विविध भारती की टीम फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य के घर गई, रिकॉर्डिंग की उजाले उनकी यादों के। तो चलिए सुनते हैं आज वही कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं फिल्मकार विमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम एक ऐसी शख्सियत के साथ हैं जिनके लिए सिनेमा सिर्फ एक पेशा या कला नहीं बल्कि परिवार की विरासत भी है। यानी आज हम बातचीत करने जा रहे हैं महान फिल्मकार विमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य से। वो विमल रॉय जिन्होंने भारतीय फिल्मों को अलग अर्थों में गढ़ा। तो रिंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्ते, मैं बहुत खुश हूँ
1: जी।
2: मेरे से जो भी होगा पिताजी के बारे में मैं कहूंगा
1: जी। बिल्कुल। तो रिंकी जी हम आपकी आंखों से देखने की आज कोशिश करेंगे महान फिल्मकार विमल रॉय साहब को। हम विमल रॉय को एक महान फिल्मकार के रूप में जानते हैं लेकिन आप उन्हें एक पिता के तौर पर जानती हैं। तो सबसे पहले हम सभी का यही सवाल होगा कि कैसे थे पिता के रूप में विमल रॉय साहब।
2: मैं तो बहुत बहुत ब्लेस्ड हूँ क्योंकि पिताजी का जैसा पिताजी मिलना ये छोटी बात नहीं है। और हम लोगों को कभी पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा महान का वो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। एकदम घर में जैसे साधारण हम लोग मिडिल क्लास फैमिली में सब बड़े हुए हैं उनके साथ, उससे हमको पता ही नहीं चलता था कि पिताजी बाहर उनका एक रूप है, बाहर उनका कोई स्टेटस है। और चाइल्डहुड मेरा, हमारा चाइल्डहुड बहुत ही एकदम सुखदायक था
1: जी।
2: बहुत ही बहुत खुश, हम लोग सब बहुत खुश थे। फैमिली मैन थे वो, फर्स्ट फैमिली मैन थे वो
1: जी।
2: घर में आके उनका पूरा यही बदल जाता था,
1: एक रूप ही बदल जाता था।
2: हाँ, रूप ही बदल जाता था।
1: मतलब आपके पिता घर पर फिल्मकार नहीं होते थे, एक पिता ही होते थे
2: जी। सही बात है
1: जी। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि आपके पिता बाकी लोगों से कुछ अलग है, बाहर उनका बहुत बड़ा रुतबा है या वो इतने महान फिल्मकार है?
2: ये हमको पता ही नहीं चला कि बाहर उनका क्या रूप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि पिताजी को जो उनका बिहेवियर था घर में तो वो एकदम साधारण जैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली में होता है। पिता पुत्री का जो रिलेशनशिप होता है एकदम सहज सरल। हम लोग जो बड़े हुए हैं हम बहुत ही, इस वेले मैं तो एक ही अंग्रेजी शब्द बोलती हूँ, ब्लेस्ड
1: जी,
2: ट्रूली ब्लेस्ड
1: जी जी। तो आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कितने भाई बहन आप लोग थे और आपकी माता जी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे, वो किस तरह से उनकी फिल्मों से जुड़ी रही, उनके व्यक्तित्व से जुड़ी रही
2: जी। लेकिन मेरी माँ जो थी वो एकदम अलग थी और उनका जो खुद आइडेंटिटी एक था
1: जी,
2: शी वॉज ए फोटोग्राफर। और उनके बारे में सब लोग आजकल जानते हैं, उनका जो फोटोग्राफी है वो बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े व्यक्ति के फोटोग्राफ लिया है, जैसे टैगोर का लिया है और नेहरू का लिया है, इंदिरा गांधी का लिया है। मैंने, मेरी माँ का जो पोर्ट्रेट्स है उसमें इन सब लोगों को नाम जुड़ता है
1: जी।
2: तो पिता, और वो बहुत पिताजी के साथ बहुत ही उनका एकदम बहुत सुंदर रिश्ता था
1: जी,
2: बहुत सुंदर रिश्ता था।
1: क्या नाम था आपकी माँ का?
2: मेरी माता का नाम था मनोबीना रॉय
1: जी।
2: जी
1: तो वो एक बहुत बड़ी फोटोग्राफर थी और उनका एक व्यक्तित्व था। आपके और भाई बहन भी हैं जो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे।
2: मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद में दो सिस्टर्स हैं और एक भाई है जॉय, जो अभी देखभाल करता है अपना, मेरा पिताजी का जो लेगेसी है उसके साथ हम लोग सभी मिलकर काम करते हैं एक साथ
1: जी। जी तो रिंकी जी आपको पहली बार उनकी फिल्मों से जुड़ना आपका कैसे हुआ, किस तरह से आप उनकी फिल्मों से जुड़ी? क्या बचपन में आप अपने

0: के साथ उनकी फिल्में देखने जाया करती थी, या उनकी जो फिल्म बनाने की प्रक्रिया थी उनसे वाकिफ थी, या उनके साथ जाया करती थी? ऐसा कुछ हुआ
1: नहीं,
0: कभी?
1: पिताजी हमेशा पिताजी का एक कोशिश ये रहता था कि वो फिल्मी दुनिया से हम लोग को अलग रखें,
0: अच्छा।
1: और हम कभी हमको अगर बुलाते थे शूटिंग देखने के लिए तो कोई गाना वाना शूट होता तो हमको बुलाते थे, जो बच्चों को जो अच्छा लगता है उसके लिए बुलाते थे, नहीं तो हम कभी स्टूडियो में जाते ही नहीं थे। उनका अलग ही था कि वो दोनों दोनों जो दुनिया है ना, फिल्म का दुनिया और घर का दुनिया अलग था हमारे घर
0: जी
1: में।
0: जी
1: और वो बहुत एडुकेशनिस्ट थे पिताजी। मैं तो बॉम्बे चली आई, मेरे तब 9-10 साल होगा, तो लेकिन उन्होंने ऐसे कोशिश किया कि मैं बंगला सीखूं, क्योंकि मेरा मातृभाषा बंगाली है,
0: जी
1: तो उन्होंने मेरे लिए सब बंगाली किताब मंगाते थे घर कलकत्ता से, और हमको देखते थे कि हम करते हैं कि नहीं। उनका उत्साह था कि हम बंगला सीखें, बंगला बंगाली कल्चर को भी अपनाएं, इस सब उनका बहुत बहुत उनका देन ये है मेरे जिंदगी में, कि पिताजी के लिए मैंने ये सीखा है, नहीं तो मैं शायद नहीं करती थी।
0: पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा
1: बहुत
0: रहा। तो
1: प्रभाव। हाँ
0: एक बेटी होने के नाते रिंकी भट्टाचार्य पर क्या प्रभाव था, कितना प्रेशर था, कितना दबाव था, तो आप क्या कहेंगी?
1: नहीं, दबाव तो मैं नहीं कहूंगी, पिताजी का जो पूरा कल्चर था उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, कि पिताजी को खाली घर के लिए नहीं, पिताजी को इंडियन कल्चर से बहुत प्राउड थे वो। इंडियन कल्चर,
0: जी
1: कोई
0: जी
1: भी कल्चरल, कोई भी कल्चरल ये होता था, वो नेहरू को जानते थे पर्सनली, इंदिरा गांधी को जानते थे पर्सनली,
0: जी
1: तो ऐसे जो जिंदगी जिसके ये होता है तो उनके लिए तो अलग ही होता है ना
0: बहुत एथिक्स
1: एटीट्यूड। हाँ,
0: थे
1: उनका एटीट्यूड ही अलग था इस
0: उनकी।
1: सब के बारे में, और हम लोग ने वो ही सीखा है पिताजी। वो बहुत जल्दी चले गए, पिताजी की उम्र बहुत कम था जब
0: जी
1: चले गए,
0: जी
1: तो इसीलिए उनका सबसे बड़ा फिल्म एक जो बनने वाला था वो नहीं बनी, और हमको इसका बहुत दुख है। और जो जो, जो लिखा था गुलजार लिख रहे थे उसको, तो उसका नाम था अमृत कुंभ।
0: अच्छा
1: अमृत कुंभ के ऊपर एक रियल लाइफ स्टोरी था,
0: जी
1: उसको उन्होंने लिया कि उसको वो था, लेकिन उसका शूटिंग करते करते पिताजी का ये हो गया, और उस कैंसर में भुगते थे, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे।
0: जी
1: हाँ, उनका हाथ में हमेशा सिगरेट होता था, और उनका ये जो सामने का उंगलियां है ना, उसमें से सिगरेट निकोटिन का दाग हो गया था इतना। हाँ, तो उससे उनको दुख भरी बात ये है कि
0: जी
1: उनको वो कोई हम नहीं छोड़ा सके उसको।
0: जी जी

0: बिमल रॉय एक महान फिल्मकार के रूप में उन्होंने इतनी कालजयी फिल्में हमें दी, और गुरु के रूप में उन्होंने एक नई श्रृंखला बनाई, उनके जैसी फिल्मों का आगे निर्माण किया लोगों ने। तो एक फिल्मकार के रूप में या एक गुरु के रूप में आप क्या मानती हैं, वो किस तरह से रही होंगी?
1: पिताजी ने जो उनके उनके साथ जो जो काम किया, जैसे गुलजार है, ऋषिकेश मुखर्जी है, आशीष सेन है, इनको सबको उनका प्रभाव से बहुत उत्साहित किया था फिल्म बनाने के लिए, और उनको उत्साह देते थे और उनको चांस भी मिलता था कि हमारा प्रोडक्शन बिमल रॉय प्रोडक्शन में उनका फिल्म भी बनती थी। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि असली गुरु का हिसाब, जो गुरु गुरु दक्षिणा इनको देना चाहिए
0: जी
1: सबको।
0: जी उनकी कालजयी फिल्में हैं जैसे 2 बीघा जमीन है, देवदास है, परिणीता है, मधुमती है, सुजाता है, परख है और बंदिनी। इन मतलब एक एक फिल्म पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कितने एपिसोड निकल सकते हैं, कितनी लंबी विस्तृत चर्चा हो सकती है।
1: जी,
0: तो रिंकी भट्टाचार्य उस उम्र में उन फिल्मों को देखकर क्या सोचती थी?
1: पिताजी का क्या था ना, पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है।
0: जी
1: सब सबका कहानी लिटरेचर, बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता,
0: जी
1: वो एक लिटरेरी स्टोरी थी। हाँ, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो इसलिए ना पिता खाली 2 बीघा जमीन को लिखा था सलील चौधरी ने, तो वो फिल्म के लिए लिखा था, पिताजी के लिए लिखे थे। तो उसको जो फिल्म बनाए पिताजी, उसका कोई लिटरेरी वर्शन नहीं था।
0: नहीं था जी।
1: हाँ, उनको लिखा था पिताजी के लिए सलील चौधरी ने, और उनको जो फिल्म है आज तो 2 बीघा जमीन को सबसे बड़ा मान्यता मिलती है,
0: बिल्कुल
1: यहाँ वहाँ फॉरेन कंट्रीज में सब में दिखाया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही
1: जी
0: बात है। तो जब बात चली है 2 बीघा जमीन की, तो कैसे इस महान फिल्म की रचना हुई होगी, किस तरह की घटनाक्रम में फिल्म बनी होगी उस जमाने में?
1: ये मुझे कभी कभी लगता है कि 2 बीघा जमीन तो से उनका जिंदगी इसका बहुत असर है,
0: जी
1: क्योंकि पिताजी भी जब छोटे थे उनको घर से उनका जो जमीन था ईस्ट बंगाल, हम लोग ईस्ट बंगाल के हैं ढाका के,
0: जी
1: तो वहां से उनको निकाला गया था। तो वो भूल, वो उनका जो वो दर्द था, वो ट्रेजिडी था, हाँ, तो वो भूल नहीं सके थे। तो मुझे लगता है इससे 2 बीघा जमीन में और बहुत बहुत इंटेंसिटी हो गया है। इसके लिए ना पिताजी के लिए वो जो वो दुर्घटना थी कि उनको घर से निकाला गया था,
0: जी
1: वो
0: जी
1: भूल नहीं पाए कभी भी। हमेशा चाहते थे कि जाए, हम जब ईस्ट बंगाल चलेंगे वो सोचते थे कि हम जाएंगे वहां पे। तो उसका वो ट्रेजिडी जो था, वो जिंदगी भर उन्होंने उसका ये किया
0: मन
1: है,
0: में रहा
1: वहां मन में रहा।
0: और उसी पीड़ा का परिणाम 2 बीघा जमीन के रूप
1: जी
0: में उतरा।
1: जी जी
0: जी, तो जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो बलराज साहनी और बिमल राय की जोड़ी ने जिस तरह से यथार्थ को पर्दे पर उतारा वो अद्भुत था। तो उस वक्त उस फिल्म की सफलता को घर में आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया होगा?
1: नहीं, हमारे घर में ऐसे सेलिब्रेशंस कोई नहीं होते थे
0: जी
1: फिल्म विल्म को लेके, लेकिन पिताजी का ये जो 2 बीघा जमीन है ना,
0: हाँ
1: ये मैं कहूंगी कि पिताजी का श्रेष्ठ है, लोग सोचते हैं, लेकिन मैं तो बोलूंगी सबसे फिल्म, सब फिल्म सुजाता, बंदिनी, सबको लेके जब लोग देखते हैं ना, तभी बोलते हैं कि कैसे कहाँ से आया स्टोरी। हाँ, उनको लिटरेचर पे बहुत ये था, बहुत वो ये थे, प्रभावित थे लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर के। तो
0: जी जी जी तो फिल्म 2 बीघा जमीन के जो शंभू की पीड़ा थी वो आज भी कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में व्याप्त है।
1: जरूर, मैं तो बोलूंगा ये बहुत सच बात है। हमने जो फिल्म दिखाई थी वेनिस फेस्टिवल में लास्ट ईयर, तो वहां सब लोग खड़े होते हैं, जैसे फिल्म खत्म हुई सब लोग रो रहे थे,
0: जी
1: इतना उसका प्रभाव था।
0: जी
1: हाँ, एक इंडियन फिल्म, कोई स्टार नहीं उसमें, हाँ, फिर भी वेनिस फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल में उसका क्या भूमिका थी, तो मैं आपको बता ही नहीं सकते। आप वो देखने वाली, एक्सपीरियंस करने वाली चीज थे।
0: बिल्कुल
1: तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं गई उनके साथ, वहाँ फेस्टिवल मैंने एक अटेंड किया, और हम लोग जब वापस आए तो मुझे बहुत बहुत बहुत मुझे प्राउड फील रहा कि इतना बड़ा काम हम लोगों ने किया है, हासिल किया है, बहुत बहुत ही बढ़िया बात है ये।
0: जी। तो रिंकी जी, जब बात 2 बीघा जमीन की चल रही है तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत हम सुन लें। आप बताएंगे कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: जो लोरी है जिसमें मीना कुमारी ने एक छोटा सा भूमिका किया है,
0: हाँ।

0: बहुत सुंदर लोरी है ये रिंकी जी, इस लोरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप?
1: जरूर मैं बताना चाहूंगी कि मीना कुमारी जो मेरे पिताजी के बहुत करीब थे
0: जी
1: और पिताजी उनको बहुत स्नेह करते थे,
0: जी
1: तो उन्होंने बोला कि दादा आपने फिल्म तो बनाई लेकिन मुझे आपने रोल नहीं दिया कुछ। तो पिताजी ने बोला कि उसमें तो तुम्हारे लिए लायक कोई रोल नहीं था,
0: हाँ
1: लेकिन ठीक है हम एक गाना डालेंगे तो उसमें तुमको मैं ले लेती हूँ।
0: जी
1: तो इसीलिए मीना कुमारी ऑन स्क्रीन मीना कुमारी सिंगिंग द लोरी,
0: हाँ। और ये लोरी
1: और
0: बहुत, हाँ आप बता
1: ये
0: रही थी
1: लोरी बहुत हम लोग सब गए थे रिकॉर्डिंग के लिए,
0: जी।
1: कहाँ मुझे मुझे पता नहीं कौन से स्टूडियो, शायद दादर में कोई स्टूडियो था, वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स हुए और ये लोरी का रिकॉर्डिंग हुआ 4 बजे सुबह सुबह
0: सुबह
1: चार
0: चार
1: बजे सुबह
0: बजे
1: 4 बजे
0: तो
1: रिकॉर्डिंग हुई।
0: लता मंगेशकर की गायी हुई लोरी है ये, तो
1: हाँ
0: सुबह 4 बजे इसकी रिकॉर्डिंग
1: सुबह
0: हुई।
1: 4 बजे रिकॉर्डिंग हुई
0: जी जी
1: और तब तक लता जी वहीं पे बैठी थी
0: अच्छा
1: और नेचुरली वो
0: हाँ,
1: उनका ही गाना है ना।
0: तो बहुत टेक रिटेक हुई होंगे मतलब।
1: नहीं, बहुत टेक नहीं,
0: हाँ
1: वो तो एक स्पेशलिस्ट थी।
0: इस तरह के बहुत सारे गीत पर हम बात करेंगे। फिल्म देवदास पर हम आना चाहेंगे। एक ऐसी फिल्म है देवदास जो अमर हो गया ये किरदार।
1: और एक चीज, आप फर्स्ट टाइम साहिर लिधियानवी ने गाना लिखा था उसमें। हाँ
0: हाँ जी जी
1: और एस डी
0: एस
1: बर्मन
0: जी
1: थे। हाँ
0: बर्मन साहब का संगीत है और इतना यूनिक संगीत है और गाने के बोल जो है आज भी मतलब
1: मुझे तो एक सीक्वेंस बहुत अच्छा लगता है, मितवा करके गाना है, जो
0: जी।
1: गीत तो पसंद है ही और ऑन स्क्रीन मीना कुमारी बहुत सुंदर लग रही है
0: जी
1: उसमें,
0: जी
1: उनका जो ये है ना वो सीक्वेंस ही बहुत सुंदर है।
0: तो फिल्म देवदास की जैसे हमने बात की कि ये एक ऐसा कालजयी फिल्म, और एक ये जो पात्र है ये भी अमर हो गया। और क्या उस वक्त जब ये फिल्म बनाई गई थी तो क्या ये सोचकर बनाई गई थी कि ये प्रेम और विरह की कहानी है? आप क्या सोचती हैं?
1: नहीं, देवदास का क्या है,

0: देवदास जब बने थे पिताजी उसके कैमरामैन थे। हाँ,
1: अच्छा,
0: बड़ुआ के देवदास का,
1: जब के एल सहगल साहब
0: जिसमें
1: जिसमें,
0: केएल सहगल थे पिताजी, उसका मेन ये थे, कैमरामैन थे। तो
1: अच्छा
0: उनको तब से उनको लगता है, और पिताजी का सबसे मुझे अजीब लगता है कि पिताजी तो घर में, हमारे घर में दारू शारू का कुछ ही नहीं था, लेकिन पिताजी ने फिल्म बनाई एक पियक करके ऊपर। लेकिन यो ये आज आज भी देवदास के लिए लोग बोलते हैं कि कितना अच्छा, और गाने भी बहुत सुंदर है,
1: बहुत शानदार
0: बहुत सुंदर गाने
1: जी।
0: हैं उसके।
1: हालांकि देवदास के आज तो कई फिल्मी संस्करण निकल गए, कई फिल्में कितनी बार बन चुकी है, लेकिन बिमल रॉय की जो देवदास है वो आज भी बिल्कुल अलग लगती है।
0: जी, मैं आपसे बहुत सहमत हूँ इसके बारे में।
1: बिल्कुल। तो उस फिल्म के बारे में कुछ बताइए कि क्या बिमल रॉय ऐसा मानते थे कि उस वक्त सिनेमा समाज को बदल सकता है? आप उस वक्त कितनी उम्र की थी और आपने क्या समझा होगा, क्या जाना होगा उस वक्त?
0: मेरा उम्र तो कुछ ज्यादा नहीं था, तब 15 साल की थी। तो जब देवदास बनी, देवदास का जो ये खास बात मुझे बोलना है कि देवदास के पारो का अभिनय जो है सुचित्रा सेन,
1: जी
0: उसको पिताजी ने पहले रिजेक्ट कर दिया था कि दूसरा।
1: अच्छा
0: हाँ, वो आई थी, वो हमारे घर की बहू समझा जाती थी, उनका शादी हुआ था हमारे घर में।
1: जी
0: तो जब एक दफे वो उनको फिल्म में उतरना था, तो पिताजी के पास सबसे पहले आए, तो पिताजी ने बोला तुम घर की बहू हो, तुम कैसे फिल्म में काम करोगे, तो उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसी को पिताजी ने बुलाया देवदास के लिए, तो हम लोग
1: जी
0: बहुत हंसते थे कि पिताजी
1: हाँ
0: को फिर से दोबारा उनको बुलाना पड़ा, क्योंकि उससे बढ़िया तो कोई नहीं,
1: हाँ
0: पारो का ये जो किया
1: जो
0: था।
1: अभी नहीं था
0: हाँ,
1: वो कोई और कर ही नहीं
0: नहीं,
1: सकता था,
0: कोई
1: ऐसा
0: नहीं
1: बिमल रॉय साहब का
0: कोई कर
1: मानना
0: नहीं
1: था।
0: सकता था।
1: और वो अद्भुत सुंदर लगी है उसमें, और ये
0: हाँ
1: पात्र कितना जीवंत हो गया, पारो की भूमिका कितनी मतलब कालजयी एक भूमिका हो गई है, आज
0: जी
1: भी याद की जाती
0: जी
1: है
0: जी
1: जी। लोगों का रिएक्शन क्या रहा होगा उस वक्त देवदास फिल्म को देखने के
0: नहीं,
1: बाद?
0: लोग लोग तो एकदम पूरा हाउसफुल जाता था, पूरा हाउसफुल जाता था। लेकिन मेरा हिसाब से तो पिताजी का देवदास जो इतना बड़ा बना है, क्योंकि उससे पिताजी उसको समझते थे, वो सामाजिक जब ये है ना समस्या
1: जो
0: है।
1: व्यवस्थाएं थी उस
0: हाँ,
1: वक्त।
0: उनको समझते थे, इसीलिए उसका इतना प्रभाव आज भी है। आज भी कोई मैं तो आज भी देवदास देखने में मुझे डर लगता है कि इतना इसका इसका जो ये है ना माहौल जो है, वो बहुत बहुत एक इम्प्रेस करता है बहुत ज्यादा।
1: जी
0: और आई थिंक मुझे लगता है कि वैजयंतीमाला भी जस्ट उसके पहले मधुबती किया था उन्होंने, क्योंकि वो डांसर भी थे ना, इसलिए उसमें देवदास में डांस तो है, इसीलिए
1: बहुत सुंदर है।
0: बहुत। हाँ
1: तो इस फिल्म को जब निर्माण किया जा रहा था, इस फिल्म का जब निर्देशन कर रहे थे बिमल रॉय, तो उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, और आप परिवार वालों की दिनचर्या क्या उस वक्त थोड़ी बदल जाती थी?
0: नहीं, पिताजी जो काम करते, काम काम को अलग ही रखते थे वो घर से। हमारा घरेलू जो ये है ना
1: वो अलग था।
0: अलग था एकदम, और काम का ये बहुत ही अलग था, तो कभी नहीं मिक्स करते थे, कोई तकलीफ नहीं थी। पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे एज ए डायरेक्टर, और फिल्मी दुनिया में तो ऐसा इतना डिसिप्लिन मैं देखा नहीं किसी को आज
1: जी
0: तक,
1: जी
0: कि इतना डिसिप्लिन थे। उनको कहाँ पे कब जाना है, क्या करना है, सब उनको बहुत पता था। हाँ, तो इससे हमको हमारा भी बहुत प्रभाव हुआ, कि हमको भी पिताजी का सब शायद समय बिताने को मिला। हाँ, तो इसीलिए ना कि हमको कोई ये नहीं है, कोई कंप्लेन ही नहीं है कि देवदास बनाते थे या कोई बंदिनी बनाते थे। बंदिनी तो उनकी लास्ट फिल्म है। हाँ, बंदिनी के बाद तो उनका बंद ही हो गया
1: जी
0: काम।
1: जी
0: हाँ, तो ये बहुत बहुत अहम बात है कि पिताजी कभी दोनों को मिक्स नहीं करते थे।
1: जी जी तो आप लोग क्या फिल्म हॉल में जाकर इस फिल्म को देखा था?
0: नहीं, जाते थे, देखते थे, हम लोग हॉल में भी जाते थे, लेकिन जो एडल्ट फिल्म है, जैसे देवदास तो एक एडल्ट फिल्म है, तो
1: जी
0: देवदास के लिए हमारा हम लोग को जाना ठीक नहीं लगता था। तो पिताजी ने हमको देवदास हमने हॉल में कभी नहीं देखा।
1: अच्छा
0: हाँ, उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन मैं बोलती हूँ कि उसका स्टोरी का तो
1: जी
0: एडल्ट,
1: जी
0: उसका एडल्ट इंटरप्रिटेशन है, तो इसीलिए उनके लिए जो रिलीज हुई थी, और मुझे तो याद नहीं कि मैं हॉल में जाके कभी भी देवदास देखा। मैंने फर्स्ट देखा दूरदर्शन में।
1: अच्छा, दूरदर्शन में आपने ये फिल्म देखी
0: हाँ
1: होगी।
0: जी,
1: तो इस फिल्म के गानों के बारे में तो हम क्या ही आपसे कहें, एसडी बर्मन साहब का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल हैं। कौन सा गीत आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी जो आपकी खास पसंद होगा?
0: मेरा खास पसंद है आगे तेरी मर्जी।
1: आगे तेरी मर्जी। जी
0: हाँ
1: बिल्कुल।

0: तो आपके घर में बराबर पढ़ाई का माहौल रहता था,
1: एकदम
0: बच्चे घर में पढ़ाई करना
1: पूरा। पिताजी का
0: मानता
1: ये
0: रहते
1: भी
0: थे?
1: था कि हमको ऑक्सफोर्ड में ले जाए पढ़ाए,
0: अच्छा
1: हमको
0: जी
1: लेके भी गए थे लंदन
0: जी
1: दिखाने के लिए, लेकिन मुझे ठीक नहीं लगा कि हम परिवार से इतना दूर रहेंगे, इसलिए मैंने हाँ नहीं किया। नहीं तो आज
0: जी
1: मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न होती थी
0: जी
1: अगर मैंने उनका इस पर
0: बात को माना
1: बात
0: होता
1: को
0: तो।
1: माना था तो।
0: घर से दूर जाना आपको पसंद नहीं था,
1: हाँ
0: तो घर में एक आपसी सब में एक तारतम्य था, सामंजस्य था,
1: हाँ हाँ
0: प्रेम की भावना, सब एक दूसरे से गूंथे हुए थे।
1: एकदम, हाँ एकदम एकदम।
0: बहुत बड़ी बात होती है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे, और
1: फिल्मी दुनिया में, स्पेशली
0: हाँ
1: फिल्मी
0: सबसे
1: दुनिया
0: बड़ी
1: में,
0: बात
1: हाँ
0: यह है
1: सबसे
0: कि
1: बड़ी
0: फिल्मी
1: बात है।
0: दुनिया में
1: हाँ
0: रहकर एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करना और
1: हाँ
0: मिलजुल कर रहना,
1: हाँ
0: विश्वास करना,
1: हाँ
0: सबसे बड़ी बात यह रही थी।
1: और हमारे सामने ही हम दूसरा फिल्मी दुनिया देखते थे, फिल्मी घर घराना देखते थे। मुझे लगता था कि हमारा घर इतना अलग क्यों है, क्योंकि हमारे घर में कोई माहौल ऐसा नहीं था, कोई भी माहौल नहीं था कि हम लोग कुछ पढ़ा लिखा ये सब हमको उत्साह करना। पिताजी का बहुत अहम बात था, पिताजी बहुत मानते थे, ही वॉज
0: जी
1: एक्चुअली एजुकेशनिस्ट। आपने देखा है ना पिताजी हमारे बिमल रॉय में, बिमल रॉय फिल्म्स का जो जो लोगो है
0: हाँ
1: कौन सा है आपको मालूम है? कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे,
0: जी जी
1: बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो ये है
0: वो
1: टावर
0: उनका
1: है
0: हाँ
1: वो उनका फिल्म का ये है,
0: लोगो
1: तो
0: है।
1: ये भी कोई सोचने लायक बात है ना।
0: जी जी
1: हाँ
0: जब बिमल रॉय की बात हो और सुजाता फिल्म की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम बात करते हैं सुजाता फिल्म की। आपको अपने पिता बिमल रॉय की फिल्म जो है सुजाता के बारे में सबसे खास बात तो क्या लगती है?
1: जैसे मैंने बोला कि पिताजी तो लिटरेचर बेस्ड थे ना,
0: जी
1: हमेशा फिल्म बनाने के पहले वो सोचते थे कहाँ से लाए बंगाली लिटरेचर से। सुजाता का बारे में मैं ये बताऊंगी, एक फेस्टिवल में मैं गई थी
0: जी
1: फॉरेन फेस्टिवल, जहाँ पे सुजाता पिताजी का सब फिल्म से उन्होंने सुजाता को चूज किया, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे

0: यूरोप में कौन जात पात का कोई ये करेगा, लेकिन मैं एकदम बुद्धू बन गई सोच के। लोग बाहर आ रहे थे सब रोते रोते, सुजाता देख के उनको जो वो जो मदर डॉटर का जो है ना, मदर एंड डॉटर का जो
1: जी
0: ये है
1: जी
0: रिलेशनशिप है उसको लेके वहां यूरोप में तो एकदम, और सब जो आए थे सबको सब रो रहे थे देख के। तो मुझे ये भी ये खुलासा मिला कि देखो ये भी हमने सोचा नहीं था पहले।
1: इस विषय को उठाने का, सुजाता फिल्म को बनाने के पीछे क्या विचार रही होंगे आपके पिता के?
0: ये तो मैं नहीं कह सकती, मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है। हाँ लेकिन चूज किया उन्होंने, जरूर अच्छा लगा होगा इसीलिए चूज किया है।
1: उस समय बहुत बड़ी समस्या थी, आज भी ये समस्या है, लेकिन उस वक्त इसको उठाना, इस विषय को, बहुत ही बोल्ड विषय था और बहुत ही निर्भीक होकर उन्होंने इस बात को आवाज दी कि किस तरह से माँ और बेटी के किरदार को जीवंत किया और इस फिल्म में उन्होंने नूतन को चुना।
0: हाँ
1: इसके पीछे क्या कुछ खास
0: नूतन
1: कारण रहे
0: पिताजी के
1: होंगे?
0: सबसे फेवरेट एक्ट्रेस थे।
1: जी
0: नूतन की जो खास फिल्म है सुजाता और बंदिनी। हाँ तो पिताजी ने जब बंदिनी पिताजी ने सोचा बनाने का तो वो नूतन को साइन करने को गए। तो नूतन ने बोला दादा मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छा लगा लेकिन शायद मैं आपके साथ नहीं कर सकूंगी। तो पिताजी ने बोला क्यों क्या बात है?
1: जी
0: तो बोले हम प्रेग्नेंट है तो मैं अभी कैसे, मैं प्रेग्नेंट है तो मैं फिल्म में काम नहीं करूंगी। तो पिताजी ने बोला कि तब मैं नहीं बना सकूंगी बंदिनी। तो उनका हस्बैंड जो थे उन्होंने उनको उत्साह दिया, बोला विमलदा आप जरा जल्दी जल्दी शूटिंग कर लीजिए तो फिर नूतन आपके साथ काम करेगी।
1: अरे
0: तो वही
1: वाह,
0: हुआ बात,
1: जी
0: शी
1: जी
0: वॉज प्रेग्नेंट मैं शी वॉज शूटिंग बंदिनी।
1: जी और उन्होंने क्या लाजवाब अभिनय किया है, अद्भुत अभिनय किया, और उसके बाद तो वो मतलब महान अभिनेत्रियों की एक लाइन में खड़ी हो गई। आप लोग गए इस फिल्म को देखने फिल्मी पर्दे पर?
0: हम लोग गए थे हॉल में देखने के लिए, मुझे याद है यहाँ पे जो
1: जी
0: ओपेरा हाउस है ना, ओपेरा हाउस में रिलीज हुई थी और सिल्वर जुबली किया था उस।
1: तो चलिए इस फिल्म का कोई गीत सुन लिया जाए,
0: हाँ
1: बताइए।
0: श्योर जरूर।
1: चलिए तो फिल्म सुजाता का एक गीत सुनते हैं।
0: हाँ

0: बहुत सुंदर गीत। हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रिंकी जी कि अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर कितने जागरूक थे, क्या उनकी फिल्मों में गीत और संगीत भी उतना ही मायने रखता था जितनी फिल्म की कहानी या फिल्म का किरदार?
1: ऑफ कोर्स जरूर, क्योंकि पिताजी ने जो पिक्चराइजेशन किया है गाने को, जैसे मुझे तो अभी तक कोई इतना ये नहीं लगता है कि कोई दूसरा डायरेक्टर इतना ये करता है, मायने रखता है। बहुत ही अच्छा है उन्होंने पिताजी का गाने गाने पिक्चराइजेशन एक स्पेशल ये था, उनका टैलेंट था।
0: उनकी पसंदीदा गायिका लता मंगेशकर और
1: हाँ
0: ये सभी रहे।
1: था, उनके पसंदीदा जो थे ना वो
0: संगीतकार
1: एक्चुअली
0: भी एस डी
1: संगीतकार
0: बर्मन और सलिल
1: संगीत
0: चौधरी साहब।
1: संगीतकार सलील चौधरी, एस जी
0: बहुत सारी
1: बर्मन।
0: फिल्में, ज्यादातर फिल्में सलिल चौधरी साहब ने उनकी जो
1: हाँ
0: है संगीत में ढाली हैं,
1: हाँ
0: और एस डी बर्मन साहब का तो खैर संगीत हम सुन ही रहे हैं।
1: हाँ
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिल्म बंदिनी का जिक्र हम आपसे सुनना चाहते हैं। जब फिल्म बंदिनी उन्होंने बनाई तो आप क्या कहना चाहेंगी, फिल्म कैसे बनी और इस फिल्म की कोई शुरुआत कैसे हुई होगी, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, मुझे नहीं है याद है, लेकिन मैंने जब सुना कि पिताजी इस पे फिल्म बनाना चाहते हैं, वो एक इससे था, एक लिटरेरी बंगाली लिटरेचर से था,
0: जी
1: तो मैंने जाके मैं उसको रीड किया पहले।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: इस
1: मुझे
0: कहानी को,
1: इसको
0: उस
1: कहानी
0: किताब
1: को,
0: को।
1: उसकी कहानी को, तो मुझे लगा कि हाँ इससे अच्छा बढ़िया बन जाता है। ये कल्याणी का स्टोरी है, वो जो है ना, जो लिटरेरी जो ये है वो लिखा है जरा संध करके, इनका
0: जी
1: नाम था जरा संध, पेन
0: बिल्कुल
1: नेम।
0: जी
1: हाँ, तो उन्होंने लिखा था, तो उनको जो ये स्टोरीज कलेक्शन था उसमें कल्याणी का स्टोरी पिताजी ने चूज किया
0: तो उस वक्त तो उनको ये फिल्म बनाने का विचार इसीलिए आया क्योंकि उस समय की ये समसामयिक एक कहानी थी, घटना थी
1: था।
0: बनी। तो
1: हाँ
0: आपके पिता जब कलाकारों के साथ काम करते थे तो उनके काम करने की प्रक्रिया क्या रहती होगी, कलाकारों के साथ क्या संबंध रहते होंगे, किस तरह का व्यवहार रहता होगा, किस तरह से समझाना होता होगा एक डायरेक्टर के तौर पर?
1: हाँ पिताजी कभी भी एक्टिंग नहीं दिखाते थे किसी को, कि
0: अच्छा, नहीं होता
1: जैसे
0: था।
1: राज कपूर है ना,
0: हाँ
1: राज कपूर हर भूमिका को एक्टिंग करके अपना स्टार को दिखाता है। पिताजी ने बहुत बहुत डिस्टेंस से उनको, ये था उनका एक डायलॉग राइटर था जो बहुत हिंदी एंड बंगाली जो जानता था, उनको पिताजी ने बता था कि तुम जाके बोलो एक्ट्रेस को, इस नूतन का है तो इतना इतना ये करे, हाँ ये ऐसा करना है ऐसा करना है, तो वो डिस्टेंस से करते थे, वो कभी एक्टिंग नहीं दिखाता
0: जी, तो बंदिनी फिल्म की जो कल्याणी किरदार था नूतन जी का, तो बिमल रॉय ने जिस गहराई से इसे पिरोया, ये बहुत लाजवाब था गुलजार
1: था। हाँ ऐसा हुआ कि गुलजार प्रोडक्शन में था, बिमल रॉय प्रोडक्शन में
0: का।
1: ऐसे असिस्टेंट था, तो एक गाने का कहीं जरूरत हो तो शैलेंद्र नहीं लिख पाए उसको, तो गुलजार ने उसको लिख दिया, ओपनिंग सॉन्ग ऑफ बंदिनी, मोरा गोरा अंगलेरा।
0: जी
1: अच्छा, तो फिर मैंने पिताजी ने बोला कि तुम गाना भी लिखते हो क्या, तो उन्होंने बोला ऐसे हाँ लिखता हूँ कभी कभी दादा, तो बोले अच्छा तुम एक काम करो, तुम अभी वो सब जहाँ वो काम करते थे मैकेनिक गैराज, गाड़ी का गैराज में, तो बोले तुम गाड़ी का गाड़ी वो सब छोड़ो, तुम आ जाओ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन में, तुम गाना लिखोगे। तो गुलजार का फर्स्ट गाना पिताजी हमारे प्रोडक्शन में था, हाँ वो था नॉट मोरा गोरा अंगले, वो गाना का रिकॉर्डिंग उन्होंने किया फिर।

0: दैट इज हिज फर्स्ट सॉन्ग फॉर विमलराव प्रोडक्शन।
1: जी
0: हाँ, पिताजी का बोलने पर वो फिर वो छोड़ भी दिए, फिर एकदम एकदम से ज्वाइन कर लिए।
1: चलिए, तो बंदिनी फिल्म का गीत हम सुन लेते हैं।

0: उन्होंने जब ये चूज किया स्टोरी कल्याणी की स्टोरी बांधने के लिए, तब मैं पढ़ने को गई तो मुझे मुझे भी लगा कि हाँ ये बहुत अहम बात है कि ऐसा कोई एक स्टोरी है जिसमें किसी ने जेल से आके लिखा है, उसका केस एक केस हिस्ट्री था, ये रियल केस हिस्ट्री। हाँ, तो इसीलिए
1: जी
0: बहुत इसका बहुत माने रखता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उस वक्त ये एक बहुत सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई थी, तो वही हम मधुमति के बारे में भी बस यही जानना चाह रहे थे कि पुनर्जन्म से संबंधित ये फिल्म थी।
0: मधुमति का अलग ही बात है, क्योंकि मधुमति का जो मधुमति लिखा गया था खाली पिताजी का प्रोडक्शन के लिए लिखा गया था, वो कोई लिटरेरी वे नहीं था।
1: जी बिल्कुल,
0: उसको क्लेम करते हैं ऋत्विक घटन ने लिखा था, पता नहीं, लेकिन वो लिखा था पिताजी के लिए।
1: लेकिन वो बहुत उस जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
0: वो तो है,
1: हाँ
0: बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, बिकॉज ऑफ ऑल द कास्टिंग,
1: जी
0: दिलीप कुमार, वैजयंती माला, प्राण, बहुत बढ़िया। ये पिताजी ऐसे बनाए थे क्योंकि हमारा प्रोडक्शन हाउस तभी फाइनेंशियली थोड़ा डाउन था, तो किसी ने बोलता है कि दादा आप इतना फिल्म बना रहे हैं लेकिन आप प्रोडक्शन का नहीं देख रहे, तो प्रोडक्शन ये हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि आप इतना खर्चा, पिताजी खर्चे का देख नहीं थे, देख भी नहीं थे कि क्या था। तो जब उन्होंने बोला तो पिताजी ने बोला से ठीक है मैं ऐसा फिल्म बनाऊंगा जिसमें सब कुछ है, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, गाने हैं, डांस है, सब कुछ है, विलेन, हीरो।

0: हीरोइन, हाँ,
1: वो सब
0: तो
1: था जो एक फिल्म में
0: हाँ
1: होना
0: वो
1: चाहिए
0: जो था वो सब फिल्म में होना चाहिए, तो मधुमते उसी हिसाब से बनाया गया था।
1: जी। तो वो जो गाने पूरे इतने सुपर डुपर हिट हुए, घर घर में वो गाने बजने लगे, क्या आपके घर में भी रेडियो था उस वक्त,
0: हाँ
1: कि
0: हाँ
1: घर में
0: बहुत,
1: आप
0: हाँ
1: गीत संगीत तो सुन सकते थे,
0: हाँ
1: ये
0: सर,
1: माहौल तो था घर
0: हाँ
1: में।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: चलिए हमारे श्रोता उन्हें गीत हम सुना देते हैं आपके।
0: हाँ

0: बहुत ही सुंदर गीत हमने सुने। और रिंकी जी, आप उनकी बड़ी पुत्री हैं, आपने पिता को बचपन से फिल्मकार के रूप में देखा है, फिल्में बनाते हुए देखा है, एक पुत्री होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, इस विरासत को आप किस ढंग से संभाल रही हैं आज तक?
1: मैं इस तरह से संभाल रही हूँ कि मेरे पिताजी का जो फिल्म है उसको रीइशू,
0: जी
1: उसको रिस्टोर करना, तो मैंने काफी एक यहाँ पे है रिस्टोर कर रहे हैं, तो हमने 4 फिल्में तो अभी रिस्टोर करने के लिए दे दिया है, वो भी अभी न्यू DVD बन के आ जाएगी अभी, तो हो गया है 4 फिल्म की
0: जी।
1: बात है
0: कौन-कौन सी फिल्में हैं वो?
1: मधुमती, देवदास,
0: जी
1: बंदिनी और 2 बीघे जमीन,
0: जी
1: ये 4 इधर है। एक जो रिस्टोरर है शिवेंद्र डूंगरपुर करके,
0: अच्छा
1: तो शिवेंद्र ने इसको ये किया है, रिस्टोर किया है 4 फिल्में। नेक्स्ट ईयर समटाइम ये सब फिर से दोबारा आ जाएगी DVD, नया DVD आ जाएगी।
0: अच्छा
1: सबकी
0: जी,
1: हाँ
0: जी बहुत बड़ी एक इस विरासत को आपने संभाला है और
1: हाँ।
0: इसे जीवंत बनाए रखा है आज तक। तो रिंकी जी, आपको अपने पिता की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी?
1: ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है
0: जी
1: मुझे तो अभी भी

0: मधुमति देख कभी भी मैं देखती हूँ ना मधुमति, तो मुझे लगता है कि देखते ही रहूं यू नो, इतना उसका असर है और एकदम मैं ऑडियंस ही बन जाती हूँ। हाँ ये तो मधुमति के साथ है। दुबे के जमीन देखने को थोड़ा कष्ट होता है क्योंकि ट्रेजिक है। हाँ लेकिन जैसे ये दोनों फिल्म तो मुझे बहुत पसंद है, मधुमति और दो बीघे जमीन दोनों। हाँ
1: तभी आपको लगा कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चलती और आगे चलकर एक बहुत बड़ी फिल्मकार बनती और बहुत सारी फिल्मों का निर्माण या निर्देशन करती जैसे मेरे पिता ने उस वक्त किया था?
0: नहीं नहीं ये कभी नहीं आया, बल्कि मैंने सोचा ही नहीं था कि हम फिल्म बनाएंगे, इसीलिए इसी डर से कि मेरे को कोई कंपेयर करेगा पिताजी से।
1: अच्छा।
0: इसीलिए मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं बनाना है फिल्म, और जो बनी है वो एक्सीडेंटली बन गई है।
1: जी तो उन फिल्मों के बारे में आप हमें बताइए जो जो आपने डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म बनाई है आपने।
0: मैंने दो ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, एक है डोमेस्टिक वायलेंस पे क्योंकि मैंने औरतों के साथ बहुत सारा काम किया एनजीओ के साथ
1: जी,
0: तो उसको बनाया है बिहाइंड क्लोज डोर्स करके, और बस ये एक फिल्म है मैं जिसके बारे में बोलना चाहूंगी कि बिहाइंड क्लोज डोर्स है, वो वेरी बिग डॉक्यूमेंट्री, वो फेस्टिवल्स में भी गई है और इसको लेके लोग देखते भी हैं, अभी भी देखते हैं, डीवीडी में है वो।
1: इस फिल्म में जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है उसके
0: हाँ,
1: बारे में आपने
0: हाँ,
1: काफी, और आपने बहुत सारी महिलाओं के साथ काम किया है।
0: हाँ,
1: काफी लंबे समय तक आप सोशल वर्कर के रूप में काम करती रही हैं।
0: हाँ,
1: बहुत सारी किताबों का लेखन भी किया है, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे आपकी किताबें कौन कौन सी थी, आपने किन किन विषयों पर ये किताबें लिखी?
0: मैंने ज्यादातर किताबें लिखी और वुमेन्स इश्यूज को लेके, और दो एक पिताजी पे लिखा है, दो एक मेरे पास दो किताबें हैं जो, एक तो है मधुमति खास, मधुमति का क्या क्या हुआ था कैसे हुआ था उसके ऊपर मैंने एक किताब लिखी है
1: जी,
0: वो पब्लिश हुआ है, और एक किताब है जिसके डोमेस्टिक वायलेंस के बोला ना मैं बिहाइंड क्लोज डोर, ये दोनों बहुत खास है।
1: इनका रिएक्शन आपको कैसा मिला जब ये किताबें दुनिया के समक्ष गई लोगों की, खासतौर से महिलाओं का?
0: बहुत अच्छा, इट इज वेरी बिग, ये लोग पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन भी हो जाए इसका
1: जी कई भाषाओं में।
0: हाँ कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हो जाए।
1: आपको कहीं ना कहीं ये दबाव रहता होगा कि पिता से कंपेयर करेंगे, तो क्या ऐसी मानसिक स्थिति में भी आप दबाव में रही?
0: नहीं नहीं मैं दबाव में नहीं थी, मैंने बोला ना इसीलिए मैंने कॉन्शियसली मैंने ऐसे किया कि मैं फिल्म नहीं बनाऊंगी क्योंकि लोग तो मुझे कंपेयर करेंगे ही ना पिताजी से, इसीलिए मुझे लगा कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए फिल्म में। तो एक डोमेस्टिक वायलेंस पे था वो मुझे करना ही था क्योंकि उसके लिए मेरे फंडिंग मिली गवर्नमेंट फंडिंग।
1: अच्छा।
0: हाँ फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, तो इसीलिए मुझे पैसा भी मिला था बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने बनाया, और नहीं तो मैं फिल्म के लिए मैं कुछ आग्रही नहीं थी। मैं कॉन्शियसली पिताजी का जो आइडियल्स है उनका जो ये है फिलोसफी है उसको फॉलो करने का मैं कोशिश करती हूँ।

0: अगर आपको अपनी पूरी रचनात्मक यात्रा, जिसमें पत्रकारिता है, किताबें हैं, सिनेमा है और बिमल रॉय की विरासत है, को एक वाक्य में देखना हो तो आप क्या कहेंगे कि आप वास्तव में किसकी आवाज दर्ज कर रही हैं? फिल्म की, स्त्रियों की, परिवार की, या उन लोगों की जिनकी आवाज को दबा दिया जाता है?
1: आपने जो कहा ये बहुत सही बात है, जो जिसका आवाज दबा दिया गया है ना, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट देम, जो वॉइसलेस है उनके बारे में मैं, मेरा ये हमेशा कोशिश रहा कि मैं उसी को वही करूँ
0: जी। और उसमें आप लगी भी हैं आज भी, उम्र के इस पड़ाव पर आकर भी आप लगातार अपनी इस यात्रा को बनाए हुए हैं।
1: जी
0: रिंकी भट्टाचार्य जी, आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिल्मकार बिमल रॉय के सुपुत्री रिंकी भट्टाचार्य से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों के अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: उजाले।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: छाती अते सादियां तकलीफां तो परेशान हो, बड़ियाल हस्पताल बठिंडा लेके आया है छाती दे रोगां दा सफल इलाज। मिलो डॉक्टर आंचल जैन, MBBS, MD, पल्मोनरी मेडिसिन, एक्स एम्स दिल्ली सीनियर रजिस्ट्रार नू। दमा, COPD, खंग, सा चढ़ना अते एलर्जी दा सही अते आधुनिक इलाज। बड़ियाल हस्पताल नेड़े DAV कॉलेज, BB वाला रोड, बठिंडा। कॉन्टैक्ट 7527011711। बड़ियाल हस्पताल, तुहाडी सेहत दा सच्चा साथी।
1: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका, जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा, 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम, 2 थार, 6 बाइक, 12 स्कूटी, 1000 प्लस विनर्स, 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस, यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन। 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा, आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
2: लो जी, प्रोग्राम चल रहा जी, मिट्टी वाजा मारदी आकाशवाणी FM बठिंडा तो। 0164-22-40-331 यह नंबर डायल किया जी, पर लगता है इन्होंने साडे नाल गल करन तो पहले इन्हों का फोन किसी कारण करके डिसकनैक्ट हो गया, पर इन्होंने सानू अपनी फरमाइश जरूर नोट कराती सी जी। फरमाइश की जी इन्होंने कुलदीप माणिक की आवाज़ के लारल पागी थी। तो गुजारिश सुनने वाले सारे दोस्तों नू स्टूडियो नंबर नोट कर लें जी, वह 0164-22-40-331 0164-22-40-331। चलते प्रोग्राम दे विच तुसीं इस नंबर नूं मिलाओ, साडे नाल जुड़ो और सुनो अपनी फरमाइश दा कोई भी गीत। तो समां 5:09-52 तकरीबन हजे अपने कोल 20 मिनट का समा पिया जी इस प्रोग्राम दे विच जुड़न दे लई। जब तक कोई कॉलर साडा नंबर मिला के साडे नाल जुड़ेगा तद तक सुनांगे जी आपां कुलदीप माणिक दी आवाज़ दे विच इस गीत नूं।

0: 10 साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी धमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 करोड़ रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 बाइक 12 स्कूटी 1000 प्लस विनर्स 2 लीटर एमस्टार टॉप प्लस 1 किलो चेस यानी 1 लकी ड्रॉ कूपन 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होगा आज ही खरीदो TNC अप्लाई
1: प्रोग्राम संबंधी सूचना 14 सितंबर दिन सोमवार प्रोग्राम कर परिवार के तहत सिलसिला सेहत संभाल विषय रहेगा छाती अते साह दियां बीमारियां इस महत्वपूर्ण विषय ते जानकारी देन लई साडे स्टूडियो विच हाजिर होंगे डॉक्टर आंचल जैन जिन्हां नाल गलबात करनगे आकांक्षा अरोड़ा जिन्हां श्रोतियां ने इस विषय संबंधी कोई सवाल पूछना होवे जां जानकारी लेनी होवे ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0164-2240-331 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਬੜਿਆਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸੋ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ 14 ਸਤੰਬਰ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ

0: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਹਾਦਰੀ, ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟਲ ਸਮਰਪਣ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਯੁੱਧਕਾਲੀਨ ਬਹਾਦਰੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਦੇ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਤਾ ਸਨ। ਪਰਮਵੀਰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਅਤੇ ਉੱਚਤਮ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
1: परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह 1962 भारत चीन युद्ध के सबसे बड़े नायक थे। वह कहते थे कि एक सिख मर सकता है लेकिन पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने ये साबित किया 23 अक्टूबर 1962 को बुमला दर्रे पर 600 चीनी सैनिकों ने हमला किया, लेकिन सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने 100 जवानों के साथ उनका डटकर मुकाबला किया। घायल होने के बावजूद लड़ते रहे, आखिरी सांस तक गोलीबारी जारी रखी। अंत में चीनी सेना ने उन्हें पकड़ लिया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वो वीर गति को प्राप्त हुए उनकी वीरता को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: इतिहास की एक होर भावपूर्ण घटना भी है। उन्हां दी मौत तो बाद उन्हां दीआं अस्थियां चीनी पक्ष वालों 17 मई 1963 नूं पूरे सैनिक सन्मान नाल उन्हां दी बटालियन नूं सौंपियां गईआं। बाद विच अस्थियां दा कलश सिख रेजिमेंटल सेंटर मेरठ लिआंदा गया अते आखिरकार उन्हां दी पत्नी नूं सौंपिआ गया। सोचो, एक पासे जंग, दुश्मन, कैद, मौत अते दूजे पासे उसे सैनिक दीआं अस्थियां सैनिक सन्मान नाल वापस भेजीआं जाणा। इतिहास दे ए पल सानू दसदे हन कि सैनिक दी कुर्बानी सिर्फ उस दे परिवार दी नहीं हुंदी, ओह पूरे देश दी विरासत बन जांदी है।

परम वीर चक्र तीन शब्द, पर इन्हां तीन शब्दां दे पिछे अणगिणत कहानियां ने। इह तमगा सिर्फ जंग जीतण लई नहीं, इह उस असाधारण बहादुरी लई है जिथे सैनिक अपनी जान दी परवाह तों उपर देश दे फर्ज नूं रखदा है। परमवीर चक्र दे कुल 21 प्राप्त करता रहे हन, इन्हां विचों 14 नूं इह सन्मान मरण उपरंत मिलिया। जोगिंदर सिंह इस महान सूची विच 8वें नंबर ते आउंदे हन। उन्हां तों पहलां सोमनाथ शर्मा, जदूनाथ सिंह, रामा राघोबा राणे, पीरू सिंह, करम सिंह, गुरबचन सिंह सलारिया, धन सिंह थापा, फिर जोगिंदर सिंह।

हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो

जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁਵਾਨੀ ਸੁਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੁਵਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਆਰਾਧਨਾ।
1: नमस्कार श्रोतियों, तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम युवाणी, जिस दे अंक विच अज असी गल करांगे रोजगार समाचार बारे। मैं हाँ आराधना अते अज एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हाँ कुछ दिलचस्प अते जानकारी भरे विषयां नाल। श्रोतियों, साडी दुनिया विच लगभग हर दिन किसी ना किसी खास मौके जां दिवस नूं समर्पित हुंदा है। यह दिवस सानू किसी खास विषय व्यक्ति

गीत तो बाद एक बार फिर थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है प्यारे श्रोतियो, तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम युववाणी। युववाणी दे आज दे अंक विच असीं लैके आए हां रोजगार समाचार। श्रोतियो, हर साल 13 सितंबर नूं इंटरनेशनल चॉकलेट डे यानी अंतरराष्ट्रीय चॉकलेट दिवस मनाया जांदा है। इह दिन दुनिया भर विच चॉकलेट दी लोकप्रिया अते इस नाल जुड़ी मिठास ते खुशी नूं मनाउण दा इक मौका है। चॉकलेट दा मुख स्रोत कोकोआ बीन्स हन, जिन्हां दी वरतों मनुख हजारां सालां तों करदा आ रिहा है। समें दे नाल चॉकलेट बनाउण दी प्रक्रिया विच काफी बदलाव आए अते अज साडे कोल मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट अते वाइट चॉकलेट समेत कई किस्मां मौजूद हन। चॉकलेट नूं अक्सर प्यार, दोस्ती, खुशी अते जशन नाल जोड़िया जांदा है। हालांकि चॉकलेट दा आनंद लैंदे समें संतुलन अते सेहतमंद खुराक दा ध्यान रखना भी जरूरी है। इस दिन दा मकसद सिर्फ चॉकलेट खाना ही नहीं, सगो इस दे दिलचस्प इतिहास अते दुनिया भर विच इस दी महत्वता नूं जानना भी है। हुण गल करदे हां पॉजिटिव थिंकिंग डे यानी सकारात्मक सोच दिवस दी। इह दिन सानू अपनी सोच विच सकारात्मकता, उम्मीद अते आत्म विश्वास नूं जगा देण लई प्रेरित करदा है। सकारात्मक सोच दा मतलब इह नहीं कि जिंदगी विच आउण वालियां मुश्किलां नूं असी नजरअंदाज करिए। इस दा असल अर्थ है कि मुश्किल हालातां विच वी असी हौसला ना हटाईए अते समस्या दे हल वल ध्यान दे। साडी सोच दा साडे फैसलां, विचार अते रोजाना दे तजर्बियां ते प्रभाव पैंदा है। इक चंगी अते आशावादी सोच सानू नवियां चुनौतियां दा सामना करना, अपनियां गलतियां तों सिखना अते अपने टिचियां वल अगे वधण लई प्रेरित कर सकदी है। प्यारे श्रोतियो, जिंदगी विच मिठास चॉकलेट ला सकदी है, पर जिंदगी नूं खूबसूरत बनाउण लई सकारात्मक सोच भी ओनी ही जरूरी है। श्रोतियो, हुण समां है तुहाडे लई इक होर महत्वपूर्ण अते लाभदायक सैगमेंट दा, रोजगार समाचार। अज दे इस सैगमेंट विच असीं तुहाडे लई लैके आए हां देश अते पंजाब विच निकलियां वख-वख सरकारी नौकरियां, भर्तियां अते रोजगार नाल संबंध महत्वपूर्ण मौके। तां कागज कलम तैयार रखो अते ध्यान नाल सुनो। जी श्रोतियो, रोजगार समाचार शुरू करन तों पहलां आओ सुनदे हां इक प्यारा जिहा गीत।

साइट है www.ibps.in, और फिर तो सुनो www.ibps.in। अगली असामी है बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर। बैंक ऑफ इंडिया वालों वख वख स्ट्रीम विच ऑफिसर दे अहुदेयां लई रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू की गई है। ऑनलाइन अर्जियां 10/9/2026 यानी कि 10 सितंबर 2026 तो शुरू हो चुकिया है, 25 सितंबर 2026 यानी कि 25/9/2026 तक है। उम्मीदवार अपनी योग्यता अनुसार एजिबिलिटी चेक कर लें। अगली असामी है बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स। बैंक ऑफ इंडिया वालों वख वख स्ट्रीम्स विच ऑफिसर दे अहुदेयां लई रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू किया गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 10/9/2026 यानी कि 10 सितंबर 2026 तो लेके 25/9/2026 यानी कि 25 सितंबर 2026 तक है। उम्मीदवार अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अते एक्सपीरियंस दे अनुसार योग्यता चेक कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन प्रिंट करने की आखिरी मिति 10/10/2026 यानी कि 10 अक्टूबर 2026 है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.bankofindia.co.in। एक बार फिर तो सुनो www.bankofindia.co.in। अगली असामी है इंडियन ओवरसीज बैंक सिक्योरिटी गार्ड्स की। हुन गल करिए इंडियन ओवरसीज बैंक की। बैंक वालों सिक्योरिटी गार्ड्स के अहुदेयां लई रिक्रूटमेंट की जा रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 अगस्त 2026 यानी कि 25/8/2026 तो लेके 14 सितंबर यानी कि 14/9/2026 तक है। एप्लीकेशन प्रिंट करने की आखिरी मिति 29 सितंबर। NMDFC कंपनी सेक्रेटरी कम चीफ मैनेजर नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन NMDFC वालों कंपनी सेक्रेटरी कम चीफ मैनेजर कॉर्पोरेट सर्विसेज के अहुदेयां लई रिक्रूटमेंट की जा रही है। रजिस्ट्रेशन 25/8/2026 तो लेके यानी कि 25 अगस्त 2026 तो लेके 23/9/2026 यानी कि 23 सितंबर 2026 तक है। एप्लीकेशन प्रिंट करने की आखिरी मिति 8/10/2026 यानी कि 8 अक्टूबर 2026 है। यह स्पेशलाइज्ड पोस्ट है, इसलिए उम्मीदवार अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अत एक्सपीरियंस जरूर चेक करें। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.nmdfd.org। एक बार फिर तो सुनो www.nmdfc.org। अगली महत्वपूर्ण असामी है रामागुंदम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। रामागुंदम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड RFCL वालों इंजीनियर अते होर अहुदेयां लई रिक्रूटमेंट एडवरटाइजमेंट जारी किया गया है। इस रिक्रूटमेंट की आखिरी मिति 24/9/2026। इंजीनियरिंग अते संबंधित क्वालिफिकेशन वाले उम्मीदवार नोटिफिकेशन विच पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.rfcl.co.in। एक बार फिर तो सुनो www.rfcl.co.in। अगली असामी है NIPER कोलकाता प्रोफेसर दी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता वालों प्रोफेसर दे अहुदेयां लई रिक्रूटमेंट की जा रही है। अर्जी की आखिरी मिति 17/9/2026 यानी कि 17 सितंबर 2026 है। ए हायर एजुकेशन अते फार्मास्यूटिकल रिसर्च सेक्टर विद सीनियर लेवल अपॉर्चुनिटी है। वधेरे जानकारी इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.nipper.sc.in। एक बार फिर तो सुनो www.nipper.sc.in। अगली असामी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यंग कंसल्टेंट। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA वालों यंग कंसल्टेंट फॉरेस्ट फायर रिस्क मैनेजमेंट दे अहुदेयां लई मौका दिता गया है। ए वैकेंसी की आखिरी मिति है 18/10/2026 यानी कि 18 अक्टूबर 2026। ए डिजास्टर मैनेजमेंट अते फॉरेस्ट फायर रिस्क मैनेजमेंट नाल संबंधित मौका है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.ndma.gov.in। अगली असामी है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस NBEMS वालों एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दे अहुदेयां लई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ए अहुदे लई आखिरी मिति 30/10/2026 यानी कि 30 अक्टूबर 2026 है। यह सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अते मेडिकल एजुकेशन नाल जुड़िया अहुदा है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट है www.nbes.nid.in। एक बार फिर तो सुनो www.nbes.nic.in। अगली असामी है बी

0: उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: आज तक इस योजना नाल 9,50,00,000 तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके ने। जे तुसी भी 18 to 40 साल दी उम्र दे हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना दे 3 गारंटेड लाभां दी जानकारी लई अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: दस साल का कोलैबोरेशन सिंजेंटा का लॉयल्टी प्रोग्राम लेके आया है जोड़ी तमाका जोड़ी पक्की इनाम तगड़ा 1 crore रुपए तो ज्यादा दे इनाम 2 थार 6 bikes 12 scooters अते 1000 प्लस विनर्स 2 liter एमस्टार टॉप प्लस 1 kilo चेस यानी 1 lucky draw कूपन 25 सितंबर नू लकी ड्रॉ होवेगा आज ही खरीदो। TNC अप्लाई।
3: विज्ञान दी दुनिया खोजां दियां कहानियां अते भारत दे महान विज्ञानियां दियां उपलब्धियां जी स्रोतियो मिति 14 सितंबर दिन सोमवार सवेरे 7 बजे सिलसिला साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे तहत तुसी सुनोगे विशा भारत दे महान विज्ञानी खोज तो उपलब्धि तक। वाचक ममता अरोड़ा प्रोग्राम दे निर्माता ते निर्देशक बलजीत शर्मा।

जी दोस्तों, प्रोग्राम शाम सुहानी आकाशवाणी FM बठिंडा तो शुरू हो चुके हैं जी। तो तुहानू पता है जी, आकाशवाणी FM बठिंडा के इस प्रोग्राम के तुसी किस तरह शामिल होना है जी। हाँ जी, शामिल होने लिए तुसी आकाशवाणी FM बठिंडा का नंबर डायल करना है। नंबर है 0164-2240-331। इस नंबर नू मिला के तुसी चलते प्रोग्राम के साडे नाल जुड़ जाना है और सुनना अपनी पसंद का कोई भी गीत। तो अज असी अपने सुन वाले सारे दोस्त मित्र सज्जनों ये भी दस दिए, प्रोग्राम का समा रहेगा जी 7 बजे तो लैके 7:30 तक। सो अधे घंटे के इस समय के दौरान स्टूडियो नंबर एक बार फिर दस रहे हैं 0164-2240-331 मिलाओ, साडे नाल जुड़ो और सुनो अपनी पसंद का कोई भी गीत। जब तक कोई दोस्त साडा नंबर मिला के साडे नाल जुड़ेगा तद तक सुनांगे जी क्लीयर कंठ की आवाज़ के इस गीत नू।

प्रोग्राम संबंधी सूचना 14 सितंबर दिन सोमवार प्रोग्राम कर परिवार के तहत सिलसिला सेहत संभाल विषय रहेगा छाती अते साह दियां बीमारियां। इस महत्वपूर्ण विषय ते जानकारी देन लई साडे स्टूडियो विच हाजिर होंगे डॉक्टर आंचल जैन जिन्हां नाल गलबात करनगे आकांक्षा अरोड़ा। जिन्हां श्रोतियां ने इस विषय संबंधी कोई सवाल पूछना होवे जां जानकारी लेनी होवे ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 0164-2240-331 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਹਨ ਬੜਿਆਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਠਿੰਡਾ। ਸੋ

0: नाना पुलना 14 सितंबर दिन सोमवार दोपहर 12:03 ते सिलसिला सेहत संभाल प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है जी आकाशवाणी FM बठिंडा तो शाम सुहानी ते स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक 7:12 ते आए 6 सेकेंड होए ने। चलते प्रोग्राम दे विच 0164-242-4331 नंबर डायल करके अगले कॉलर साडे नाल जुड़ चुके ने। केड़े सज्जन साडे नाल जुड़े ने वेखते हाँ। हैलो,
2: सत श्री अकाल जी।
1: तुहानूं भी प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
2: होर परिवार ठीक है जी? अपना वड्डा परिवार है जी, बहुत वड्डा।
1: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ।
2: ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ, ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ ਗੋਲੂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਿਆਣ ਸੁੱਖਾ ਤੋਂ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਗੀਤ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਸਰ?

अनाज पीसण दी रसम। पंजाब दे वासी पहला अनाज नू घर लगियां हथ चक्कियां राही पीस के आटा बनाउंदे सन। व्याह शादियां विच आटे ते दालां दी काफी लागत होण करके व्याह तो काफी दिन पहला ही लोकां दियां चक्कियां इकट्ठियां करके महल्ले दियां औरतां नू बुला के कणक अते दालां पीसियां जांदियां ते इस मौके औरतां वल्लों गीत भी गाए जांदे सन।

0: है पानी लाल शराब बन गया जाते परिये।
1: लो जी आज दे प्रोग्राम शाम सोहानी दी हुण आपां आखरी कॉल लैन जा रहे हैं जी। केड़े कॉलर साडे नाल जुड़े ने? हैलो,
2: हां जी,
1: नाम दस दो सर।
2: मैं जी भोला सिंह सनेहा बोल रहा जी, पथराला पिंड तो।
1: भोला सिंह
2: पथराला सोनी भगत।
1: ठीक है जी भोला सिंह जी, की दस दो केड़ा सुनना
2: जी? करतार वाले ला दो, देख लो जिहड़ा वधिया लगदा ओह ला दो जी।
1: ठीक है जी, ठीक है, कॉल करने लई तुहाडा भोला सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी, थोड़े सारे प्रोग्राम बहुत वधिया जी, ते दिन दुगना रात चौगुनी करे थोड़ी मौत।
1: ठीक है जी, इस ब्लैसिंग दे लई तुहाडा तहे दिलों शुक्रिया जी। सुनदे हां तुहाडी फरमाइश ते करतार रमले दी आवाज़ च गीत।
2: ठीक है जी।

0: जी दोस्तों, ये सी साडा अज दा फरमाइशी गीतों दा लाइव फोन इन प्रोग्राम शाम सुहानी। अज दे इस प्रोग्राम दे विच सानू तकनीकी सहयोग दे रही सी समुची आकाशवाणी FM बठिंडा दी तकनीकी टीम। प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक श्री बलजीत शर्मा ते अपने रेडियो दोस्त दीपक नू अज दा प्रोग्राम खत्म करन दी दिओ आग्या। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: प्रोग्राम शाम सुहानी।
0: हुणे तुसीं सुन रहे सी फरमाइशी गीतां दा लाइव फन इन प्रोग्राम शाम सुहानी। FM बैंड 101.1 MHz अते प्रसार भारती दी मोबाइल फोन ऐप न्यूज़ ऑन AIR ते तुसीं सुन रहे हो आकाशवाणी FM बठिंडा दे प्रसारण। स्टूडियो दी घड़ी दे मुताबिक 7:29 ते 55 सैकेंड होए ने। 7:30 ते रिले करांगे पंजाबी विच खबरां आकाशवाणी जलंधर तों।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अज नवी दिल्ली विच खत्म हो गया है। अपने समाप्ति भाषण विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का एक समूह नहीं सगों समस्यावां हल करन दा एक मंच है। श्री मोदी ने अज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान कई विश्व नेतावान नाल दुवलियां मीटिंगां कीतियां। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच कई ठोस ते विकासमुखी नतीजे निकले ने। हाकी विच भारत दीआं पुरुष ते महिला टीमां ने अज चीन दे मोकी विच जूनियर एशिया कप दे खिताब जीत लए ने ते औरतां दे 2020 एशिया कप क्रिकेट दे फाइनल विच अज भारत दा मुकाबला श्रीलंका नाल होएगा। मैच हुण तों थोड़ी देर बाद 8 बजे शुरू होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अज नवी दिल्ली विच खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन दौरान इस गल ते जोर दिता कि ब्रिक्स की विभिन्नता इस की पछाण ते सहयोग इस की प्रेरणा बनी रहनी चाहिए है ते इस की प्रगति नूं मानवता के हित च योगदान पाउणा चाहिए है। दो रोजा शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन अपने समाप्ति भाषण में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का एक समूह नहीं सगों समस्यावां हल करन दा एक मंच है और पिछले दो दिनों दौरान हुई चर्चावां ने इस विश्वास नूं होर मजबूत किया है।
3: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
2: लचकीलेपन, नवीनता, सहयोग ते निरंतर विकास बारे सैशन विच श्री मोदी ने उम्मीद प्रगटाई कि ब्रिक्स सम्मेलन विच अपनाया गया नवी दिल्ली ऐलाननामा भविख दे सहयोग लिए एक सांझा दृष्टिकोण ते स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा।
3: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा दे।

0: हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीजे दहाके विच दाखल होने वाला है। दुनिया हुण इस समूह तो ठोस नतीजियां दी उम्मीद करती है। उन्होंने कहा कि समूहक यत्नां राहीं ब्रिक्स निश्चित तौर पर इन उम्मीदों से खरा उतरेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले चेयरमैन वजों चीन नूं वधाई दित्ती। उन्होंने नवी दिल्ली सम्मेलन नूं सफल बनाउण विच सारे ब्रिक्स देशों भाईवाल देशों अते उन्हां दीआं टीमां दी शलाघा कीती। प्रधानमंत्री ने नेतावां दा उन्हां दी सरगर्म शमूलियत अते कीमती योगदान लई धन्नवाद प्रकट कीता। इस तों पहलां सिखर सम्मेलन दे खुले सैशन नूं संबोधन करदिआं श्री मोदी ने कहा कि महामारियां, जलवायु नाल संबंधित आफतां अते सप्लाई लड़ी विच विघनां ने दिखाया है कि एक आपस विच जुड़े संसार विच कोई भी संकट इक इलाके तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए ब्रिक्स देशों ने समूह के अंदर लचकीलेपन अते संकटां नाल निपटण की समर्था वधाउण ते जोर दिता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त अते नवें बाजारां नाल जोड़न लई एक ब्रिक्स MSME सहयोग पोर्टल स्थापित करन दी तजवीज रखी गई है। इस तों इलावा शहरां विच सब तों वधिया अभ्यासां नूं सांझा करन दी सहूलत लई एक ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब दा गठन किया गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के अंदर विकसित हलों के लाभों को ग्लोबल साउथ की लोड़ों अनुसार ढालिया से उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
0: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट realities, but together we rise through cooperation and blossom for humanity.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे ब्रिक्स सम्मेलन दौरान विश्व नेतावान कई दौलिया मीटिंग कीतियां। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोखायेव नाल दुवली मीटिंग विच श्री मोदी ने दुवले संबंधों विच प्रगति की समीक्षा की। कजाकिस्तान नाल भारत के प्राचीन सभ्यतावादी संबंधों नूं याद करदिआं उन्होंने हाल ही के सालों में दुवले संबंधों विच निरंतर वाधे ते संतुष्टि प्रगट की। दोहां नेतावां ने राजनीति, व्यापार, रक्षा ते सुरक्षा, संपर्क, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजा, उभरदियां तकनोलॉजियां, रचनात्मक अर्थव्यवस्था ते लोकां तों लोकां दे संबंधां समेत वख-वख खेतरां विच सहयोग दी समीक्षा कीती। प्रधानमंत्री ने मिस्र दे राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी नाल भी मुलाकात कीती। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान खेतरी घटनाक्रम अते भारत मिस्र भाईवाली समेत कई मुद्दों ते चर्चा की गई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो नाल अपनी मुलाकात विच श्री मोदी ने कहा कि दोवें देश कई खेतरां विच अपनी भाईवाली नूं मजबूत करना जारी रखणगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर नाल भी गलबात की। उन्होंने मौजूदा आसियन चेयरमैन वजों ब्रिक्स सम्मेलन विच फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। युगांडा दे उपराष्ट्रपति जैसिका रोज़ एप्पल अलूपो नाल अपनी मुलाकात दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दवले संबंधों का जायजा लिया अते तकनोलॉजी भाईवाली समर्था निर्माण, ज्ञान सांझा करन, निवेश सहूलतां अते निजी खेतर सहयोग राही मुख तरजीही खेतरां विच सहयोग वधाउण दी लोड़ ते जोर दित्ता। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRRN ਜਲੰਧਰ। विदेश मंत्रालय ने अज कहा कि अज नवी दिल्ली विच खत्म हुए ब्रिक्स सम्मेलन ने कई ठोस अते विकासमुखी नतीजे कढ़े ने। अज दुपहर बाद नवी दिल्ली विच मीडिया नूं संबोधन करदिआं मंत्रालय विच सकत्तर सुधाकर दलेला ने कहा कि वख-वख विशेयां च 50 तों वध ठोस नतीजे हासिल होए ने। उन्हां इस नूं भारत दी ब्रिक्स प्रधानगी दी इक महत्वपूर्ण प्राप्ति दस्सिआ। उन्हां कहा कि ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र दे सुधारां दी लोड़ ते इक स्थिर स्थिति रखी है अते कहा कि भारत ब्रिक्स देशां नाल अपनी सांझ नूं होर मजबूत करना चाहुंदा है। भारत ने नेपाल दे हड़ प्रभावित बेतरावती इलाके विच आवाजाई अते संपर्क नूं बहाल करन लई 70 मीटर लंबे बैली पुल दे हिस्सिआं दी पहली खेप भेजी है। नेपाल विच भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि पुल दे हिस्सिआं दी पहली खेप कल हटौड़ा विच नेपाल दे सड़क विभाग नूं सौंप दित्ती गई। उन्हां कहा कि आउण वाले दिनां विच पुल दे हिस्सिआं दी होर खेपां उत्थे पहुंचणगियां। यह सहायता 26 अगस्त नूं उत्तरी अते केंद्रीय नेपाल विच है। तबाहकुन हड़ां तों बाद भारत दी चल रही मानवतावादी सहायता दा हिस्सा है। विदेश मंत्रालय अनुसार भारत ने हुण तक 130 टन तों वध राहत समगरी अते बचाव राहत अते फोरेंस

0: फाइनल के हिसाब से अपनी टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और फ्रीली खेलने देने के हिसाब से मुझे लगता है कि ये बैटिंग करने का फैसला बेटर था थोड़ा सा इनका। और जो दूसरा उन्होंने कहा फील्डिंग का, उस पर तो खैर कम जितना कम बोला जाए उतना अच्छा है, बिकॉज T20 जैसे फॉर्मेट में अगर आप कैचेस ड्रॉप करेंगे तो अगर आपके सामने थोड़ी सी भी मजबूत टीम होगी तो वो आपको के आप दे यू विल दे विल मेक यू पे द प्राइस फॉर इट। अभी तक इंडिया को वो नहीं झेलना पड़ा है क्योंकि उस तरह की टीम नहीं मिली है इनको सामने खेलती हुई। बट आई होप के पिछले मैच और इसके बीच में जो इनको थोड़ा सा ब्रेक मिला है उसमें इस चीज पे जरूर बात की हो टीम मैनेजमेंट ने कि आप फील्डिंग को इतना लाइटली नहीं ले सकते हैं।
1: चलिए, टॉस पर हमने सुना कि चामरी अच्छापच्चू ने कहा द फर्स्ट सिक्स ओवर्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, श्रीलंका के लिहाज से भी, भारत के लिहाज से भी। भारत के लिए स्मृति मानधना और शेफाली वर्मा की जोड़ी ओपन करेगी। और वापस स्मृति मानधना पर आते हैं लतिका, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, महिलाओं के क्रिकेट में किसी भी खिलाड़ी ने इनसे ज्यादा रन बनाए नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं फैन बेस में एक वो चर्चा रहती है कि बड़े मुकाबलों में शायद उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही। जैसा अभी उत्तरा ने भी कहा, जो सेंचुरी आई वो हांगकांग के खिलाफ आई, पिछले दो मुकाबले पाकिस्तान के खिलाफ और सेमीफाइनल बांग्लादेश के खिलाफ, वहां रन नहीं बने। आप कैसे देखते हैं इसको?
0: हाँ देखिए, कोई भी प्लेयर होता है और खासकर स्मृति जैसा प्लेयर जिसने काफी लंबा सफर अभी तक वुमेन्स क्रिकेट में अपना निभाया भी है और हमने देखा है कि साल दर साल वो इम्प्रूव करते हुए दिखाई दिए हैं। जो नंबर ऑफ रन्स हैं उनके बल्ले से ज्यादा निकल रहे हैं। आप अगर एबिलिटी देखें उनके सिक्सेस लगाने की या बिग शॉट्स लगाने की, वो पहले इतनी नहीं दिखती थी, जो आज के टाइम में उनके बैटिंग में ये फर्क दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से वो रन बनाती हैं वहां पर उनकी जो स्किल है वो बहुत इम्प्रूव हो चुकी है। और अब जो बड़े इवेंट्स होते हैं तो उनमें हम ये नहीं कह सकते कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे। कोई भी प्लेयर होता है, चाहे वो बल्लेबाज हो चाहे वो गेंदबाज हो, वो पर्टिकुलरली डे पे किस तरीके से, किस माइंडसेट से वो खेलना चाहता है, कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहता है या किस तरीके से देखता है। T20 खासकर एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, खासकर जो ओपनर्स होते हैं, पावर प्ले का इतना प्रेशर रहता है कि इस पावर प्ले को हम किस तरीके से मैक्सिमाइज जो है रन्स ले सकते हैं। तो वहां पर कई बार आपको एग्रेशन के साथ खेलना होता है, जैसा कि शेफाली वर्मा खेलती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये समझ भी रखनी पड़ती है कि सामने जो गेंदबाज हैं वो किस तरीके से गेंदबाजी वहां कर रहे हैं और जो विकेट है वो किस तरीके से खेल रहा है। जो सरफेस है कई बार उसका भी बहुत बड़ा रोल हो जाता है कि आप खुल के अपने वो शॉट्स नहीं खेल पाते। स्मृति की यही बात करूंगी, ओवरऑल ग्लोब में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपीरियंस उनके पास है और जो टाइमिंग के उस्ताद वो बन चुकी हैं। जिस तरीके से वो बल्ले से गेंद को जब टच करती हैं तो बहुत ही मजा आता है देखने में और बाउंड्री के बाहर भी जाता है। तो लगता है कि आज के मैच में उनसे काफी उम्मीद है कि एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पर शेफाली और स्मृति देंगे।
2: जी लतिका, आपने बात करी शेफाली की, तो शेफाली जब तक क्रीज पर हैं वो पेस कम नहीं होने देती हैं। बांग्लादेश के अगेंस्ट जब सारे बैटर्स स्ट्रगल कर रहे थे, पिच भी बॉलर्स को मदद कर रही थी, तब 64 रनों की शानदार पारी उन्होंने खेली है। लकी भी रही उस दिन, लेकिन कहते हैं फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। एंड शी इज अ पियरलेस बैटर। ओडीआई वर्ल्ड कप में रिप्लेसमेंट के तौर पर आई थी और नाउ शी हैज बिकम इररिप्लेसेबल। उनके ग्राफ को आप कैसे देखती हैं?
0: देखिए, मैं बार बार कहीं पे भी किसी भी प्रोग्राम में जाती हूँ तो उनके लिए यही कहती हूँ कि पिछले जब वो ड्रॉप हुए थे भारतीय टीम से, उसके बाद लगातार उन्होंने बहुत बेहतरीन क्रिकेट डोमेस्टिक लेवल पे खेला है। वहां पर उन्होंने बहुत रन्स बनाए हैं, बहुत मेहनत की है और जिसका उनको भरपूर फायदा क्या हुआ कि वर्ल्ड कप पे उनको कॉल आया, वहां पर वो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए उनका परफॉर्मेंस आई। तो ये एक कमबैक जो उनका रहा है बहुत इंपॉर्टेंट था और वो अहमियत जानती हैं कि जब आप टीम से ड्रॉप होते हैं और उसके बाद जब आप टीम में आते हैं तो वो डिफरेंस जानती हैं कि कितनी मेहनत करनी होती है। इस शेफाली वर्मा में हमें वो चेंज दिखाई दिया है कि एग्रेशन के साथ साथ आपको लंबी पारी कैसे खेलनी।
1: जी, और सिमिलैरिटीज अगर देखें, इफ वी ट्राई एंड ड्रॉ पैरेलल्स, उतरा द सेम पैरेलल टू जी कामलिनी, अगेन अ टीनेज प्रोडिजी एंड अगेन शी हैज बीन ड्राफ्टेड इनटू द साइड इन द बिग फिनाले, हैज प्लेड ओनली वन गेम फॉर इंडिया बिफोर दिस। हाउ डू यू सी इट पैनिंग आउट फॉर हर टुडे एंड डू यू सी हर बैटिंग एट नंबर 3 इन प्लेस ऑफ प्रतिका और डू यू सी अ चेंज इन द बैटिंग ऑर्डर?
0: जैसा लतिका ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर जो है वो स्पेशली T20 फॉर्मेट में इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द सिचुएशन इज एट दैट मोमेंट। अगर

0: स्मृति और शेफाली ने आपको बहुत अच्छा स्टार्ट दे दिया, बोथ इन टर्म्स ऑफ द रन रेट एंड द रन स्कोर्ड। तो हो सकता है कि आप जो नॉर्मल ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव आपकी लाइनअप है उस हिसाब से आए कि हरमन आ रही हैं, फिर धीरे धीरे अब बाकी आ रहे हैं। और अगर वो जल्दी बाई चांस विकेट गिर गए और आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा रन बनाने की जरूरत है, एक थोड़ी स्टेबिलिटी की जरूरत है, तो आप हो सकता है कि ऋचा घोष को भी ऊपर भेज दें। दीप्ति शर्मा को हमने देखा ही है, 3 से लेके 10 तक वो किसी भी नंबर पे आती हैं और हर पोजीशन पे अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हैं। तो ऑर्डर का तो आप नहीं बता सकते कि किस तरह से जाएगी चीजें, बट हाँ, उसको अगर टीम मैनेजमेंट ने एक पूरे टूर्नामेंट में बाहर बैठा के फाइनल में ड्राफ्ट इन किया है, देन शी दिस इज हर चांस टू प्रूव दैट शी इज समवन स्पेशल एंड टू प्रूव दैट द टीम मैनेजमेंट इज राइट इन ट्रस्टिंग हर ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ प्रतिका रावल। टीम मैनेजमेंट ने एक रिस्क लिया है, ये बिल्कुल सही है, बट उन्होंने रिस्क जरूर लिया है, बट दिस इज अ रिस्क विच आई थिंक दे हैड टू टेक, क्योंकि आपको इसके बाद फिर मौका मिलेगा नहीं। ये लास्ट मैच है, इसमें अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? एंड प्रतीका रावल का जिस तरह से पिछले कुछ समय में फॉर्म रहा है, आप अगर उनको खिलाते तो हो सकता है वो चल जाती, लेकिन आप अगर किसी और को चांस देना चाहते हैं तो इसके बाद कब देंगे? क्योंकि इसके बाद आपको ये भी नहीं पता है कि नेक्स्ट कब खेलेगी टीम। एशियन गेम्स में जरूर जाएगी, लेकिन वहां पे टीम में क्या चेंजेस होंगे, किसको एक्चुअली खेलने का मौका मिलेगा
1: हाँ,
0: इलेवन
1: मुकाबला
0: में?
1: नॉकआउट
0: एग्जैक्टली, और वहां पे टीम सीधा क्वार्टर फाइनल में उतरेगी ग्राउंड
1: जी
0: पे, आपको टोटली 2 मैच मिलेंगे, 3 मैच मिलेंगे खेलने के लिए, तो इसके बाद आपको नहीं मिलता वो मौका। जहां तक कमलिनी की बात है, गिविंग हर अ चांस आई थिंक इज समथिंग विच द मैनेजमेंट वुड हैव थॉट अबाउट, बिकॉज दे नो दैट शी हैज द एबिलिटी टू मेक अ चेंज टू दिस टीम।
1: एंड टॉकिंग अबाउट मेकिंग चेंजेस, इट्स आर कॉलर्स हु मेक अ डिफरेंस टू दिस शो। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके मुद्दे था, आइए उनसे बात करते हैं।
2: जी, अपना नाम बताएं और आप कहां से शो में शामिल हो रहे हैं? नमस्कार रेड्डी जी, कैसे हैं आप? और अपना सवाल हमारे साथ आप शेयर करिए प्लीज।
1: चलिए, धार धार प्रश्न आया है लतिका, सीधा आपकी तरफ बात करेंगे। भारती फुलबली क्या सही में फ्लॉप हुई है या फिर उनको मौके उस तरह से मिले नहीं है? पिछले मैच में जब बल्लेबाजी करने आई, एक गेंद बची थी, उसमें भी वो रनआउट हो गई, तो कहीं ना कहीं टीम के लिए खेल रही थी, ये कहना उचित होगा, या फिर आपको लगता है कि वो मौके भुना नहीं पाई हैं?
3: देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है भारती फुलमाली के लिए कि उनको वो मौके नहीं मिल पा रहे हैं, वो समय नहीं मिल पा रहा है टीम में जाके। आप किस तरीके से शॉट्स खेल रहे हैं, वहां पर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? देखिए, 2 या 3 बार तो वो रन आउट हुई हैं जिसकी वजह से उनको मिला ही नहीं दूसरे को बचाने के लिए, जो कि पहले से ही बल्लेबाज खेल रहा है। तो ये सिचुएशन उनके साथ कुछ इस तरीके से घटी है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं खेल रही हैं। जितना मौका मिला उन्होंने खूब कोशिश भी की है, और उनको हमने देखा है WPL में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली इनिंग्स उनके बल्ले से हमेशा आई है जब उनको नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा खेलने को मिली है। तो मुझे लगता है कि इस चेंज में ऐसी कोई खास खराबी नहीं है, क्योंकि ये चेंज मैं काफी पहले देख रही थी। आई थिंक फर्स्ट और सेकेंड मैच के बाद मैं ये चेंज देख रही थी। कोई नहीं, फाइनल में आया है, इट्स ओके, लेकिन कमलिनी भी कोई कम प्लेयर नहीं है। पिछले डोमेस्टिक सीजन में हमारे ही साथ दिल्ली के साथ मैच था और उन्होंने 150 स्कोर किया था, और अकेले अपने बूते पे उन्होंने मैच जिताया था, और वहां बड़े बड़े हिट्स लगाए थे। तो काबिलियत उनमें भी है, और वो भी उसी तरीके की शॉट्स लगा सकती हैं। और T20 का ऐसा गेम है, अगर वो नंबर 3 पे आती हैं तो काफी कारगर साबित होंगी। यस, प्रेशर जरूर होगा, एक फाइनल में आपको सीधा मौका मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपको अगर अपना सारा निकाल के देना है कि आप प्रेशर नहीं लेते हैं और इस तरह के प्रेशर में आप निखर के आते हैं एज अ प्लेयर, तो वो चीज आज बहुत बड़ा मौका है कमलिनी के लिए, अगर वो बल्ले बल्लेबाजी के लिए जल्दी आती हैं तो।
1: ऑन दैट नोट, बड़े संक्षेप में, क्या भारती फूलमली को बड़े फाइनल में जल्दी

0: भेजने की वो रिस्क उठाएंगी?
1: नहीं आज तो नहीं, क्योंकि जिस तरीके का उनका बैटिंग ऑर्डर है मुझे लगता है वो छठे सातवें के बाद ही वहां पर सूट करती हैं, क्योंकि ऋचा घोष, दीप्ति, अभी कमलिनी है, फिर हरमन है, तो इनके बाद ही अगर वो आती हैं तो मुझे लगता है ठीक है,
2: क्योंकि चेंजेस की बात हो रही है। और लतिका, आपने भी कहा कि आप पहले दूसरे मैच में ही ये एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन फिर भी भारत ने प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं किए, इस टूर्नामेंट में पहली बार कोई बदलाव किया है। वहीं श्रीलंका हैव चेंज देयर प्लेइंग 11 इन एवरी सिंगल गेम। व्हाई डिड इंडिया शाय अवे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एंड चेंजिंग द टेम्पलेट?
1: देखिए, मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर ये चेंजेस आप एक अपने साथ कुछ प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं और यंग प्लेयर्स को लेके जा रहे हैं और काफी समय से अपने साथ उनको ट्रैवल करा रहे हैं, तो ये इस तरह के टूर्नामेंट, एशिया कप हो गया या एशियन गेम्स हो, ये इस तरीके के टूर्नामेंट्स ही हैं जो उनको एक्सपीरियंस देगा टीम के साथ कि वो किस तरीके से अपना खेल है जो दिखा सकते हैं, क्या काबिलियत है उनमें वो दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये टूर्नामेंट्स, जब बड़ी आप किसी टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हो, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आपके साथ जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा मौका मिले।
0: चलिए, भारतीय बल्लेबाजी की हमने बात की, थोड़ी सी बात श्रीलंका की गेंदबाजी की भी करते हैं। उत्तरा, एक पेसर है उनके पास मिताली अयोध्या, जो स्लिंगी एक्शन के साथ गेंदबाजी करती हैं। दो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, चामुदी प्रबोदा है, सुगंधी कुमारी है, और उसके अलावा चामरी अट्टापट्टू, जिनका आपने कहा बल्ला खामोश रहा है, गेंद से वो कमाल करती है। ये 7 फॉर भी लिया पीछे उन्होंने। इंडिया के लिए सबसे बड़ा सरदार आज कौन होने वाला है?
3: देखिए, आपने नाम बहुत सारे लिए हैं, पर जब बड़ा मैच आता है तो बड़े खिलाड़ियों पे स्पॉटलाइट रहता है, और जो पिछला भी फाइनल 24 में खेले थे वो एक तरह से श्रीलंका की जीत का बहुत बड़ा श्रेय जो था वो चमरी अट्टापट्टू को ही गया था। और वो जितनी बड़ी प्लेयर हैं उनके लिए इतना लंबा पीरियड उस तरह से रन बनाए बिना निकलना, शायद उनके लिए भी ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल होगी। वो एक जेन्युइन लेजेंड वाला जो कैटेगरी आता है उसमें आती हैं वो, विमेंस क्रिकेट के मॉडर्न लेजेंड्स के हिसाब से। और मुझे लगता है जब बड़ा मैच हो और बड़ा प्लेयर उस तरह से अभी तक ना कर पाया हो तो उससे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, क्योंकि उसके उसके अंदर जो चीज होती है अपने आप को प्रूव करने की और अपनी टीम को जिताने की, वो शायद किसी यंगस्टर से हमेशा ज्यादा होती है, बिकॉज शी नोज दैट द टीम डिपेंड्स ऑन हर फॉर एवरीथिंग, इंक्लूडिंग द कैप्टेंसी।
2: जी बिल्कुल। तो अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप दोनों से पूछना चाहते हैं कि लो स्कोरिंग टूर्नामेंट रहा है, केवल 2 बार स्कोर 150 के पार गया और दोनों बार ये कमाल भारतीय टीम ने करके दिखाया है। तीसरी बार सेमीफाइनल में भी 149 तक तो वो पहुंच ही गए थे, दूसरी कोई भी टीम यहां तक नहीं पहुंची है। डज दैट पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन श्रीलंका?
1: मुझे लगता है बिल्कुल, क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम जितना अच्छा क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और कह सकते हैं कि हर एक प्लेयर परिपक्व है वहां पर अपने आप को शो करने के लिए, तो श्रीलंका जरूर ये सोच रही होगी कि आज किस तरीके से स्मृति मंदाना, फिर शेफाली वर्मा, फिर कमलिनी जो ऐड हुई है, फिर हरमन है, फिर दीप्ति है, तो एक लंबी लिस्ट जो है उसके सामने कैसे आप टिकने वाले।
2: जी फटाफट से उत्तरा और लतिका, क्या स्कोर प्रेडिक्ट करेंगे आप भारतीय टीम के?
3: देखिए, क्योंकि टीम पहले बैटिंग कर रही है इंडियन टीम, तो समवेयर अराउंड 140 मुझे लगता है शुड बी अ वेरी गुड स्कोर।
2: लतिका?
1: हाँ बिल्कुल, देखिए ये टूर्नामेंट पूरा लो स्कोरिंग रहा है, तो आई थिंक 150-140 के आसपास बन जाएगा, तो बहुत ही
2: ठीक है। तो बिल्कुल हम इंतजार कर रहे हैं अब, और इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, अब आपके साथ जुड़ेगी हमारी कमेंट्री टीम। लतिका उत्तरा, बहुत शुक्रिया आपका, हम फिर से हाजिर होंगे मिड इनिंग्स शो में। नमस्कार।
4: फर्स्ट बॉल 20। मैच का आंखों देखा हाल सुनने के लिए आइए चलते हैं अपनी कमेंट्री टीम के पास।
5: नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। मैं संजय बैनर्जी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत और श्रीलंका इस बड़े मुकाबले में एक दूसरे के सामने हैं। एशिया कप का T20 का ये फाइनल मुकाबला है जो दुबई में अब से कुछ देर के बाद शुरू होने वाला है, और जहां तक इस मुकाबले का सवाल है, आप जानते हैं दोनों टीमें अपराजित हैं और दोनों ने बिना किसी मैच को गवाए फाइनल तक जगह बनाई है, तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया आप प्रदर्शन कह सकते हैं श्रीलंका का। पाकिस्तान ने श्रीलंका को सेमीफाइनल में कुछ हद तक परेशान जरूर किया था, लेकिन इसके बावजूद अंततः श्रीलंका ने बाजी मारी।

0: और फाइनल में जगह बनाई। जहां तक दुबई का सवाल, हमारे प्रोग्राम में आप सुन चुके हैं कि यहां का विकेट थोड़ा सा धीमा है, रन्स कम बन रहे हैं और इस लिहाज से 140-45 के आसपास का स्कोर एक बेहतर स्कोर कहा जा सकता है इस मैदान के ऊपर। टॉस भारत ने जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब देखना है कि भारत श्रीलंका के लिए कितनी बड़ी चुनौती यहां पर पेश करने वाला है। और अब वक्त है हमारे पास स्वागत करने का अपने मित्र मुनीश जॉली का। वेलकम मुनीश।
1: थैंक यू सो मच संजय दा, एंड आई होप ऑल द लिसनर्स अराउंड द कंट्री एंड आल्सो पीपल हु आर ट्यून्ड इन विदिन आर keeping well, and of course there's a big game. It's a Super Sunday. Both men and women team are playing, but bigger game here at Dubai is between the Indian women and the Sri Lankan women, of course vying for the honors for the Asia Cup. India making one change, Dada. Surprisingly, the words that I heard from Harmanpreet was that Pratika Rawal has been rested, and that word rested in a final doesn't come in so easily, not able to digest that easily. Kamalini though comes in, but I think that's a strategic change that they've made. Your views on it?
0: मुनीश, ये पहला परिवर्तन किया है भारत ने, जितने मैचेस खेले हैं दुबई के अंदर अब तक अनचेंज्ड टीम के साथ उतरे, पहला परिवर्तन किया और वो भी फाइनल में किया। अब इसकी वजह क्या थी, क्या प्रतिका रावल का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत संतोषजनक नहीं था, उन्होंने 56 रन बनाए थे 4 मैचेस में, तो ऐसे में उन्हें परिवर्तन के तौर पर बाहर रखना और कमलिनी को लाना एक बड़ा जोखिम भरा फैसला हो सकता है। लेकिन आप जानते हैं ये क्रिकेट है और यहां पर जब आप रिस्क लेते हैं तो कई बार आप बेहतर भी करते हैं। अंपायर्स अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और इस मुकाबले की शुरुआत होने में बस अब चंद लम्हे बाकी हैं। भारत 7 बार ये खिताब जीत चुका है और जाहिर है 8वीं बार भी उसकी निगाहें खिताब पर होंगी।
1: Absolutely, and both the openers coming out in the middle, and that's the strength of India, the left and the right hand combination. But it's a different game, different ball game altogether. Dubai, the temperatures, of course, it's a clear weather, no chances of rain, and two women who walk on in the middle with a tremendous strike rate, which you were mentioning off air also, Dada, 126 for Smriti Mandana, and of course 176 matches with over 4,600 runs, 8 more runs to reach to 4,700 runs in her T20 career. But Shefali Verma is equally good.
0: बिल्कुल, कम उम्र में ही शेफाली ने जिस तरह से अपने आप को पुख्ता किया है भारतीय टीम के अंदर, उसकी तारीफ होनी चाहिए। और शुरू में शेफाली सिर्फ बल्ले से अपना जौहर दिखाती थी, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले कुछ समय से लगातार वो गेंद के साथ भी बेहतर प्रदर्शन करती आई हैं। मिथाली अयोध्या गेंदबाजी की शुरुआत करेंगी श्रीलंका के लिए, ये उनका 11वां मैच है, कुल मिलाकर 10 विकेट ले चुकी है। अगर तेज गेंदबाजी का जिक्र किया जाए तो श्रीलंका के पास एक लौता तेज गेंदबाज मिताली के तौर पर है।
1: एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट स्लिंग आर्म एक्शन जस्ट लाइक मलिंगा। दादा, वर यू सरप्राइज्ड? एंड इट्स अ डिफिकल्ट एक्शन दो।
0: बिल्कुल, बहुत मुश्किल एक्शन होता है, लेकिन जब आप उस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो कई बार वो जो बैटर होता है उसे परेशान भी करता है, क्योंकि आप उसे पढ़ नहीं पाते बहुत अच्छे तरीके से इस तरह की गेंदों को। लेकिन सामने जो दो बैटर्स हैं भारत के, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बैटर्स में उनका शुमार है। पहली गेंद और इस बार ऑफ स्टंप से बहुत इत्मीनान के साथ प्लेस किया, खाता खोला 4 के साथ, तो भारत ने खाता खोल लिया है इस मुकाबले के अंदर। स्मृति मांधना के बल्ले से निकला ये पहला चौका और बहुत इत्मीनान के साथ ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को प्लेस किया 4 के लिए।
1: And what a timing. She resembles Sourav Ganguly so much, and I've said that in a number of occasions, even while the live commentary. Of course, Smriti Mandhana, Shefali Verma, G. Kamalini is going to come at number 3, Harmanpreet Kaur, Richa Ghosh, Bharti Fulmali, Deepti Sharma, Prema Rawat, Kranti Gaur, Sri Charni and Nandini Sharma are the women in 11.
0: Mithali ki game, off stump ke pahar, aur jaisa ke aap chante hain, thoda sa slinging action hai, aur game ki disha अक्सर स्टंप के ऊपर नहीं रहती। मिताली की अगर आप गेंदें लगातार देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंदों को रखने में ज्यादा यकीन रखती हैं। और फाइनल है, फाइनल में भारत खेल रहा है तो दर्शकों की संख्या कैसे कम हो सकती है, खचाखच तो नहीं, लेकिन हां कई जगहों पर ठीक ठाक भरा हुआ यह स्टेडियम दुबई में। श्रीलंका और भारत फाइनल खेलते हुए, भारत अब तक हर फाइनल में भारत ने जगह बनाई है इस टूर्नामेंट के। मिताली की अगली गेंद शेफाली के लिए,

0: ऑफ स्टंप से बाहर। इस बार थोड़ी सी धीमी गेंद, वेरिएशन के तौर पर उन्होंने हल्का गेंद की गति को कम किया, चकमा देना चाहती थी शेफाली को।
1: Absolutely, and the ball keeping low also, Dada. That's very interesting. Just to read out the 11 of Sri Lanka: Himesha Dulani, Chamariya Thapathu, the captain, Vishmi Guna Ratne, Hasini Pereira, Har Stitha, Samara Vikrama, Kavisha Dilhari, Nilakshika Silva, Kaushini Nithyangana, Sugandhika Kumari.
0: पैर पर गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेकिन थोड़ी सी धीमी और शेफाली ने हल्के से केवल गेंद को थपथपा दिया। शुरुआती लम्हे हैं, कोई आक्रामक स्ट्रोक नहीं खेलना चाहते हैं। एक परिवर्तन भारत ने किया, एक परिवर्तन श्रीलंका ने किया। श्रीलंका का जो परिवर्तन है वो संजना काविंदी की जगह विश्मी गुणरत्ने को टीम के अंदर लाया गया है। चल नहीं पाई संजना काविंदी, कुल मिलाकर 29 रन बनाए थे उन्होंने 4 मैचेस के अंदर। इस ओवर की 5वीं गेंद और इस बार स्टंप पर। आमतौर पर आप उनकी गेंदों को स्टंप पर नहीं देखेंगे, ये पहली गेंद थी जो स्टंप पर आई थी और इसे रक्षात्मक तरीके से बल्ले के निचले हिस्से से लगने दिया और सीधे खेला। कप्तान चामरी अटापट्टू, इस पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला नहीं बोला और ये परेशानी का सबब है श्रीलंका के लिए। चामरी अटापट्टू, जिनकी बल्लेबाजी खौफ पैदा करती है विपक्षी टीम के मस्तिष्क में, वो चल नहीं पाई। आखिरी गेंद ये भी स्टंप पर और इस बार रक्षात्मक तरीके से, कोई जोखिम नहीं लेना चाहती शेफाली शुरुआती ओवर में, और इस तरह से 5 रन पहले ओवर में खर्च किए हैं।
1: वेल देन द फर्स्ट ओवर एंड सरप्राइजिंगली 4 डॉट बॉल्स फॉर शेफाली वर्मा एंड शी इज जस्ट वार्मिंग अप। I find that's good because we've seen on a number of occasions Shefali just going after the bowler in the very first or the second ball she faces, but good to see that maybe Amol Mojumdar has worked a bit, spoken to Shefali Verma. Just to complete, Chamudi Pramoda and Mithali Ayodhya are the other two players who fill up the final 11 for Sri Lanka. But Dada, the 17-year-old Chamudi Pramoda, the left-arm spinner, very impressive. And a lot of women cricketers in India said that she's got a baby face. I've heard that a long time back when Sachin Tendulkar made his debut for the Indian team, that he's a baby face cricketer.
0: Bilkul, bilkul, aapne ekdam theek kaha hai. Aur unko dekh kar kaisa lagta hai ki koi bachcha, स्कूल का कोई बच्चा यहां पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है और कमाल की गेंदबाजी करती है। कविशा तिलहारी अब आई हैं नए ओवर के लिए। ये दूसरा ओवर होगा श्रीलंका का। भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का फैसला किया। जाहिर है भारत के सामने एक चुनौती है, कम से कम 145-150 के आसपास का रन रखना होगा। ऑफ स्टंप के बाहर इंतजार किया, बैकफुट पर गई और कवर की दिशा में बढ़िया खेला, गेंद को ड्राइव लगाया 4 रनों के लिए, तो दूसरा चौका भारतीय पारी में स्मृति के बल्ले से निकलता हुआ।
1: ओह बॉय, दैट्स एक्सपीरियंस इजंट इट, स्मृति मंधना जस्ट वॉचिंग द बॉल वेरी केयरफुली, goes onto the back foot and that typical back foot punch, she times it from the middle of the bat.
0: बढ़िया स्ट्रोक और गैप्स भी उन्होंने पहले से तलाश लिए थे कहां पर गेंद को खेलना है। भारत का तिरंगा दर्शक दीर्घा में लगातार लहराता हुआ इस उम्मीद में कि क्या भारत 8वीं बार खिताब जीतने वाला है, और इस बार फ्लाइट करने की कोशिश ही, ड्राइव किया था हाफ बॉली पर लेकर के और गेंद को फील कर लिया गया, कोई रन बनाने का मौका नहीं। भारत ने बहुत आतिशी शुरुआत नहीं की, आमतौर पर जिस तरह की शुरुआत के लिए दोनों बैटर जानी जाती हैं, क्योंकि ये दोनों स्मृति मंधना और शेफाली वर्मा, अगर आप इस टूर्नामेंट के तमाम बैटर्स को देखें तो ये नंबर 1 और नंबर 2 पर हैं। इनका स्ट्राइक रेट शेफाली वर्मा का 171, स्मृति मंधना का 169, लेकिन आज बहुत सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए शुरुआती ओवर में, और इस बार इस गेंद को निकाल दिया एक और चौका। पावर प्ले का किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में बढ़िया चौका खेला है शेफाली ने। भारत का स्कोर बढ़ता हुआ अब 14 रन बिना किसी नुकसान के।
1: And what a shot that was! It was a flighted delivery coming around the wicket, and she went for that that sweep slog over the deep square leg boundary for a four. There were just 2 bounces before the ball reached to the boundary and gets the second boundary of the over for India.
0: खर्चीला ओवर है, अब तक 9 रन दे चुकी कविशा। ओ ये तो फुल टॉस डाल गई, हवा में थी, पावर प्ले का एडवांटेज मिल सकता था और इसीलिए उन्होंने उछाल करके खेला। 2 खिलाड़ी उसके पीछे थे लेकिन किसी की भी पहुंच में वो गेंद नहीं थी। रन यहां पर मिले हैं और हमारे जो

0: gently plays the ball back to the bowler. Quickly she goes to the run-up. Mithali just walking and now runs to bowl another delivery. This time straying down the leg side and short of length delivery. They've got a deep square leg also plays for Smriti Mandana. She's a good attacker of the ball. So a single to end this over. Number three. And India have had a wonderful start now. And this, of course, is a single that will take India to 29 without loss. Mandana batting on 12. Shefali Verma, four dot balls to start with. And I tell you what, she's raised up to 17 in 11 deliveries.
1: कमाल की बल्लेबाजी की है पूरे टूर्नामेंट के दौरान शेफाली वर्मा ने कुल मिलाकर 168 रन बनाए उन्होंने इससे पहले इस टूर्नामेंट में और उनसे ठीक पीछे हैं स्मृति मांधना और अगर आप टॉप बैटर्स की फेहरिस्त देखें इस टूर्नामेंट में तो टॉप दो की पोजीशन पर

0: स्टाफ के बीच में से ये स्ट्रोक खेला था, तो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते हुए शेफाली अब पहुंच गई हैं 24 पर। 15 गेंदों में 24 रन, स्मृति मानधना 11 गेंदों में 17 रन बना चुकी हैं। चामरी अट्टापट्टू इस बार विकेट तो जरूर उन्हें मिले लेकिन बल्ले से रन नहीं बने और ये श्रीलंका के लिए परेशानी है। और ये एक और स्ट्रोक सीधे 6 रनों के लिए, ये पहला छक्का शेफाली के बल्ले से। चामरी अट्टापट्टू जैसे ही आई अचानक आक्रामक हो गई शेफाली, कुल मिलाकर 12 रन 3 गेंदों में अट्टापट्टू के, कहीं कोई परेशानी नहीं। फ्लाइट कराने की कोशिश, हाफ बॉली पर लिया और अच्छी बैकलिफ्ट के साथ गेम को उठा दिया, एकदम लॉफ्टर ड्राइव 6 रनों के लिए। और अब सेलिब्रेशन का टाइम इंडियन दर्शकों के लिए दुबई के अंदर।
1: Oh, just short of that 50 run mark, and what a start India has. Smriti at the non-strikers and just playing that role of a matured batter. Shefali on strike, batting on 30.
0: Kamal ki ballebazi. Is baar back foot par gayi. Aur chunki gend mein bahut zyada gati nahi thi, stroke khelne ka mauka mila. Yahan run bhi mile saath hi saath. तो भारतीय दोनों बैटर्स बिना किसी परेशानी के अब तक चलती हुई, और जो वर्तमान रनों का औसत है वो 10.29 है। पावर प्ले चल रहा है बिना किसी नुकसान के, पांचवा ओवर निकल रहा है और ऐसा लगता है कि ट्रेलर के पैर पर थोड़ी सी चोट है। लेकिन चामरी अट्टापट्टू मुनीश बल्ले से कुछ भी नहीं कर पाए इस पूरे टूर्नामेंट में, 63 रन है उनके नाम 4 मैचेस में। और श्रीलंका की अगर आप बल्लेबाजी देखें तो पूरी तरह से चामरी अट्टापट्टू पर निर्भर है, और अगर वो ही नहीं चलती हैं तो फिर टीम परेशानी में पड़ती है।
1: Well, she did lead the chase and get close to her half century, but after that, yes, she's scripting, trying to script another victory. But then we see an injury on the field, and that's a twist of an ankle, and that's not a good news for the Sri Lankan team, because I tell you what, there isn't any role that the other batters or the fielders have played till now, because Sri Lanka into the fifth over fielding, and then they don't want to see a player getting injured while fielding. We can understand that if there's a bowler who's coming in and bowling and there's a hamstring pull, or while the batter is batting between the running between the wickets, there is an injury. But then right at the start of the game, in the very first power play, where India have raised on to a blazing start with 48 without loss, the rhythm of the game has been held up because there is an injury right there in the middle. We'll quickly identify the player, because she's been crowded around by the other players. Smriti Mandana, Shefali right there in the middle and standing quite apart, talking to each other. Smriti doing the much of the talking, and that's needed. And that's not a good sight that we see just now, because the stretcher has been brought in.
0: बिल्कुल, जब इस तरह की चोट होती है, अगर आपका बैट ट्विस्ट कर जाए तो वो आपको परेशान करता है, इसमें कोई शक नहीं। और अब देखना होगा कि जिस तरह से प्रदर्शन करती आई है भारतीय टीम, शेफाली की पल्ले से आज 17 गेंदों पर अब तक 31 रन बन चुके हैं, एक छक्का लगा चुकी हैं, 4 चौके लगा चुकी हैं। बढ़िया पारी शेफाली की, और अगर आप सलामी जोड़ी का जिक्र करें तो यह सबसे बढ़िया प्रदर्शन है फाइनल के अंदर, T20 क्रिकेट में, एशिया कप फाइनल में। भारत की इन दोनों बैटर्स का और कुछ लम्हों के लिए खेल में व्यवधान।
1: We still have to figure out what's happening, because the umpires are definitely trying to get things sorted out here, because it's not helping as far as the rhythm of the game is concerned. And of course, at the center, there's a lot of crowd, and it seems that Shefali and Mandana have also spoken to the umpire. In case there is an injury which is really dangerous, and if the player is injured, you need to get the player substituted.
0: बिल्कुल, विश्मी गुणरत्ने को आज टीम के अंदर शामिल किया गया, मौका मिला उन्हें फाइनल के अंदर, लेकिन चोट की वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है, और बाहर गई हैं वो, स्ट्रेचर पर उन्हें बाहर ले जाया गया है। इस बार गेम का इंतजार किया चामरी अट्टापट्टू ने, हल्के से केवल दिशा दी उसे मिड विकेट पर।

0: स्मृति मंदना और शेफाली दोनों बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हैं। एक स्वाभाविक सी मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर है। उन्हें पता है कि उन्होंने भारत के लिए गजब का स्टार्ट दिया है, एक सॉलिड स्टार्ट दिया है। 150 रन 140 प्लस निश्चित तौर पर श्रीलंका को परेशान कर सकते हैं। चामरिया टपट्टू की ये गेंद और इस बार फिर स्ट्रेट खेला एकदम सामने। अब देखना है ये छह है या चार है। जाकर के गेंद रोप के नजदीक लगी है, हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कमाल की बल्लेबाजी कर रही है शेफाली, खासतौर पर चामरी की गेंद पर उनके आत्मविश्वास को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। ऊंचा शॉट खेला, दूसरा शॉट था इस ओवर में और गेंद सीधे जाकर के रोप से क्या पहले गिरी या रोप पर गिरी, ये देखना होगा, अंपायर का फैसला करना होगा। मुनीश, आपकी नजरें क्या कह रही?
1: To me, it looks like a six, and now it's been given by the umpire as well. And with that six, India crossed the 50-run mark. And what a start by India in the very first five overs. 23 minutes of batting, India have crossed the 50-run mark. And the best part is that they haven't lost a single wicket. So 55 after the end of five overs.
0: Sugandhika ka naya over. Naya over ki shuruaat, ye dusra over hai Sugandhika ka. अच्छी गेंदबाज हैं जहां तक सुगंधिका का सवाल है, अनुभव है उनके पास, 100 के आसपास मैचेस खेले हैं, 35 वर्ष की उम्र है। 2015 में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था, तकरीबन 11 साल का सफर तय कर चुकी हैं और बढ़िया बल्लेबाजी की है। आज खासतौर पर चामरी अटापट्टू के आत्मविश्वास को हिला करके रख दिया शेफाली वर्मा ने। दायरे पर गेंद को फील करने की कोशिश की लेकिन गेंद उनके हाथ से छिटकी और यह मौका मिल गया दोनों बैटर्स को दौड़ करके एक रन ले लेने का। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। करंट रन रेट जो है वो अब लगातार ऊपर जाता हुआ 10.7 पर पहुंच गया है, यानी कि 11 रन प्रति ओवर और भारत ने एक भी विकेट नहीं गंवाया है। इससे बढ़िया स्टार्ट और क्या हो सकता है भारत के लिए। स्मृति तैयार इस बार हल्के से केवल दूर किया अपने शरीर से गेंद को लेकिन कोई रन नहीं। स्मृति थोड़ा सा संयमित होकर के खेल रही है और शेफाली अपनी जो स्वाभाविक शैली है उसके साथ खेल रही है। स्मृति कमजोर गेंद पर हिट कर रही है और शेफाली जिस तरह से खेलती हैं तकरीबन उसी तरह से खेल रही हैं।
1: Absolutely, and the next delivery that we see, Smriti Mandana just does that. She comes onto the front foot and gently plays the ball to the cover fielder. She isn't going after the bowlers, but I think that's a plan where Shefali will be striking to the bowlers, and she's done that in style, playing four dot balls to start her innings. Shefali Varman batting on 38, Smriti Mandana on strike at 19.
0: Sugandhika, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर खेल गई। अश्विनी परेरा ने गेंद को फील्ड किया और यह भी एक डॉट बॉल, सबसे तेज अर्धशतक 30 बॉलों में इस एशिया कप में। यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है और वो भी फाइनल में। आखिरी गेंद इस ओवर की और इस बार बैकफुट पर एक और डॉट बॉल। 6 ओवर यानी कि पावर प्ले की समाप्ति। भारत का स्कोर 57 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के, यानी कि एक स्वप्निल शुरुआत की है भारत ने एशिया कप के इस फाइनल मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ।
1: वेल देन अगेन ब्रिंगिंग दैट स्टैट वेयर शेफाली वर्मा इज बैटिंग ऑन अ हाईएस्ट स्कोर इन एन एशिया कप फाइनल। ऑफ कोर्स शी इज ब्लास्टेड द बोलर्स अराउंड इन द प्रीवियस गेम एंड शी वाज द लीडिंग स्कोरर फॉर श्योर। स्मृति मंदना फॉलोइंग हर and Harmanpreet Kaur will be very happy with her decision, so will be Amol Mojumdar, because India at the moment are 57 without loss after 6 overs, and of course we have another 14 overs and we will be getting 84 legitimate deliveries for sure. Chamudeep Prabhudha, the baby-faced left-arm spinner of the Sri Lankan women's team, is getting ready. She's warming up for her spell. She'll be bowling to Shefali, who's on strike. There's a shot, a third man point, cover, extra cover, a long off in the offside. Now, the rules of the women cricket, the fielding restriction from 20th over, there wouldn't be more than 4 fielders allowed outside the 25-yard circle. So, very similar to the men's ODI, where from 11th to the 40th over, there are only 4 fielders are allowed.

0: the Mandana has done. So no worries there, because she started well, and she was the one who hit the first boundary. But at the moment, she's on 23. Shefali Verma is on 48. A delivery on the leg side, wanted to sweep and didn't time the ball. The ball takes an inside edge, slowly rolls down to the short fine leg area. She gets a single. Good call by Shefali, though, and it was her danger end. It'll be interesting to see whether the umpire gives a leg by. Yes, it is a leg by indeed. I thought there might be a nick of the blade, but then it was a close call. And boy, what do we see here? Replay tells us that Shefali was well short of a crease. Lucky that the ball did not hit the stumps. Otherwise, it would have been a real disaster for India. What a wonderful start we are into. 7.3 overs gone, 72 without loss. Shefali Verma batting so well, just too short of a 50. You wouldn't want to see her getting run out in the previous ball. Meanwhile, she bowls now a leg spinner. She's known to be an off spinner, but this is Dilhari now pitching the ball, and that's gone for a four. What a shot by Shefali Verma. Cuts the ball and finds the deep point boundary and completes a 21st T20-50 and her first in Asia Cup Finals.
1: बिल्कुल, और न सिर्फ फाइनल में उन्होंने ये 50 लगाई जो कि उनका पहला अर्धशतक है, बल्कि सबसे तेज अर्धशतक लगाया उन्होंने T20 एशिया कप में. सिर्फ 24 गेंदों में इस अर्धशतक को पूरा किया. इससे पहले थाईलैंड के खिलाफ 26 गेंदों में अर्धशतक आया था उनके बल्ले से. तो कमाल की बल्लेबाजी शेफाली वर्मा की और गजब का साथ स्मृति मांधना.
0: Well, Kavisha Dilhari will have to choose something else because she's conceded 7 runs. In fact, 6 runs and 1 leg by 7 runs in this over total of in total for India. Shefali gets a delivery, a flighted delivery. Now she's got both the off spinners and the leg spinners in her armory. Probably wants to bring that change. And Shefali just gets a flighted delivery onto the front foot, drives the ball to the long off fielder for a single. India move on to 77 without loss. And we are into the 8th over. One more delivery to come, and what a start by India. It's a big game though. India won the toss, elected to bat. They made one change. So the only change is Pratika Rawal, who wasn't good with the bat, and she's been rested. So Kamalini comes in to fill up that gap in the final over. Meanwhile, Smriti Mandana gets a delivery, places the ball to the onside, to the deep square leg area for a single. And that will be the end of the over number 8. India onto a solid start, just hovering around that 10 run and over mark. And at the moment, with Mandana batting on 24, Shefali Verma batting on 53 of 25, and what a strike rate of 212. India 78 after 8 overs. And just to get that more flavor, Sanjay Banerjee is going to bring in this commentary to be very precise with the timing at the moment. It's 8:36 by the Akashwani clock. Very accurate. And I want to ask a question, and I want Sanjay Dada to be very accurate. Dada, any predictions for the total which India can reach to?
1: 150 for sure. इसके बाद भी, हालांकि इतना अच्छा स्कोर अब तक भारत ने कर दिया बिना नुकसान के, लेकिन इसके बाद भी क्रिकेट की अनिश्चितता को आप बिल्कुल दरकिनार कर नहीं सकते. लेकिन 150 तो अब कहीं नहीं गए, और ये टोटल श्रीलंका के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है. शेफाली की बल्लेबाजी आज असाधारण बैटिंग की. फास्टेस्ट 50 उन्होंने लगाई, 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया. और मुझे सिर्फ एक चीज लग रही है मुनीश, शायद आप भी मेरी बात से इत्तफाक रखें, कि जिस तरह से इन दोनों बैटर्स ने आज बैटिंग की है, जमीन आसमान का फर्क है. क्योंकि अगर आप दोनों का स्ट्राइक रेट देखें, तकरीबन बराबर 170 के आसपास, लेकिन आज स्मृति मांधना सिर्फ और सिर्फ रुक करके खेल रही हैं, और शेफाली लगातार आक्रामक हो रही है. इस बार गेंद गई थी सीधे स्क्वायर लेग की दिशा में, और वहां पर रन बना, एक रन और इस रन के साथ 79. तो क्या इस रणनीति को पहले से तय किया था इन दोनों बैटर्स ने कि आज इस तरह से खेलना?
0: आई थिंक सो, बिकॉज इट्स अ कॉशियस स्टार्ट, बिकॉज स्मृति मांधना इज जस्ट बिहेविंग लाइक अ सीनियर प्रोफेसर राइट देयर इन द मिडल ऑफ द विकेट, एंड शेफाली इज अ ट्रू ऑबीडियंट स्टूडेंट बैटिंग ऑन 53. शी इज ऑन स्ट्राइक एट द मोमेंट.
1: तकरीबन बराबर गेंद खेली है दोनों ने, और इस बार बैकफुट पर जाकर के पंच किया, और एक और चौका अपने नाम किया. इतना आसान स्ट्रोक लग रहा है शेफाली के बल्ले से कि ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कोई अटेम्प्ट ले रही हो. और एक बच्चे की तरह एक निश्चल मुस्कुराहट उनके चेहरे से. स्मृति ने नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े होकर के उनकी तारीफ की, और शेफाली ने मुस्कुरा दिया. कमाल की बल्लेबाजी कर रही है शेफाली. आप भारत के लिए एक इतना शानदार सितारा मिला है शेफाली के.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। 2 दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह

0: तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: 2 दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले 3 दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तू तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन: सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा।

0: सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
3: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
2: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121

0: 20 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
1: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज ब्रिक्स इज एन इकोसिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस, स्ट्रेसेस नीड टू ट्रांसलेट ऑल आउटकम्स ऑफ न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इनटू टाइम बाउंड एक्शंस एज 18th ब्रिक्स समिट कंक्लूड्स। Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewelry sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champions Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. And now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said, BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction.
3: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले 2 दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
2: Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
3: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: Earlier, in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remained confined to one region in today's interconnected